बीटिंग वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच डीएनएम 1233 किलोहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1348 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 39 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

बीटिंग वेव तो 41.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
4: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों में इस समय उड़द और मूंग की खेती आप किए हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करें। अगर पहली सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो इसमें जड़ों तथा ग्रंथियों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन बाद करें और बाद की सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस फसल में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिनको निकाई करके नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में पीला चित्तवर्ण

0: रोग जिसे कि मोज़ेक रोग कहते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रोग प्रायः सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उस सफ़ेद कीट का ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मिथाइल ओ डेमेटान दवा प्रयोग करते हैं, जो कि 25 EC के रूप में आती है। अगर 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़े तो इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो डाइमेथुएट दवा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30 EC के रूप में आती है। इसकी भी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 1 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और लगभग 600 से 700 लीटर पानी की। इस तरह से आवश्यक दवा की मात्रा लेकर के और आवश्यक पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं तथा पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं और पैदावार प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भी मिथाइल ओ डेमेटान दवा का प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान भाई सूरजमुखी की भी खेती किए रहते हैं, तो ध्यान रहे कि सूरजमुखी की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब हम थोड़ी सी चर्चा गन्ना की खेती की करेंगे। इसमें कुल 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी जो मात्रा बचती है उसको 2 भार में प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। तो इसे जो है जून माह के पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब अगर आखिरी मात्रा आपके पास बची है तो 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करें। ध्यान रहे कि जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में नमी अवश्य हो। इसके अलावा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। चूँकि इस समय खेत खाली रहते हैं, अतः यह मिट्टी की जाँच का सर्वोत्तम समय है। पहले मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहां पर भेजा जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें अपना नाम, पिता का नाम, खेत का नंबर और बोई जाने वाली फसल आदि का विवरण दर्ज करके और फिर उसे जांच हेतु भेजा जाता है। अभी अगर मिट्टी की जाँच कराते हैं तो आपको समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर उस हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करके आप खरीफ की खेती आसानी से कर सकते हैं। हरी खाद के लिए समय ढांचा की भी खेती अवश्य करें। इससे जो है जो खेती में लागत आती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

माँ करुणामयी और भक्तवत्सल हैं। माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा करती है और अपनी स्नेहमयी दृष्टि रखती है। ऐसी माँ के चरणों में शत शत नमन है।

जब मन भक्तमय हो जाता है, राममय हो जाता है, तो सर्वत्र प्रभु श्री राम नजर आते हैं और मन में सतत अपने आराध्य का ध्यान लगा रहता है। मन सतत प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता रहता है।

0: अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में आज आपने हरिओम शरण नरेंद्र चंचल, अनूप जलोटा, श्रीमती पद्मा गिडवानी और केवल कुमार के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: अब्राहम लिंकन ने कहा है कि किताबें आदमी को ये बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार आखिरकार इतने नए भी नहीं हैं। सच में किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। इस दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो। तभी तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। साहित्यकार निर्मल वर्मा भी ठीक ही कहते हैं, किताबें मन का शोक, दिल का डर या अभाव की हूक कम नहीं करती, सिर्फ सबकी आंख बचाकर चुपके से दुखते सिर के नीचे सिरहाना रख देती हैं। किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में

0: हमारी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में साथ देती हैं। किताबें न सिर्फ हमें जानकारियां देती हैं, बल्कि हमारे अतीत के चलचित्र से भी रूबरू करवाती हैं। सफदर हाशमी कहते हैं, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सचमुच किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है, वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे आदर्श मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आता है। वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं, साथ ही यथासमय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार हैं। हम में से कई लोगों को अपने खाली समय में या सोने के पहले किताबें पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि पढ़ने से अवांछित तनाव पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिसे हम सुकून की दुनिया कह सकते हैं। लोगों के विपरीत किताबें कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगती, बल्कि हमारे ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। विद्यार्थियों को निर्देशित करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबों से दोस्ती करने की सलाह देना। कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथाओं वाली कई पुस्तकें हैं। ये किताबें विद्यार्थियों को उन लोगों के जीवन से प्रेरित होने में मदद कर सकती हैं, जिनसे वे अपने जीवन में प्रभावित रहते हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, जिससे हम जीवन में सत्य, अहिंसा और अनुशासन सीख सकते हैं। रोजाना कुछ घंटों के लिए पढ़ना शब्दावली के साथ साथ भाषा कौशल के निर्माण में भी मददगार साबित होता है। किताबें पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और किताबें एक नेक दिल इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं। नैतिकता और मूल्यों से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ना हमें अच्छे गुणों से समृद्ध करता है और इस प्रकार हम समाज के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। पुस्तक पढ़ने के दौरान हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। हम काल्पनिक दुनिया में अपने आप चले जाते हैं। हमारे मन में चित्र बनने लगते हैं। यही हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये हमें ध्यान केंद्रित करने और हमारी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी ने सही ही कहा है, कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है। किताबों से इश्क करने की ये आखिरी सदी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्ययन से श्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं है। इसलिए किताबें मानव की सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो सदैव न सिर्फ परत दर परत जीवन के उतार चढ़ाव से उसे परिचित कराती हैं, बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक दोस्त की भांति मनुष्य का साथ भी देती हैं।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था किताबों से दोस्ती। आलेख एवं स्वर अरुण पांडे का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: मैं डॉक्टर वीबी सिंह, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी, और चौथा महत्वपूर्ण विटामिन B6 कंपोनेंट, जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, उसका जो नाम पायरिडॉक्सिन होता है साल्ट, और इसकी कमी से शरीर में खून की कमी होने लगती है और चमड़ों में भी जो है डर्मेटाइटिस होने लगती है। ये विटामिन हमारी हरी साग सब्जियों में और फिश यानी मछली में, इस सब में जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जो वेजिटेरियंस लोग हैं, कोई भी विटामिन है जो साग सब्जी है, दही है, दूध है, कहीं ना कहीं अवश्य उसकी मात्रा मिलती है। तो इसके लिए एक तरह से जागरूक रहने से इसमें विटामिन की

0: कमी को पूरा किया सकता है। और B6 के बाद एक विटामिन है B7, जिसको हम बायोटीन कहते हैं, और इसकी कमी से हमारे नाखून चटकने लगते हैं, बाल हमारे गिरने लगते हैं, और स्किन में जो है हमारे डर्मेटाइटिस होने लगती है। इस विटामिन की प्रचुर मात्रा में नट्स हैं, जैसे आपके काजू है, बादाम है, इन सब में अखरोट है, इन सब में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो अगला विटामिन है B9, जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनको प्रेगनेंसी होती है, उनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से शरीर में बच्चों में कोई दिक्कत, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने लगता है, और एनीमिया एक तरफ होता है, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये भी विटामिन हरी साग सब्जियों में, नट्स में, बीन्स में, एग में, मीट में सब पाया जाता है। तो इस तरह से हमने विटामिन बी के बारे में 7 कंपोनेंट बताया। लास्ट वाला विटामिन बी का है B12, बहुत ही कॉमन लोग कहते हैं ना B12 के इंजेक्शन लगवा लो। ये B12 की कमी से, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, शरीर में एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होने लगती है, नसों में झंझनाहट होने लगती है, हाथ पैर में जलन होने लगती है। ये भी आप, अगर कोई आदमी दूध का सेवन कर रहा है, हरी सब्जियों का सेवन कर रहा है, इस विटामिन को भी अच्छी तरीके से हम अपने स्वतः अपने स्रोत से इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, मैंने बताया विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, जो कि 8 कंपोनेंट हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो हमारे इस तरह से अगला जो विटामिन है, विटामिन सी है। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। कुछ लोग देखते हैं मसूड़े, सूजन रहती है, उसमें से गम से नहीं जो है मसूड़े से खून निकलता रहता है, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसको आसानी से भरपाई किया सकता है जो हमारे साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे संतरा है, आपका मौसमी है, इस तरह के फलों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से विटामिन सी की काफ़ी कमी हम पूरा कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश बीमारी हो गई है, तो अलग से दवा के रूप में इसको, विटामिन सी को हम लोग चिकित्सक प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद अगला जो विटामिन है, विटामिन डी है, जिसको हम कैल्सीफेराल कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे विटामिन डी की कमी बच्चों में, एजेड लोग होते हैं जिनकी उम्र दराज होते हैं, अक्सर देखी जाती है। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी रहती है, तो एक बीमारी होती है रिकेट्स, जो हम लोग कहते हैं ना सूखा रोग हो गया इसको, तो उसको विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए बच्चों में विटामिन डी की कमी को भी ध्यान रखना चाहिए। दूध है, और आपके दूध के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में होता है। सूरज की रोशनी को बच्चों को या किसी व्यक्ति को अगर उसमें अच्छी तरीके से उसको मिल रही है, तो उससे विटामिन डी शरीर में बनता है। बाकी आपकी ऑयली फिश है और अंडे हैं, इसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई, इसको टोकोफेराल भी कहते हैं। ये प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में, और बच्चों को अबॉर्शन यानी गर्भपात न हो जाए, इसलिए शरीर में विटामिन की बहुत ही आवश्यकता होती है। लेडीज़ में महीनवारी जो है अनियमित अगर होने लगती है, तो भी विटामिन ई के काफ़ी उसको ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा दूध है, आपकन है, और अंडे है, इन सब में ही विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और अंतिम विटामिन जो मैं बताना चाहूँगा, वो है विटामिन के। विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन्स कहते हैं। ये विटामिन के अगर शरीर में कमी है, तो हमारी ब्लीडिंग जो है होने लगती है, यानी क्लाटिंग डिलेड होती है, यानी खून जमने वाली चीज़ें लेट हो जाती हैं, और शरीर में किसी किसी अंग में ब्लड निकलने लगते हैं। दांत से ब्लड निकल गया, यूरिन में निकलने लगा, या और भी कहीं आंतों में निकलने लगा। तो ये हमारी जो पीज हैं, पीज मतलब कि जो हमारी मटर वगैरह है, चना ही सब में, और ग्रीन हरी सब्जियों में, और फिश में विटामिन पाया जाता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भी आपने विटामिन की कमी से होने वाली समस्याएं विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह से ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: और नीना मेहता को। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आज शाम 7:31 पर श्रोताओं के पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और पूजा सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे अनुभव खेती में कार्यक्रम के अंतर्गत राजेंद्र यादव से राजेश नारायण की बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे शेर बहादुर सिंह और साथियों का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप सभी 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात युववाणी गांव में यूथ डायरी विश्व घटना चक्र और रोजगार सूचना। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5:00 बच्चे सुनेंगे डॉक्टर साधना सिंह की वार्ता रंग बिरंगी तितलियां। साथ ही बच्चे सुनेंगे बाल गीत। आज इतवार है कार्यक्रम में दिन 1:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की लिखी झलकी गए काम से। प्रस्तुत करता होंगे डॉक्टर वी के सिंह। हेलो फोन इन फरमाइश आप सुनेंगे दिन 12:00। प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुनिए दिन 11:30। इसमें आप सुनेंगे थायराइड की समस्या और चिकित्सा विषय पर डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। बाल संघ कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 11:00। इसमें बच्चों द्वारा विविध प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही बच्चे सुनेंगे बाल गीत। कन्नड़ सामुदायिक गान भाषा शिक्षा पाठ का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 10:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे 7:00। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे 9:45। फिल्म संगीत सुनिए 10:30 पर। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे दिन 1:30 पर। एक ही फिल्म से सुनिए दिन 2:30। शाम 6:10 पर शाम 7:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रसरंग सुनिए शाम 7:50 पर। और गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। श्रोताओं हम आपको याद दिलाएं आज इतवार है कार्यक्रम में दिन 1:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की लिखी झलकी गए काम से। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वी के सिंह। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमन्त्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढ़तया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेश मंत्री

अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे आज रात 8:10 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे राजेंद्र मेहता और

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप सब? बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सबके प्यार और उसी प्यार के विश्वास से मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बनारस सुबह के 7 बज चुके हैं और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त शैलेश दुबे। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बनारस ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ने राष्ट्र की सेवा में अपने 90 गौरवशाली वर्ष बड़े शान के साथ पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी ने सन 1936 में अपनी स्थापना के साथ शुरू किया एक ऐसा सफर

0: पर जो आज भी अनवरत जारी है और जारी है श्रोताओं के प्यार को अपने दोनों हाथों से बटोरने का एक शानदार सिलसिला। बनारस आकाशवाणी ने न जाने कितने रूपों में जनमानस को प्रभावित और प्रेरित किया है। ये कभी दोस्त तो कभी मार्गदर्शक, ये सच्चा साथी बनकर हमेशा अपनों के साथ हर पल रहा है और इसके सारथी रहे हैं आकाशवाणी के अनगिनत उद्घोषक, प्रशासक और तकनीकी सहायक। और बनारस अपने आकाशवाणी वाराणसी के एक ऐसे ही सारथी रहे हैं वरिष्ठ उद्घोषक किशोर जी, जिनकी आवाज और जिनकी प्रस्तुति के दीवाने सब तब भी थे और आज भी, जब कहीं किसी बहाने से उनकी आवाज रेडियो पर प्रसारित होती है तो ये दीवानगी खुद ब खुद फिर से जीवंत हो जाती है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के पूरा होने पर आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है अपने शुभकामना संदेश में।
1: सभी सुनने वालों को नमस्कार। देखते सुनते एक लंबा अरसा बीत गया, शायद यही फितरत है इस जिंदगी और समय का। सेकंड मिनट में मिनट घंटों में तब्दील हो जाते हैं और तारीख तवारीख बन जाती है। रेडियो ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना 90 वर्ष का सफर तय कर लिया है। इस अवसर पर हम अपने आकाशवाणी परिवार और श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और कामना करते हैं कि वो उत्तरोत्तर श्रोताओं के पसंद के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करते रहें और ये कहने के लिए मजबूर कर दें कि ये है हम सब की वाणी आकाशवाणी।
0: बनारस आज है 7 जून सन 2026 और दिन है रविवार। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि 7 जून इतिहास के पन्नों में किन रूपों में दर्ज है। 7 जून सन 1539 को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। आज ही के दिन सन 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सन 1989 में 7 जून के दिन भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 7 जून सन 1995 को नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। 7 जून सन 1998 को स्पेन के कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता। श्रीलंका में प्रचलित आव्रजन नियम निरस्त हो गया 7 जून सन 1999 को। एक अमेरिकी अदालत द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दो भागों में बांटने का निर्देश जारी हुआ था 7 जून सन 2000 को। 2004 में आज ही के दिन इजरायली मंत्रिमंडल ने गाजा क्षेत्र से बस्तियां हटाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया गया था 7 जून सन 2006 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया था 7 जून सन 2008 को। 7 जून सन 1631 को मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का बुरहानपुर में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद ही शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवाया था। वेटिकन सिटी को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 7 जून सन 1929 को। टार्डेसिलस की संधि, एक ऐतिहासिक समझौता जो स्पेन और पुर्तगाल के बीच 7 जून सन 1494 को स्पेन के टार्डेसिलस नामक स्थान पर सम्पन्न हुआ था। यह संधि कैथोलिक चर्च और पोप अलेक्जेंडर 6वें के मध्यस्थता प्रयासों के बाद हुई थी, जिनका उद्देश्य अटलांटिक महासागर के पार नई खोजी गई जमीनों के स्वामित्व विवाद को सुलझाना था। फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक लुईस 14 का राज्याभिषेक 7 जून सन 1654 को रिम्स कैथेड्रल में हुआ था। वे सन किंग के नाम से प्रसिद्ध थे। उस समय लुई की उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी। लुई 14 का जन्म 5 सितंबर सन 1638 को हुआ था और वे 1643 में मात्र 4 वर्ष की उम्र में फ्रांस के राजा बन गए थे, जब उनके पिता लुई 13 की मृत्यु हो गई। चूंकि लुई बहुत छोटे थे इसलिए उनकी मां एनी ऑफ ऑस्ट्रिया ने उनके बचपन में राज्य संरक्षिका के रूप में शासन किया और शासन के प्रमुख मार्गदर्शक कार्डिनल मजरीन थे। लुई 14 ने 72 वर्षों तक फ्रांस पर शासन किया। यह किसी भी यूरोपीय सम्राट का सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। एसएस क्रिस्टोबल, ये पहला जहाज था जो 7 जून सन 1914 को पनामा शहर से टेस्ट ट्रांजिट के रूप में गुजरा। यह कोई वाणिज्यिक यात्रा नहीं थी बल्कि एक परीक्षण था जिससे यह

सुनिश्चित किया जा सके कि नहर पूरी तरह से संचालन योग्य है। पनामा नहर ने अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोला। इससे जहाजों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न को पार करने की आवश्यकता नहीं रही, जिससे समय और ईंधन की बहुत बचत हुई। और बनारस, अब जानकारी ले लेते हैं कि किन किन व्यक्तित्वों का आज यानी 7 जून को जन्मदिन है। वर्जीनिया एपकर अमेरिकी प्रसूति एनेस्थेटिस्ट थे ये, और इनका जन्म हुआ था 7 जून 1909 को। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ था 7 जून 1914 को। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ था 7 जून 1974 को। भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतिल का जन्म हुआ था 7 जून 1998 को। दोस्तों, आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। प्रतिवर्ष 7 जून को हम ये दिवस मनाते हैं। इस वैश्विक अभियान का मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है और उनकी पहचान करना, साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना भी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की अगर हम बात करें तो बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि सुरक्षित भोजन के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और AFO के संयुक्त नेतृत्व में मनाया जाने वाला यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी की जिम्मेदारी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 का विषय बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, असुरक्षित भोजन से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य बोझ को समझने और बीमारियों की रोकथाम के लिए विज्ञान आधारित समाधान लागू करने पर केंद्रित है। प्रतिवर्ष 6 करोड़ खाद्य जनित रोगों से उत्पन्न होने वाले मामले आने के साथ इस अभियान का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में खेत से लेकर मेज तक खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 के महत्व की अगर हम बात करें तो खाद्य जनित बीमारियां, जो अक्सर जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों या रासायनिक पदार्थों के कारण होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए अदृश्य खतरे हैं। असुरक्षित भोजन का सबसे अधिक प्रभाव संवेदनशील समूहों पर पड़ता है, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, महिलाएं, प्रवासी और संघर्षग्रस्त आबादी शामिल है। दूषित भोजन के कारण प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 1,25,000 बच्चों की मृत्यु के साथ यह दिवस वैश्विक स्तर पर सुरक्षित खाद्य प्रथाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में अगर हम कुछ बातों को शामिल करने की बात करें तो इसमें है कि खाद्य पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ ही साथ सरकारों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को मजबूत खाद्य सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कोडेक्स एलमेटेरियस मानकों और राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, साक्ष्य आधारित उपायों के माध्यम से खाद्य जनित बीमारियों के वैश्विक बोझ को कम करना भी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 का विषय बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, खाद्य जनित रोगों से निपटने और विश्व स्तर पर निवारक उपायों को लागू करने की तात्कालिकता पर बल देता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन असुरक्षित भोजन के कारण होने वाली बीमारियों, मृत्यु और दैनिक जीवन निर्वाह जीवन काल से संबंधित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आंकड़ों सहित वैश्विक बोझ के अद्यतन अनुमान जारी करेगा। यह विषय लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जैसे किसान और खाद्य उत्पादक, खाद्य परिवहनकर्ता और भंडारण प्रबंधक, खाद्य व्यवसाय संचालक और विक्रेता, नीति निर्माता और नियामक, और साथ ही उपभोक्ताओं को भी। सुरक्षित खाद्य प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देती हैं और टिकाऊ कृषि का समर्थन करती हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 में अगर हम भाग लेने की बात करें तो इसमें आप समारोहों और जागरूकता में हर कोई योगदान दे सकता है, जैसे स्कूल और कॉलेज स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं। छात्र विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर या चित्रकारी बना सकते हैं। सुरक्षित भोजन के महत्व को उजागर करने वाले इन्फोग्राफिक्स, नारे और संदेश साझा

कर सकते हैं। व्यवसाय बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता प्रथाओं और उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। और सामुदायिक जागरूकता की बात करें तो स्थानीय जागरूकता अभियानों, स्वास्थ्य शिविरों और खाद्य सुरक्षा संबंधी वकालत अभियानों में भी भाग लिया जा सकता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर अगर हम उद्धरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। आज सुरक्षित भोजन, कल स्वस्थ जीवन। खेत से लेकर थाली तक हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुरक्षित भोजन पद्धतियों से अपने परिवार की रक्षा करें। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि संक्रमण को रोकें, स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। और बनारस अब आइए जानकारी ले लेते हैं कुछ खास खास खबरों की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 8 जून से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह यानी सोमवार से शुक्रवार की व्यवस्था लागू होने जा रही है। नए नियम के तहत अब विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय और कक्षाएं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएंगी, जबकि दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक भोजन का मध्यावकाश यानी लंच ब्रेक रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था के बावजूद पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने तय समय सारणी के अनुसार यथावत चलती रहेंगी। अगली खबर है कि काशी की धार्मिक महत्ता और श्रद्धालुओं की निरंतर बढ़ते आवागमन को देखते हुए नगर निगम ने शहर भर में विभिन्न स्थलों पर खुली मीट मुर्गा और मछली की दुकानों को अब शहरी सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रथम चरण में 5 स्थानों का चयन भी कर लिया गया है। शहर की सीमा के करीब रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर व शिवपुर क्षेत्र में दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि नगर विद्युत वितरण खंड चेटमनी क्षेत्र के 33 केवी उपकेंद्र डाफी में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि को लेकर रविवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। इसके चलते उपकेंद्र से निकलने वाले गढ़वा घाट, अशोकपुरम, तारानगर, छित्तूपुर, सामने घाट, कंदवा, रमना, एसटीपी रमना और एनटीपीसी प्लांट की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बात अगर मौसम की कर ली जाए तो हम आपको बताते चलें कि बढ़ते पछुआ के प्रभाव से वातावरण में व्याप्त नमी अंततः बादल बनकर फुहारों में बिखर गई। शुक्रवार को आधी रात तेज हवा के साथ कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के बाद उमस और बढ़ गई। शनिवार को दोपहर के बाद भी एकाध क्षेत्रों में कुछ मिनट के लिए नाम मात्र की फुहार पड़ी। मौसम में आए इस तनिक बदलाव से दिन का अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों की अपेक्षा 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अब रविवार से तापमान में वृद्धि आरंभ हो जाएगी और ये वृद्धि निरंतर बढ़ते हुए आगामी 3 से 4 दिनों में एक बार फिर से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। विज्ञानियों ने मंगलवार और बुधवार को तापलहर यानी कि लू चलने की पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। अगली खबर है कि ब्रिक्स देशों की संस्कृति कार्य समूह की बैठक में भाग लेने आए सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को काशी का भ्रमण किया। धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों पर पहुंचकर सदस्यों ने अलग अलग अनुभूति की। भगवान बुद्ध की पावन धरा सारनाथ में पहुंचकर शांति तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अध्यात्म की अनुभूति कराने वाला रहा। काशी के परंपरागत उत्पादों को देखकर महीन कारीगरी की खूब तारीफ की। काशी से जुड़ी यादों को संजोकर विदेशी मेहमान दोपहर बाद यहां से विदा हो गए।

दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में आपका और हमारा साथ आज के इस कार्यक्रम में बस यहीं तक। दीजिए अपने दोस्त शैलेश दुबे को इजाज़त। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: मैं संकल्प ये ले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 265 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही

0: प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्ति पीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य की रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचाल प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक संस्कृति, धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता

0: तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर आगामी 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहेर भैरव। आपके साथ तबला संगति पंडित किशन महाराज की है, तो आइए सुने पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहेर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आपने पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहीर भैरव सुना। आपके साथ तबला संगति पंडित किशन महाराज की थी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। बीटिंग वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले

0: पांच वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन

0: मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज़डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज़डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संसिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ

0: साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAFF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings, and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized.

0: जनाब शाह ने कहा कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की पूरी चेन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी जिलों में माली जाब्तगी को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। जनाब शाह ने हिदायत दी कि कलेक्टर्स और GST अफसरों को भी तरबियत दी जानी चाहिए और बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT जाली करेंसी का सर्वे कराए। वजीर दाखिला ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वालों को तरबियत देने के लिए कैंपों का अहतमाम किया जाना चाहिए ताकि मनशियात और आतिशी असलाह के खतरात से निपटा जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि इन कैंपों से पटवारियों, मकामी पुलिस और BSF अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में इस बात को उजागर किया गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बैन अलाक्वामी सरहदों से मुतसर इलाकों के आला मेयारात को यकीनी बनाने के तहत पूरी तरह कारबंद है, जबकि वो सरहदी इलाकों की मजमू तरक्की और सलामती के लिए मरकज और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल को फरोग दे रहा है। आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेश की रसाई और फरोख से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज्जम जालसाजी गिरोहों का काम है जो तलबा और उनके कुनबों की बेचैनी पर पनपते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: NTA ने कहा है कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। NTA ने कहा है कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुकाम से इसे हटाने और कार्रवाई करने में मसरूफ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन न करें, ना ही इसी तरह के किसी से मैसेजेस को आगे बढ़ाएं और ना ही धोखेबाजों के फरेब में आएं। NTA ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए NTA की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इन्हेसार करने की अपील की है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल सेहत इको निज़ाम को फरोग देने के तई अहदबस्ता है। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से ज्यादा मुनफरद आभा शिनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं और 100 करोड़ से ज्यादा डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन आभा ID से मुंसलिक कर दिया गया है। मुकम्मल इंटरव्यू 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड और इजाफी मीटरों पर आज शाम 7:10 पर मोदी हुकूमत के 12 साल की हमारी खसूसी सीरीज में नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की सबका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुजश्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि TMC हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी, लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल PM इकतसादी मुशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम और इकतसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इकतसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये खबर

0: आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाति तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दो तरफा तआवुन को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राजील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपए थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में थ्रिसूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड़ के शुमाली जिलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरिकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू

0: ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जैक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमी रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज माहिरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहिरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खत्े में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक NCR में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाकवामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मधुरिमा।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 054-222-7658
10: 054-222-7658।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने फिल्म मिली में सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत फिल्म कटी पतंग से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन।

सागर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंदर?

आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये गीत हमने लिया है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष नगमे आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

यह आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम गाइड, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म ज्वेल थीफ से। आवाज़ लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों की, गीतकार हैं मजरू, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल, आवाज लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। 9:15 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा का कार्यक्रम। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
3: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
4: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है?
5: जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को संतृप्त कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए
4: जी। प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के भीतर 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई?
5: हम निरंतर अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम स्कीम के लाभों को पहुंचा सके। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, इसके प्रोविजन बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है।

0: और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक ईएमआई होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज़्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है, जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने आईसी एक्टिविटीज़ का, जागरूकता का प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीज़ें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुँचा पाएँ कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं।
1: आपने बताया जैसे कि लगभग प्रतिदिन करीब जो है 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली जो है इस योजना के तहत उत्पन्न की जा रही है प्रदेश में, तो इससे आम उपभोक्ताओं के जीवन में किस तरह से राहत पहुंची है, उसका क्या असर पड़ा है?
0: जैसा कि आपने बताया, रोज लगभग 5 करोड़ से अधिक की इसमें विद्युत की उत्पादकता हो रही है। आपने जैसे मेंशन किया था कि अप्रैल में हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं बताना चाहूँगा कि मई महीने में हम उससे भी ज़्यादा कर पाए और लगभग 64,000 के आसपास हम पूरे माह में इसमें अचीव कर पाए हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक दिन अगर हम देखें तो अपने आप में सिर्फ इस योजना के तहत ही 7 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है। तो निरंतर इसमें कैपेसिटी जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है, जो लगातार हमारी सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है घरों में उसमें भी वृद्धि हो रही है।
1: जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है?
0: अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम, और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में, उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है, जो कि हमारा पीएम सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में, जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने पीएम कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा है।
1: आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो लाभान्वित हो?
0: पीएम कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से जो यूपी नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है सीवन। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम पीएम कुसुम सीवन कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं, और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान।
1: जी, सौर ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन का कितना बड़ा माध्यम बनकर उभरा है?
0: सौर ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो पीएम सूर्य घर में हम अधिक से अधिक घरों को इसमें लाभान्वित कर पाए हैं, इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नए वेंडर्स को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे पास में कुल मिलाकर 6,500 से ज़्यादा वेंडर पंजीकृत हैं, और अकेले मई माह में ही हमने 700 से ज़्यादा वेंडर्स को पंजीकृत किया है। तो इससे ये पता चलता है कि वेंडर्स में भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, उत्साह है, और सभी वेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। और इसमें अगर हम रोजगार की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा तो डायरेक्टली रोजगार पहुंचा है, और अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अलावा 1 लाख अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न प्रकार से रोजगार हुआ है। इसी प्रकार से सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत भी हम महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी हम इस चीज़ के क्रियान्वयन में और प्रचार प्रसार में जोड़ रहे हैं।
1: आपने सोलर पावर दीदी कार्यक्रम का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, ये कार्यक्रम क्या है, इससे किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, किस तरह से उनके लिए लाभान्वित हो रही है?
0: सोलर दीदी योजना के तहत हम विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को इस पूरे अभियान में जोड़ रहे हैं। इसमें इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जा रही है हमारे वेंडर्स के माध्यम से, और फिर इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जिससे कि पूरा जो रूफटॉप सोलर का एक इकोसिस्टम है उसमें ये अपना वैल्यू एडिशन कर सकें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शुरू शुरू में जब उपभोक्ता सोलर रूफटॉप को अडॉप्ट करते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा एप्रिहेंशन होता है कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसमें हमारी रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक लोकल लोगों को इसमें जोड़ें, जो कि पहले से अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े हुए हों, तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस

0: भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और साथ ही साथ में रोजगार भी।
1: जी, प्रदेश में सोलर पावर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में निवेश आया था, इसको लेकर क्या काम किया गया, कितने प्रोजेक्ट धरातल पर अभी उतर आए हैं?
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कई जो भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं और GDC सेरेमनीज हुई हैं, इनमें निवेशकों ने विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अधिक उत्साह दिखाया है। अभी तक करीब 2.5-3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं जो उनका MOU हो गया है और GDC के लिए वो रेडी हैं। अभी हम GDC 5 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आज की तारीख में 7,500 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे बिल्कुल शुरू हो गई है।
1: आपने बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं धरातल पर आ रही हैं, तो ये सोलर परियोजनाएं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं? साथ ही यह परियोजनाएं जो पर्यावरण और कृषि के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण होती हैं?
0: इसमें मेरा मानना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कई तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ में जैसे जैसे हमें अपना औद्योगिकरण बढ़ाना है और जिस प्रकार से AI और डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर उस पावर को हमें अचीव करना है तो ये ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी पर अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास करते रहें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार से हम स्वावलंबी बने। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े एनर्जी की नीड्स के लिए। और यदि हम पर्यावरण की बात करें तो निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत प्रभावी है।
1: ये सोलर परियोजनाएं खासकर ग्रामीण परिवेश की अगर बात करूं, तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और किसानों को इससे जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए?
0: किसानों को भी जोड़ने के लिए हमने PM किसुम स्कीम के तहत काफ़ी प्रयास किए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, C1 कंपोनेंट के तहत तो सीधे ही हम किसानों तक इस स्कीम को ले जाते हैं और इसमें कई किसानों ने उत्साह दिखाकर इसको अडॉप्ट किया है, जिससे कि जो उनके पंप होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उनको वो सोलराइज कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त एक और कंपोनेंट भी है PM कुसुम स्कीम में, C2, जिसके तहत हम पूरे एक फीडर लेवल पे सोलराइज करते हैं। तो उस फीडर से जिन जिन भी किसानों तक विद्युत पहुंच रहा है उनको भी इस बात में मदद मिलती है कि समय से और पर्याप्त ऊर्जा उन तक पहुंचे।
1: क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन वेंडर्स का आपने जिक्र किया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके लिए भी क्या वेंडर्स को खास तौर पर ट्रेन किया गया है कि ये योजना, खासकर PM सूर्य घर योजना, सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे? क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो वेंडर्स हैं उनकी रीच को बढ़ाने के लिए काम किया?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि PM सूर्य घर योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो, इसलिए हमने अलग से इस ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया था, टारगेट रखा था, और हमने कोशिश की थी कि इसकी रीच अधिक से अधिक जगहों तक पहुंच सके। और इसके लिए हम रेगुलरली ट्रेनिंग कराते रहते हैं, अलग अलग जनपदों में हम अपना स्टाफ भी भेजते हैं जो वहाँ के वेंडर्स हैं, कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से बाकी सब वेंडर्स को ट्रेन किया जा सके। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे नेडा की तरफ से ही 3 प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जाते हैं जिसपे निरंतर हम सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण देते रहते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट और भी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके, इसलिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमने कोलैबोरेट कर रखा है और UP स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ कोलैबोरेट करके हम अधिक से अधिक सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: आपने बताया कि किस तरह से शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है सोलर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अयोध्या को सोलर सिटी की तरह विकसित किया जा रहा है, साथ ही अन्य किन जनपदों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान है?
0: हमारा सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें एक अयोध्या पे विशेष रूप से हम अधिक ध्यान दे रहे हैं और इसके साथ ही अन्य जनपद भी हैं। इसके तहत हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक नगर निगम में जो भी उनकी एनर्जी कंजम्पशन है उनको हम इतना फंड देते हैं राज्य सरकार के माध्यम से कि वो अपना एनुअल एनर्जी कंजम्पशन को 10% कम कर सके बाय शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है।
1: जब हम किसी शहर को सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक आम जनता को समझाने के लिए अगर जानना चाहें तो आप इसको किस तरह बताएंगे कि अयोध्या को अगर हम सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स?
0: हमारे अभी वर्तमान में पैरामीटर ये हैं कि प्रत्येक वर्ष हम जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको 10% कम करें कन्वेंशनल सोर्सेज से, और हमारा अंत में लक्ष्य ये रहेगा कि अधिक से अधिक जो एनर्जी कंजम्पशन है इन एरियाज का, अयोध्या का भी और अन्य नगर निगमों का भी, वो सोलर आधारित हो, जिससे कि ओवरऑल भी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी डिमांड पैटर्न है उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिले।
1: सोलर सिटी की तरह ही सोलर एनर्जी विलेज बनाने की भी प्लानिंग है। प्रयागराज में पहला सोलर एनर्जी विलेज बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि वो क्या है और उसमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं।
0: हम प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक मॉडल सोलर विलेज के लिए 1 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हम DPR बनाने

0: अभी प्रक्रिया में है, और इसमें हमने सोचा है कि डीपीआर है वो बॉटम अप अप्रोच से हो, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ही ग्राम अपने रिक्वायरमेंट्स को, आवश्यकताओं को चिन्हित करे, जिसकी कहाँ कहाँ उन्हें स्ट्रीट लाइट लगानी है या फिर सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, जिससे कि वो अपना स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बन सके।
1: शहरों से लेकर गांवों तक सोलर सिटी बनाई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा की उपलब्धियां किस प्रकार योगदान दे?
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2047 तक उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प है, इसको अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा पावर जनरेशन है और पावर कंजम्पशन है, हमारा लक्ष्य है कि उसे हम इस स्तर पर ले जा पाएं जिससे कि भारत को और उत्तर प्रदेश को विकसित बनने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी पूर्ति हम खुद से कर सकें।
1: जी, आपने बताया कि लगातार सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप प्रदेश के उन परिवारों या संस्थानों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अभी तक सोलर को नहीं अपनाया है? उनसे आपकी क्या अपील होगी?
0: मेरी सभी लोगों से ये अपील होगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके तहत भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी दिए जा रहे हैं, और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया लाखों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल कम हो गया है। मेरी अपील होगी कि आप भी ज़रूर इसको अपनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप किसी से भी बात करेंगे जिन्होंने खुद ने ये सोलर पावर प्लांट अपने घर पे लगाया है, तो निश्चित रूप से वो आपको खुद कन्विंस करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, और इससे न केवल आपका खुद का बिजली का बिल बचेगा बल्कि हमारे प्रदेश को, देश को विकसित बनाने में भी आप अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाए।
1: जी, निश्चित रूप से जिन लोगों ने अभी तक सौर ऊर्जा के महत्व को नहीं समझा है और सोलर पैनल्स नहीं लगवाए, वो इससे प्रभावित होंगे और इसको जरूर अपनाएंगे और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविन्द्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। ख्वातीनो हजरात, आज का उर्दू प्रोग्राम खराज तहसीन है जनाब बशीर बद्र के नाम। समाज फरमाइए इस हवाले से एक खसूसी तमसीली प्रोग्राम, उन्वान है जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया। तहरीर और आवाज़ है मोहम्मद फर्रुख जमाल की।

रहने को दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दुनिया अदब का एक और चिराग खामोश हो गया, एक शोख जुगनू जो तारीक रातों को अपने अशार से रोशन और ताबनाक किए हुए था, अचानक हमसे बहुत दूर चला गया, इतनी दूर कि अब वहां से लौटकर आना भी मुमकिन नहीं। लेकिन वो तो हमेशा चहकने वाला बुलबुले खुशनवा था, उसकी खुशकलामी, उसके गुफ्तार से न जाने कितनी नस्लें फैजयाब हो रही थी। किसे अंदाजा था कि दुनियाए इल्म व अदब पर बेपरवाह हुक्मरानी करने वाले डॉक्टर बशीर बद्र हमें यूं दागे मफारकत दे जाएंगे। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल से उर्दू अदब में एक अहद का खात्मा हो गया, एक ऐसा अहद जिसने तकरीबन 5-6 दहाइयों तक दुनिया अदब पर हुक्मरानी की है। अदब की महफिलें

आलमी और बैनुल अक्वामी मुशायरे हों। डॉक्टर बशीर बद्र की शिरकत उस महफिल उस मुशायरे की कामयाबी के जामिन हुआ करती थी। डॉक्टर बशीर बद्र ने बड़े सलीके और शाइस्तगी के साथ आम इंसानों की जिंदगी के मसाइल को अशार के कालिब में ढाला है। बशीर बद्र के अशार की मकबूलियत का यह आलम है कि आवाम बड़े ज़ौक़ो शौक़ से उनके अशार को पढ़ते हैं, और जब कोई ये बताता है ये तो बशीर बद्र साहब के अशार हैं तो उसे ताज्जुब भी होता है और मसर्रत भी होती है कि उसे बशीर बद्र के शेर याद हैं। महफिलों में, मेलों ठेलों में, ऐवानों में, स्कूलों कॉलेजों में अपनी बात को बेहतरीन अंदाज से पेश करने के लिए बशीर बद्र के अशार कोट किए जाते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। डॉक्टर बशीर बद्र महबूब की बेवफाई में भी वफा के पहलू तलाश कर लेते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो जमाने को ये मशवरा भी देते हैं, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। और उनका ये शेर, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।

0: जहाँ मेरा नाम लिखा गया
1: वाह
0: वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंद शेर और दूसरी गजल के, जैसे मैंने अर्ज किया था, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। सुनिएगा, कहीं

गई मैं चराव, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। सुनिए, कभी

0: हमारी झिझक गई
1: बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। 15 फरवरी सन 1935 को कानपुर में पैदा हुए। उनका आबाई वतन फैजाबाद जिले का मौजा बकिया है। बशीर बद्र साहब के वालिद सैयद मोहम्मद नज़ीर महकमे पुलिस में मुलाजिम थे, लिहाजा उनके तबादलों की रेल एक जगह से दूसरी जगह चलती रही। बशीर बद्र ने तीसरी जमात तक कानपुर के हलीम कॉलेज में तालीम हासिल की। उसके बाद उनके वालिद का तबादला इटावा हो गया। वहां पर उन्होंने मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। अभी उन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान पास आउट किया ही था कि एक सानहा उनके जिंदगी में पेश आया, जिसने उनके जिंदगी के शिराजे को बिखेर कर रख दिया। वालिद का इंतकाल हो गया।

0: जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया। सामाईना भी आप डॉक्टर बशीर बद्र पर मबनी ये खसूसी तमसीली प्रोग्राम समात फरमा रहे थे। तहरीर और आवाज़ थी मोहम्मद फर्रुख जमाल की, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से 747 किलोहर्ट्ज पर। अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों पश्चात यानी 9:50 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं शेर बहादुर सिंह। इनसे पहले सुनिए ये पचरा।

इस दादरा के बाद शेर बहादुर सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये छप रहियां।

आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं शेर बहादुर सिंह। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं ये पूर्वी कलाकार शेर बहादुर सिंह।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे शेर बहादुर सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, शेर बहादुर सिंह के स्वर में लोकगीत आप सुन सकते हैं कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर भी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 10:10 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ का कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। आज आप सुनेंगे कन्नड़ सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
1: कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा में एक गीत। गीतकार श्री दोड्डरंगी गौड़ा, संगीत निर्देशिका श्रीमती इंदु विश्वनाथ। इसे गा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु के विद्यार्थी। गीत का भाव इस प्रकार है। भावात्मक एकता को सीखने के लिए महाविद्यालय है प्रकृति। सूर्य और चंद्र उदयास्त में कभी अपना क्रम नहीं तोड़ते, ऋतु परिवर्तन क्रमानुसार चलते हैं। पेड़ पौधे मानव से न कुछ मांगते और न आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पशु पक्षी आश्रितों को धोखा नहीं देते। इस महान प्रकृति को देखकर मानव ने कुछ नहीं सीखा। धरती आसमान को देखकर हम सब सीखें और सुखी जीवन बिताएं। इस गीत को गाने के लिए बच्चों, आपको तो साहित्य चाहिए ना। चलिए पहले मैं आप सबको इसका साहित्य बताऊंगी, बाद में गाना शुरू करेंगे। तो सब लिखने के लिए तैयार है ना?
2: हाँ तैयार है।
1: इस गीत में एक पल्लवी, एक अनुपल्लवी और तीन चरण हैं।
3: बान सूर्य तड़वागेंदु हुट्टुवुदिल्ला, बेसरवेंदु मध्याह्नक्के मुळुगुवुदिल्ला।
1: अनुपल्लवी इस प्रकार है।
3: चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ला, हुण्णिमेयंदु अमावास्ये आगुवुदिल्ला। चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ला, हुण्णिमेयंदु अमावास्ये आगुवुदिल्ला। सोमारी मनुज होत्तिगे मुंचे एळुवुदिल्ला, शिस्तनु मरेये बाळल्लेंदु एळिगे इल्ला। ಸೋಮಾರಿ ಮನುಜ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತನು ಮರೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲೆಂದು ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ತರುಲತೆಗಳು ಮಾನವರಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತದ್ದಿಲ್ಲ. ತರುಲತೆಗಳು ಮಾನವರಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮರಗಿಡಗಳು ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮರಗಿಡಗಳು ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ.
1: ಆರ್ ಯೆಹೆ ತೀಸ್ರಾ ಔರ್ ಅಂತಿಮ್ ಚರಣ್.
3: ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮನುಜ ಕಲಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗ ಪಾಠ ಕಲಿಯೇ

0: चलिए अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बी ए जय सिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सी वी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगीति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: अभी आप कन्नड़ सामुदायिक कान भाषा शिक्षा का कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ पलों बाद यानी 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Akashwani at 90.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

यह आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, गीतकार हैं मजरूह, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। आवाजें महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की। गीतकार हैं नीरज, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लव का अफसाना होगा।

ये गीत हमें लिया है फिल्म छोटी बहन से, आवाज सुबीर सेन और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से, आवाज किशोर कुमार की, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार हैं असद भोपाली और देव कोहली, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है बाल संग कार्यक्रम।

0: जय
1: जय हिंद
0: हिंद
1: नन्हे
0: नन्हे
1: साथियों।
0: साथियों।
1: नमस्कार सोनी दीदी, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं मंजरी दीदी?
1: मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे बाल जो साथी हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे।
0: और हमारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे
1: हाँ ना, बहुत
0: होंगे।
1: मस्ती की होगी और अब जो है इस मूड में होंगे कि भाई बैक टू पवेलियन, अब तो फिर से स्कूल चलो, यानी कि जून आ गया है तो स्कूल खुलने ही वाले होंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है कि स्कूल फिर से खुल जाएंगे। लेकिन साथियों, आपने बहुत मस्ती की होगी और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से खाया पिया भी होगा,
0: हाँ भाई,
1: क्योंकि
0: घर में है तो नए-नए
1: हाँ
0: पकवान मम्मी दादी नानी के हाथों का
1: हाँ
0: खा रहे होंगे।
1: छुट्टियां हैं तो बहुत सारी फरमाइशें आपने मम्मी पापा से की होंगी, मम्मी से किचन में कुछ नया नया रोज बनवाया होगा। लेकिन सोनी दीदी जानती हैं हमारे साथी क्या करते हैं कि बड़े शौक से कुछ बनवा तो लेते हैं, लेकिन फिर एक दो बाइट ली, एक दो कौर खाया और फिर मम्मी पसंद नहीं आ रहा है, मम्मी मन भर गया और खाना छोड़ देते हैं।
0: और दीदी जानती है, जो घर का खाना बनता है बच्चे ज्यादातर इसको नहीं खाते, और
1: जी,
0: ये जो बाहर का जो फास्ट फूड है ये सब खाने में मतलब बहुत ही रुचि रखते हैं।
1: घर का खाना उन्हें बहुत भाता नहीं है और वो बाजार की चाट पकौड़ी खा लेते हैं या कुछ भी
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो बच्चे क्या, कभी कभी हम बड़े भी ऐसा कर देते हैं।
0: जी
1: तो इसलिए हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों को रोकना और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि सभी को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले।
0: और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, और पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल दीदी, और इस बार 2026 की थीम है
0: जी
1: बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन।
0: जी
1: यह इस बात पर प्रकाश डालती कि कैसे वैज्ञानिक जानकारी और डेटा का उपयोग करके बीमारियों को कम किया जा सकता है और लागत प्रभावी समाधान निकाले जा सकते हैं। तो दीदी, बात ये तो आधिकारिक प्रयास की रही कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी खाद्य की सुरक्षा कैसे हो, यानी जो पदार्थ हम खाते हैं
0: जी
1: वो हमारे लिए बीमारियों का कारण ना हो बल्कि हमारे शरीर को पोषित करें,
0: जी
1: और इसके प्रति जागरूक करने के लिए हमारी सरकार ने ऐसा प्रयास किया है, हमारी संस्थाओं ने ऐसा प्रयास किया है। लेकिन हमें

0: भी तो जागरूक होना चाहिए ना।
1: बिल्कुल दीदी, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि दूषित भोजन खाने से बीमारियां होती हैं और किस तरह से हमें नुकसान होता है। तो इसके लिए देखिए, हमारे बच्चों से ये कहना है कि हमारे जैसे हमारा स्वास्थ्य का ध्यान तो हमें ही रखना है, और इसके लिए संतुलित भोजन जरूरी है। वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, फल है, ये सब खानों में प्रोटीन होता है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है।
0: जी बिल्कुल। और खाद्य की बात करें तो माता पिता तो बताते ही हैं हमें, साथ साथ
1: जी
0: स्कूल में टीचर भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया सीखना है, हमारे
1: जी
0: टीचर बताते हैं, हमारे माता पिता बताते हैं। जैसे हमारे साथियों की आदत होती है, खेल के आ रहे हैं और फट से हाथ पैर धोया नहीं,
1: हाँ,
0: खाना
1: खा
0: खा लिया,
1: लिया
0: हाथ खाना उठाया और खा
1: खा
0: लिया मुंह में,
1: लिया
0: कुछ नहीं दिखता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो हम खेलने गए थे, हमने न जाने क्या क्या छुआ, कहाँ पे हाथ गया,
1: जी
0: तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाथ में आ जाते हैं। और नतीजा जब हमें सर्दी खांसी बुखार या कोई बीमारी होती है तो पता चलता है कि इस वजह से हो गया, तो वो अचानक से शरीर में कहाँ से आता है, वो इसी तरह से आता है
1: हाँ,
0: ना।
1: संक्रमण की वजह से होता है।
0: जी, जो सावधानियां हम रख सकते हैं वो तो हमें रखना ही चाहिए। वैसे ही खाद्य की बात करें तो हम साथ ही साथ कुछ ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं कि हम तो अच्छा खाएं ही, हम तो सफाई से खाएं ही, हमारे जो साथी और भी हैं, हमारे जो दोस्त हैं स्कूल में, उनको भी हम इन चीज़ों के बारे में बताएं। अगर हमारा कोई साथी ऐसा करता है तो उसे हम रोकें और उसे हम बताएं कि सफाई से रहने का क्या महत्व है। दीदी, हम लोग खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे थे कि हाँ, कैसे हमारा भोजन हमारे शरीर का पोषण करे।
1: जी
0: तो सफाई के साथ साथ उसका एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जैसा आपने कहा भी अभी प्रोग्राम की शुरुआत में कि घर के बने खाने की बात, तो घर के बने खाने को अवॉइड करके हमारे साथी आजकल फास्ट फूड पे बड़ा जोर देते हैं, जो कि अधिकतर मैदा से बना होता है और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स उसमें मिले होते हैं, जैसे कि पिज्जा है, बर्गर है, या
1: जी
0: बहुत
1: दीदी
0: सारी ऐसी चीजें हैं कि जो साथी खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो मैदा होता है ना वो हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं होता है,
1: जी दीदी
0: तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसलिए साथियों, फास्ट फूड जितना कम से कम कभी कभी खा लीजिए, लेकिन उसे डेली हैबिट की घर के खाने को स्किप करके हम फास्ट फूड खा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: दीदी ये फास्ट फूड तो जैसे स्वाद में बड़े मतलब टेस्टी लगते होंगे, लेकिन बच्चों इस जितना ये टेस्टी लगते हैं उतना ही हमारे शरीर के लिए नुकसान है, और कई तरह से ये नुकसान करते हैं, क्योंकि उसमें सारे जैसे दीदी ने बताया कि उसमें कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं। भाई कभी कभार की बात तो अलग है कि भाई कभी गए और कभी खा लिया, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर घर के खाने पर हम ज़्यादा फोकस करें तो उससे हमारा शरीर क्या है कि कई तरह की बीमारियों से बच सकता है। और देखिए, घर का खाना रहेगा तो हमारे मम्मी पापा भी हमें खुशी से खिलाते हैं, है ना, कि हम खाने को पूरा अगर खाते हैं, खत्म करते हैं, तो उनको भी खुशी होती है ना भाई, वो भी तो मेहनत करके बनाती हैं, हमारे बच्चे खाएं। और तो बच्चों ज्यादा ज्यादा आप घर के खाने को
0: जी दीदी, फास्ट फूड से बचना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें अत्यधिक मात्रा में सोडियम, खराब फैट और कैलोरी होती है, जो मोटापे और दिल की बीमारियों का कारण बनती है। इससे बचने के लिए साथियों हम क्या कर सकते हैं कि जैसे पूरे सप्ताह का मेन्यू हम घर पे बना लें कि हमें पहले क्या खाना है। हर बार कुछ अलग अलग खाने से हमारा मन भी नहीं भरेगा कि हाँ, हमें बाहर की तरफ हम जाएँ, और घर पे हम खाएंगे तो हमें नुकसान भी नहीं होगा। और हमेशा एक हेल्दी स्नैक्स अपने पास रखें, जैसे कि अखरोट है, मूंग है,
1: जी
0: बादाम है, कि अगर
1: हाँ
0: मन करे तो कुछ वैसा हम खा लें। और अगर आपको पिज्जा बर्गर बहुत ही पसंद है ना, तो फिर आप अपने घर पे उसे मम्मी से बनवाएं। सूजी, गेहूं, गेहूं का बेस हो सकता है, ताजी सब्जियों का उपयोग अगर अपने सामने मम्मी बनाएंगी तो कम से कम वो जो भी डालेंगी आपको पता होगा और वो सुरक्षित होगा।
1: जी
0: और दूसरी बात ये कि जब क्या होता है ना दीदी, कि अगर हम बहुत मुश्किल में होते हैं, कभी कभी बहुत परेशानी दिमाग में आ जाती है, तो फिर हमारे दिमाग में क्या होता है, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब हम तनाव में हैं, हम या हम दोस्तों का साथ देने के लिए बस ऐसे ही मतलब
1: हाँ,
0: फास्ट
1: साथ
0: फूड ना
1: देने
0: खा
1: के
0: लें,
1: लिए हम खा लेते हैं,
0: हाँ, तो
1: कभी कभी
0: ऐसे
1: ऐसा भी होता
0: फास्ट
1: है।
0: फूड हम ना खाएं। और अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे कि दीदी अब तो हमने खाना शुरू कर दिया है, अब हम कैसे रोकें, तो मान लीजिए यदि आप हफ्ते में 4 बार खाते थे पहले, तो 2 पे आ जाइए, 3 पे आ जाइए, और धीरे धीरे महीने में भी 1 बार हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना भी हो सके फास्ट फूड से बचे, छोटे छोटे कदम उठाएं। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। और दीदी, अब बहुत सारी बातचीत हो गई है, और मन को अच्छा करने के लिए से तनाव में खाने से अच्छा है, फास्ट फूड खाने से अच्छा है कि हम एक अच्छा सा गाना सुन लें, तो तनाव तो अपने आप भी कम हो जाता है।
1: और मौज
0: तो
1: मस्ती भी हो
0: हाँ, तनाव अपने आप
1: जाएगी
0: कम हुआ और मौज मस्ती हो गई, तो और फास्ट फूड खाने से भी बच गए। तो दीदी, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये।

तो देखा दीदी, गीत कितना अच्छा था और गीत सुनने के बाद मन तो खुश। मैंने पहले भी कहा था कि मन तो खुश हो जाता है, बच्चे हों बड़े हों किसी को भी गीत संगीत बहुत पसंद आता है। और दीदी, बच्चे अगर स्वस्थ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनमें, बच्चे तो वैसे भी बहुत प्रतिभावान

0: जानते हैं, बचपन से ही उनकी प्रतिभा, किसी की अलग अलग प्रतिभा निखर के सामने आने लगती है और स्वस्थ रहें तब तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारे स्टूडियो में भी ना
1: कुछ
0: बहुत
1: नन्हे साथी
0: सारे
1: आए हैं
0: नन्हे
1: ना।
0: स्वस्थ और बहुत ही प्रतिभावान साथी हमारे स्टूडियो में आए हैं, जो हमारे कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए कब से बेकरार हैं कि भाई दीदी लोग मौका दें तो हम भी अपनी कुछ प्रस्तुतियां, मतलब अपना कौशल हम भी दिखाएं।
1: हाँ
0: तो साथियों, हमारा तो काम ही है आपके लिए मनोरंजन लाना, आपके लिए कुछ अच्छी बातें लाना। तो आइए अब सुनते हैं हमारे जो बाल कलाकार हमारे स्टूडियो में हैं उनकी ये प्रस्तुतियां।
2: प्रणाम, मेरा नाम देवांगना फनी है। आज मैं राग केदार में बड़ा ख्याल सुनाने जा रही हूँ।

0: दीदी, देखा आपने बच्चों ने कितनी अच्छी प्रस्तुतियां की, और ये नन्हे बाल कलाकार हमारे देश का भविष्य हैं। हम कामना करते हैं कि इनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल हो, और जो साथी इन्हें सुन रहे हैं वो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा करें, ऐसा हम कामना करते हैं। और दीदी, अब कार्यक्रम में चलने का वक्त हो गया है, तो चलते चलते हम लोग आज खाने से शुरू किए हैं, क्योंकि
1: हाँ, खाने पर ही खत्म करेंगे
0: विश्व खाद्य सुरक्षा
1: दीदी।
0: दिवस की बात की हमने, और आज
1: हाँ
0: है भी, तो हम लोग समापन भी खाने से करेंगे। कि चलते चलते हम कहेंगे कि खाने को ना करें बर्बाद, यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तभी हमने कहा था ना कि एक दो बाइट ली और फिर मन
1: जी
0: नहीं है।
1: दीदी,
0: तो आपको तो साथियों खाना आराम से मिल जा रहा है, तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कभी हो सकता है सामने से ना देखा हो, पर टीवी पे तो देखा ही होगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं, जहाँ खाने के लिए तरसते हैं, तो रोटी के लिए इतनी मेहनत होती है कि बस पूछो मत। और किसी तरह से दो रोटी मिल गई तो साथ में सब्जी नहीं मिला, और बाकी पोषक तत्वों की तो बात ही खत्म कर दे। इसलिए साथियों, जो भगवान ने आपको नेमत दी है, भगवान का शुक्रिया करें और उसे बहुत प्रेम से ग्रहण करें। और कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मुझे नहीं खाना है, तो साथियों एक तरीका ये हो सकता है कि सीधा मना कर दे। तो साथियों, आपको अगर लगता है कि भूख लगी तो है पर बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें? तो रोटी खा रहे हैं या जो भी कुछ खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें। जैसे थोड़ा सा एक रोटी खा लिया, अब ऐसे लगता है नहीं अब दूसरा खा सकते हैं, तो दूसरी लें वरना ना लें। तो ऐसे क्या होता है ना कि हम बर्बादी से बच जाते हैं। और कभी अगर ऐसा लगे कि नहीं भाई बिल्कुल ही खाने का मन नहीं है, तो अपने आसपास थोड़ी नज़र उठाइए। हो सकता है कोई ऐसा हो कि जो आपका खाने का मन नहीं कर रहा है वो
1: वो
0: किसी के
1: उसकी
0: लिए,
1: जरूरत हो
0: वो उसकी
1: दीदी।
0: ज़रूरत हो, उसके लिए वो
1: हाँ
0: नेमत बन जाए। कि भाई किसी के घर में हो सकता है चूल्हा ना जला हो और उसको अपने ले जाके खाना दे दिया, तो वो तो आपको कितनी दुआएं देगा। तो साथियों, अच्छी आदतें सीखिए, तो हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब आज का कार्यक्रम दीदी लोग यही समेटती हैं और आपको कहती हैं जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: Akashvani at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय है थायराइड की समस्या और चिकित्सा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, इनसे बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपके उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना के साथ शुरू हो चुका है आपका अपना हेल्थ अवेयरनेस फोनिंग कार्यक्रम आरोग्यम, और मैं हूं आपकी रेडियो सहेली शिखा श्रीवास्तव। श्रोताओं, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में और असंतुलित खान पान इसके साथ तनाव के बीच हमारा शरीर कुछ ऐसे इशारे करता है जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिना वजह थकान का होना, अचानक वजन का बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, चिड़चिड़ापन होना या बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सामान्य नहीं, थायराइड का संकेत हो सकता है। जी हाँ, आरोग्य में आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा पर। और इस विषय पर आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए, साथ ही आपको सही सलाह और सही चिकित्सा पद्धति बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान, शहर के जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, और सभी श्रोताओं को हृदय से नमस्कार।
0: एक फोन आ रहा है मैडम, ले लेते हैं फिर आगे बातें करते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: भदोही से राधेश्याम चौहान भैया।
0: भदोही से राधेश्याम चौहान जी, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थायराइड पर आज बात हो रही है और डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, तो आप डॉक्टर साहिबा से बात करें।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, बताएं।
2: ये बताइए, जैसे कि थायराइड मोटापा होता है, कैसे होता है?
1: नहीं नहीं, थायराइड की वजह से मोटापा हो सकता है। घर में किसी को लक्षण है क्या?
2: जैसे मोटापापन है घर में किसी का, जिसे को पूछ रहे हैं।
1: नहीं, थायराइड जब ठीक तरह से, जैसे सामान्य तौर पर भी हम देखते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है वो पतला रहेगा, जो कम काम कर रहा है वो मोटा हो जाएगा। शारीरिक श्रम यदि कम रहा तो व्यक्ति में मोटापा बढ़ेगा। थायराइड में भी यही है कि थायराइड जो ग्रंथि है, अगर वो कम काम कर रही है तो शरीर में मोटापा वो बढ़ाएगी। लेकिन थायराइड की वजह से ही सिर्फ मोटापा होगा ऐसा नहीं है। मोटापे के बहुत सारे लक्षण कॉज हो सकते हैं, उसमें से एक मुख्य कॉज थायराइड का संतुलित न होना भी है।
0: जी धन्यवाद राधेश्याम जी।
1: नमस्कार।
0: हाँ मैडम, श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं और श्रोताओं से जुड़ते जुड़ते हम अपने भी सवाल आपसे पूछेंगे। पहले तो बता दीजिए यही कि थायराइड क्या है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है और कब ये बीमारी का रूप बन जाता है?
1: असल में

0: थायराइड जो है एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गले में होती है,
1: जी
0: और ग्रंथि तो छोटी है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं।
1: जी
0: तो इसमें शरीर का जो पूरा चयापचय है या मेटाबॉलिज्म है, कहाँ पर कितना धातु बनना चाहिए, कहाँ पर धातु कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें थायराइड के पे निर्भर करती हैं।
1: जी
0: दूसरी चीज़ ऊर्जा का स्तर, हमेशा थकान बना रहना, ठीक है ना, तो वो ऊर्जा का स्तर थायराइड नियंत्रित करता है। ग्रोथ को, बच्चों में भी जो ग्रोथ हो रही है या हमें मतलब बड़े लोगों में भी ग्रोथ हो रही है, उसको नियंत्रित करना थायराइड ग्रंथि का काम है। इस प्रकार से आप एक्चुअली ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 और T4
1: जी
0: मेन तौर पर। तो ऊर्जा का स्तर बनाए रखना, हृदय की गति को संतुलित करना, वजन को संतुलित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इन सभी कार्यों में थायराइड ग्रंथि की बहुत ही अहम भूमिका होती है।
1: जी जी और अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो वो बीमारी बन जाती है।
0: जी बिल्कुल, सामान्य तौर पर भी आप किसी भी चीज़ में देखें, जो चीज़ संतुलित नहीं है वो बीमारी बन जाती है।
1: जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। और इसी क्रम में हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो थायराइड की समस्या है, शुरू होने से पहले इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बिल्कुल, शरीर कुछ सिम्टम्स दिखाता है, एक्चुअली हर व्याधि का पूर्व रूप होता है। तो उसमें कई बार वजन का अचानक से बढ़ने लगना, जैसा भोजन आप नहीं कर रहे हैं या लाइफस्टाइल भी आपकी बेहतर है इसके बावजूद वजन बढ़ रहा है, या फिर वजन अचानक से कम हो रहा है।
1: जी
0: दूसरी चीज़ ये है कि बालों का झड़ने लगना। तीसरी चीज़ चेहरे पर बाल उगने लगना, कई बार मूछें आना, स्त्रियों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या दाढ़ी की जगह पे बाल आने लगते हैं। हाथ पैरों में ठंड लगने लगना, तो सामान्य तौर पर ठंड के मौसम में ठंड लगता है, लेकिन मोजे पहनने के बाद भी या शाम सामान्य तौर पर बाकी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो हाथ और पैर हैं, वो ठंडे रहना। कब्जियत का बना रहना, या फिर लगातार डायरिया का बना रहना, यानी
1: जी
0: कि पाचन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से गड़बड़ होती है। फिर चेहरे पर सूजन आ जाना, आवाज़ में कर्कशता आना, तो मांसपेशियों में दर्द रहना, थकान रहना, दौर्बल्य रहना, पाल्पिटेशंस जिसमें कि हृदय की धड़कनें बढ़ जाना, इस तरह के जो लक्षण हैं अगर एक साथ में दिख रहे हैं तो हमें तुरंत थायराइड की जांच करवा लेनी चाहिए।
1: अच्छा, थायराइड के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार अगर ये दवा शुरू हो जाती है तो लोग कहते हैं कि हमेशा करनी है, डॉक्टर्स का ऐसा मानना है, तो क्या ये सही है?
0: एक्चुअली शुरुआती दौर में थायराइड की बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है, ट्रीट ही नहीं क्योर किया जा सकता है। और खास करके अगर आयुर्वेद में आप जाएं तो उसका एक मतलब डिटॉक्स प्रोसीजर्स होती हैं जिसको पंचकर्म कहा जाता है।
1: अच्छा
0: तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, जो हार्मोन रिलेटेड समस्याएं हैं, या थायराइड में ही एक ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन भी आ जाती है, तो वो जो डिटॉक्स है, वमन विरेचन हम लोग कराते हैं, उसकी वजह से रिजुविनेशन होता है, यानी शरीर जो है वो नया बनता है। तो उसमें हम लोग 1 से 2 साल के अंदर में या 3 साल के अंदर में तो हम काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। जब बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है और बहुत सारे सिस्टम्स उसमें खराब होने लगते हैं, तब समस्या आती है कि हो सकता है कुछ केसेस में उम्र भर इसकी मेडिसिंस करानी पड़े।
1: जी, थायराइड के बारे में ये भी सुना गया है कि एक मोटा करने वाला थायराइड होता है, एक पतला करने वाला होता है, तो क्या ऐसा कुछ है?
0: जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक व्यक्ति है, अगर वो ज़्यादा काम करता है
1: जी
0: शारीरिक श्रम
1: जी
0: तो वो पतला हो जाएगा,
1: अच्छा
0: अगर वो कम काम करता है तो वो मोटा हो जाएगा। ये चीज़ हमारी ग्रंथि के साथ भी है। तो अगर ग्रंथि का कार्य कम हो गया है तो शरीर में जो लक्षण दिखाई देंगे वो मोटापे की तरफ जाने वाले होंगे।
1: जी
0: ग्रंथि अगर ओवर एक्टिव हो गई है
1: जी
0: तो शरीर में जो लक्षण दिखाई देंगे वो पतले करने वाले की तरफ होंगे। तो ये दो तरह के अवस्थाएं पाई जाती हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि थायराइड की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये बीमारी महिलाओं की है, तो क्या महिलाओं को ही थायराइड होता है, पुरुषों को नहीं होता?
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है, और उसकी एक बहुत खास वजह होती है हमारी ओवरीज,
1: जी
0: हमारे जो बीजकोश होते हैं, ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसके कारण कि थायराइड में डिसफंक्शन हो सकता है अगर एक्सेसिव सिक्रीशन उसका हुआ तो।
1: जी
0: तो कई बार आप देखेंगे ना कि जो महिलाएं इस परेशानी से आती हैं कि पीसीओडी वगैरह हो गया,
1: जी
0: तो उसमें मैक्सिमम केसेस में थायराइड जो है वो साथ में रहता ही है। तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक्सेसिव ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, जिसके कारण कि

0: थायराइड जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, और उसमें अत्यधिक मानसिक स्राव या ब्लीडिंग होना, इनफर्टिलिटी या पीसीओएस, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है, सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: अच्छा, पुरुषों में अगर थायराइड है तो उसके क्या लक्षण होते हैं?
0: सेम यही लक्षण है, बस मासिक
1: अच्छा,
0: धर्म वाली चीज़ें आप हटा दीजिए
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वही ग्रोथ का इम्बैलेंस होना, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आना, बालों का झड़ना, वजन का बढ़ना या कम होना, ये सारे सामान्य लक्षण थायराइड के हैं, पाल्पिटेशंस होना।
1: जी। अच्छा, दवा करने के बाद भी बहुत लोगों का ये कहना होता है कि हम तो रेगुलर दवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा थायराइड सही नहीं हो रहा है, तो ये क्या कारण है इसके?
0: एक्चुअली इसमें हमें ये देखना होगा कि थायराइड होने का जो कारण है
1: जी
0: वो लिवर और गॉल ब्लैडर, ये जो हमारे हैं वो हैं।
1: जी
0: तो जब भी कई बार कई क्या मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं और उसके बाद उनके सिम्टम्स में कमी नहीं आती है। लिवर जब तक ठीक नहीं रहेगा, एक्चुअली वहाँ पर ये रहता है, मतलब ये जो T4 को T3 में कन्वर्ट किया जाता है वो लिवर से ही किया जाता है। तो जो ग्रंथि की एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से करने के लिए लिवर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: कई बार ऐसा केसेस आते हैं कि थायराइड प्रोफाइल बिल्कुल सही है, जब हम लिवर प्रोफाइल कराते हैं तो वहां पर हमें समस्या मिलती है देखने को। पुरुषों में स्पेशल अल्कोहलिक जो लोग हैं उनमें ये काफी देखने को मिलता है। तो लिवर और गॉल ब्लैडर जब तक ठीक नहीं रहेगा, हम प्रॉपरली थायराइड की ट्रीटमेंट सिर्फ T3 T4 से या हार्मोन थेरेपी से नहीं कर सकते हैं।
1: अच्छा, दवा लेने का क्या सही तरीका है कि कैसे लेना चाहिए, उसके आगे पीछे कब खाना है, क्या खाना है?
0: हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन्स जब चलती है ना तो कई बार जैसे कि कुछ अपथ्य होते हैं, कुछ पथ्य होते हैं, हम आगे बात करेंगे, लेकिन थायराइड की दवा जब आप ले रहे हैं तो दवा के 4 घंटे पहले या बाद में कम से कम सोया के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: अभी बहुत ट्रेंड में है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो सोया बहुत ट्रेंड में है फूड के, तो
1: जी
0: सोया के प्रोडक्ट्स उसमें नहीं लेने हैं, क्योंकि वो गोइट्रोजन मतलब एक ऐसी तत्व पाया जाता है तो जो थायराइड के डिसफंक्शन को बढ़ा सकता है।
1: जी
0: साथ में जो बहुत ज़्यादा फाइबर की बहुत सारा सलाद खा रहे हैं तो वो दवा के अवशोषण में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके साथ में कॉफ़ी हो गया या आयरन या कैल्शियम, इनकी जो चीज़ें हैं ये थायराइड की दवा के कम से कम 4 घंटे बाद तक आप ना लें। इसीलिए मोस्टली थायराइड की मेडिसिंस अर्ली मॉर्निंग दी जाती हैं ताकि सामान्य तौर पर नेचुरली आपको ये सारी चीज़ें बाद में आप खाएंगे।
1: और खान पान क्या रखें कि थायराइड की समस्या हो ही ना?
0: हो ही ना, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ खान पान पर नहीं डिपेंड करता, आपके स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन भोजन में हरी सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज, विटामिन ए, जिंक, सेलेनियम, मतलब ये एग वगैरह में भी मिल जाता है, सीड्स जैसे अभी गांव में तरबूजे के बीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं, खरबूजे के बीज मिल जाते हैं, अलसी या तीसी जिसको कहते हैं हम लोग, वो मिल जाते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। नमक में आयोडीन हो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मानसिक हमारा तनाव है, स्ट्रेस लेवल है, वो जितना कम रहेगा, थायराइड ही नहीं किसी भी बीमारी को पनपने में वो रुकावट पैदा करेगा। अगर आप गांव में रहते हैं और आप गेहूं उगा सकते हैं तो
1: जी
0: गेहूं के ज्वारे का जो रस है ये काफी फायदा करता है हर सेल को रिजुविनेट करने में, और खास करके जो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कई बार कैंसरस केसेस में भी हम लोग बोलते हैं गेहूं के ज्वारे का रस पीना बहुत फायदेमंद होता है।
1: जी अगर किसी महिला या पुरुष को थायराइड की समस्या हो भी जाती है तो क्या कोई घरेलू उपचार है जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है?
0: अगर आपको शुरुआती दौर में पता चल जाए या
1: मैडम,
0: फिर
1: इस प्रश्न का उत्तर हम
0: ओके
1: जानेंगे इस फोन के बाद। हाँ, कौन बोल रहे हैं सर?
2: जिला मिर्जापुर गांव सभा कांत बोल रहे हैं।
1: सभाकांत जी, आरोग्य में आपने फोन किया है, आज थायराइड पे बात हो रही है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब से लीजिए, बात करिए।
0: हेलो,
2: हेलो डॉक्टर साहब
0: नमस्ते, बताएं।
2: जी, जैसे थायराइड हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा जैसे कि थायराइड है?
0: असल में दो तरह से होता है, एक में जो ग्रंथि है वो ज़्यादा काम करती है तो जिसको कि हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, या फिर कम काम करती है, तो दो तरह के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे शरीर में ऊर्जा की कमी होना, थकान हमेशा लगे रहना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना या कम होना, ठंड सहन न होना, या फिर कई बार इस तरह का है कि बार बार भूख लगना।

0: मतलब ये दोनों मिले जुले लक्षण है, या तो ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो रही है या ग्रंथि कम एक्टिव हो रही है। बालों का झड़ना, चेहरे पर सूजन, आंखों में सूजन, दूसरे वाले में आंखों का बाहर निकल आना, जैसे कोई ऐसे घूर करके देखता है ना, उस तरह का अपियरेंस सामान्य तौर पर हो जाता है।
1: जी, श्रीकांत जी आपको नमस्कार, थैंक यू।
2: हाँ नमस्कार, धन्यवाद।
1: सर सर आपको भी
0: जी, धन्यवाद।
2: हाँ डॉक्टर साहिबा, हम लोग बात कर रहे थे कि कोई घरेलू उपचार के माध्यम से क्या थायराइड को ठीक किया जा सकता है?
0: हाँ, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये है कि अगर ये नया हुआ है, मतलब जल्दी ही आपको पता चल गया है इसके बारे में,
2: जी
0: तो धनिया जो होता है, धनिये का पानी थायराइड पर बहुत अच्छा काम करता है।
2: जी
0: मतलब ये 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच धनिया या 5 ग्राम धनिया आप उबालिए, 1 ग्लास कीजिए उसे और अर्ली मॉर्निंग उसको लीजिए।
2: वो धनिया सूखी वाली।
0: सूखी वाली जो धनिया के बीज होते हैं, हल्का सा उसको दरदरा अगर आप कर देते हैं, सामान्य मौसम में आप उसको रात में भिगा दीजिए और सुबह बॉईल करके ले लीजिए। गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा अगर आप सुबह डायरेक्टली उबाल करके लिए तो भी ठीक रहेगा। दूसरी चीज ये है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो कैसे भी करके वॉकिंग जो है वो एक एक्टिविटी है। मतलब कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं इतने देर टहल लेता हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, ऐसा नहीं होता, वो एक एक्टिविटी है।
2: जी
0: तो एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। योगासन अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, वो अच्छी चीज है। उसके साथ में कुछ आसन, जैसे कि सिंहासन हो गया, सेतु बंधासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, इस तरह की चीजें जो बैकवर्ड बेंडिंग है, ये ग्रंथि के सामान्य रहने में काफी फायदेमंद होती हैं। ये अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच रात में सोते समय आप दूध के साथ या फिर पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो अगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं हुआ तो वो कंट्रोल कर देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रंथि की जो का जो स्वास्थ्य है ये उस पर काम करेंगी।
2: अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि जिसको थायराइड की समस्या है तो गर्भधारण में भी समस्या होती है?
0: जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, इस्ट्रोजन डायरेक्टली इससे संबंधित है थायराइड की प्रॉब्लम से। तो थायराइड अगर हुआ तो वो बल्कीनेस यानी थुलथुलापन गर्भाशय में बढ़ा देगा,
2: अच्छा।
0: या पीसीओडी, बहुत सारे ग्रंथियां उत्पन्न करेगा। तो वो जो ग्रंथियां, गर्भाशय ग्रंथियां हैं या ओवरी की ग्रंथियां हैं, वो सामान्य फर्टिलिटी को कम कर देती हैं।
2: और गर्भावस्था के दौरान देखा जाता है कि थायराइड बढ़ गया है, तो वैसी स्थिति में क्यों बढ़ जाता है ये, और दवाएं क्या लेना सुरक्षित है?
0: बच्चे की वजह से काफी चीजें बदलती हैं,
2: जी
0: और गर्भावस्था के दौरान स्त्री का शरीर बहुत हद तक बदल जाता है। तो उसके हार्मोन्स बदल जाते हैं गर्भावस्था के दौरान। थायराइड ही नहीं, कई लोगों को डायबिटीज की समस्याएं भी आ जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जेनेटिक्स में जो प्रॉब्लम रहती है वो उस वक्त उभर जाती है, और जैसे ही गर्भावस्था खत्म होती है ये चीजें चली भी जाती हैं मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो गर्भावस्था में जो चेंज आता है वो ऑटो इम्यूनिटी की तरफ भी चला जाता है। जैसे कई लोगों को गर्भावस्था के बाद हाशिमोतो जैसी बीमारियां हो जाती हैं
2: अच्छा, ये क्या
0: थायराइड की।
2: है?
0: ये थायराइड का ही एक ऐसा प्रकार है जो ठीक नहीं हो सकता,
2: अच्छा।
0: जिसमें शरीर अपने लिए ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है। तो डॉक्टर से सलाह हमेशा लेते रहें, गर्भावस्था को बहुत हमें सीरियसली लेना है, और जैसा आपकी डॉक्टर बताती हैं उस हिसाब से आप करते जाएं। टेंशन बहुत नहीं लेनी है, काफी हद तक ये चीजें खत्म हो जाती हैं।
2: डॉक्टर साहिबा, अगर कोई गर्भधारण करना चाहता है और उस समय उसको थायराइड की समस्या है और वो थायराइड की दवाएं ले रहा है, तो क्या दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है?
0: देखिए, जिसका भी इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, और ये साइड इफेक्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे अगेन डिपेंड करते हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपकी थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो सबसे पहले स्ट्रेस और को कम करना है और एक्सरसाइज करते रहना है, ये बहुत जरूरी है। डाइट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर थायराइड की वजह से कोई समस्या आ भी रही है तो बाकी सारी चीजें, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे अच्छे हों जिसकी वजह से हम इजीली कंसीव कर जाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है कंसीव करने में, लेकिन कंसीव कर सकते हैं थायराइड के साथ भी, उसके मेडिकेशन चलने के साथ भी। तो कौन से कारण है जिसकी वजह से थायराइड हुआ है, क्योंकि अगेन जब आयुर्वेद में आप जाएंगे तो हम लीवर ठीक करेंगे, भले ही समस्या आपको थायराइड की हो।
2: जी
0: क्यों? क्योंकि अगर लिवर हेल्दी नहीं रहेगा तो थायराइड हार्मोन प्रॉपरली कभी भी सिक्रीट नहीं हो पाएगा।
2: हम्म,
0: तो इसलिए कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है 2 महीने

0: में तो कोई विशेष रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं आएगा। जब तक आपका लिवर बेहतर काम करना नहीं शुरू कर देता है, हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कई पेशेंट में भाई उनका डाइट अच्छा होता है, लाइफस्टाइल अच्छी होती है, तो वो अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है।
1: बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप दे रही हैं और श्रोताओं को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, इसी क्रम में एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। थायराइड

0: होता है। तो बिल्कुल ये बच्चों में भी देखा जाता है।
1: अच्छा, बच्चों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई देंगे।
0: हाँ, जो पहला लक्षण बच्चों में देखते हैं जिसकी वजह से हम देखें ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बाकी तो बच्चों में वो बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं, उनको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, नहीं समझ में आता। लेकिन अगर ग्रोथ रुक रही है तो फिर वो तुरंत देखना है कि, और अगर खान पान आपकी निगरानी में है तो उसमें अगर वो मतलब पैकेट फूड हो गया, कहीं चिप्स हो गए, जो आजकल माँ बाप ऐसे बच्चे जिद करते हैं और तुरंत उन्हें दे देते हैं, अगर वो चीजें बच्चा नहीं खा रहा है इसके बावजूद वजन काफी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ये थायराइड के कारण हो सकता है।
1: एक फोन आ रहा है मैडम।
0: जी
1: हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
2: हाँ, मैं डॉक्टर शिल्पा भूषण बोल रही हूँ, गया से। जी
1: शिल्पा जी, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज
2: जी
1: डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं और थायराइड पर हम बात कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहिबा से बात करें, क्या जानना चाहती हैं?
0: जी बता। हाँ जी,
2: हाँ नमस्ते डॉक्टर।
0: नमस्ते
2: ये मेरी भाभी को हाइपर थायराइड है,
0: जी।
2: उनका वजन भी बहुत गिर जाता है और हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा कम है, जबकि डाइट वगैरह तो प्रॉपर फॉलो करती हैं उसके बावजूद भी।
0: जी। इसमें हमें देखना पड़ेगा मैडम, असल में दो तीन चीजें हैं ना, जैसा मैंने पहले बताया कि लिवर प्रोफाइल हमें देखनी पड़ेगी, एड्रिनल ग्लैंड आपको हो सकता है पता हो, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, ठीक है ना, तो उसका भी काफी ज्यादा रोल है इसमें। अच्छा, ये इनका टीपीओ आपने चेक कराया है क्या?
2: अब टेस्ट रिपोर्ट देखनी पड़ेगी।
0: हाँ, एक बार उसको करवा लीजिए, ठीक है ना, मतलब जब कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल कराते हैं ना, तो एक बार वो एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। कई
2: अच्छा,
0: बार
2: एंटी।
0: अगर बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन आती है, ठीक है ना, तो उस वक्त आपको बहुत संभल करके चलना पड़ता है, और रिजुविनेशन जिसमें मतलब आयुर्वेद में तो रसायन ड्रग्स होते हैं बहुत सारे जो बॉडी को रिजुविनेट करें, उस तरह की थेरेपी ही देनी पड़ती है, क्योंकि वो धातु क्षयज अवस्था रहती है, हम उसमें विशेष मतलब ऐसे अचानक से खून बढ़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो शरीर जब नॉर्मलाइज करना सारी चीजों को शुरू करेगा तो वो चीजें मतलब ये रिलेटेड है अपने आप, आपको हीमोग्लोबिन पर वर्क करने की जरूरत नहीं है, लिवर और थायराइड पर वर्क किया तो दोनों चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन एक बार वो टीपीओ उसको करवा लीजिए आप। अच्छा, उनका पेट वगैरह कैसा रहता है, मेटाबॉलिज्म ठीक है?
2: हाँ, मेटाबॉलिज्म तो ठीक है, खाना भूख लगती है।
0: तो एक बार उनको टीपीओ करवा लीजिए, और रिजुविनेशन की तरफ हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एज क्या होगी उनकी?
2: एज अराउंड 45।
0: ठीक है, अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेनोपॉज के फैक्टर्स टिपिकली आपकी अवस्था में कि वो कैसे हैं, और बीमारी इनको कब से शुरू हुई है, इनिशिएशन का फैक्टर क्या था, किस चीज के कारण, कई बार स्ट्रेस के बाद अचानक ये शुरू होता है, ठीक है ना, तो ये कब से शुरू हुई है, ये सारी चीजें देख करके और फिर आराम से इनको ट्रीट किया जा सकता है।
1: शिल्पा जी, आप बोल कहाँ से रही हैं?
2: जी मैं गया से बोल रही हूँ।
1: जी, ऐसे ही फोन करते रहें और आरोग्यम सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी शिखा जी, आपका भी धन्यवाद।
1: एक और फोन आ रहा है मैडम। हेलो।
3: हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: पहले आप अपना नाम और पता तो बताएं सर।
3: मैं जमानिया रेलवे स्टेशन से रमेश कुमार पासवान बोल रहा हूँ।
1: डॉक्टर रेचा त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर
2: जी
1: साहिबा
2: जी
1: से आप
2: जी जी
1: बात करें, आज थायराइड पे बात हो रही है।
0: जी बताए।
3: डॉक्टर साहब, ये जो कमर में जो दर्द है, घुटने में जो दर्द होता है, गिरने से दर्द करता है कि ये जो कि इसका बीमारी होता है? डॉक्टर साहब,
0: असल में गिरने से भी हो सकता है, और दूसरी बात कि हड्डियां अगर कमजोर रहेंगी आपकी या मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो दर्द तो होगा। अगर दर्द गिरने के कारण है तो वो तो बॉडी हील कर जाती है, वो आप ठीक हो गए होंगे, लेकिन अगर धातु क्षय अवस्था है तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, और वो ऐसा नहीं होगा कि दो चार पांच गोली खाई आपने अगर हड्डियां कमजोर हो रही है, तो वो लगातार ट्रीटमेंट चलती है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करना है, हड्डियों को कई बार मजबूत नहीं कर पाते तो मांसपेशियों को मजबूत करना है ताकि आप अच्छे से कार्य कर सकें।
1: एक और फोन आ रहा है मैडम।
4: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मोहन यादव, सैदपुर मुड़िया सरैया से बोल रहे हैं।
1: मोहन यादव जी, आज थायराइड पे बात हो रही है और क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहिबा हमारे बीच में हैं।
4: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार मोहन जी।
4: डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या थायराइड के मोटा आदमी में ही पाया जाता है ना?
0: नहीं, दोनों तरह के थायराइड होते हैं, मोटा आदमी भी पाया जाता है और पतला आदमी भी हो सकता है।
4: ठीक है, तो इससे मतलब बचने के लिए क्या क्या मतलब चीजें नहीं यूज करना चाहिए, इसका वो इलाज क्या है?

0: टेंशन कम लेना चाहिए, पहली चीज़ तो यह है। भोजन अच्छा करना चाहिए, ठीक है। गांव में अगर आप रह रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा भोजन मिलता है, लेकिन उसमें भी जैसे एक ही चीज़, अगर गेहूं खा रहे हैं तो सिर्फ गेहूं खा रहे हैं, या चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे अनाज हैं, बहुत सारे क्षुद्र धान्य हैं, जैसे मड़ुआ हो गया, जैसे बाजरा हो गया, तो वो मौसम के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदल करके लें, ताकि शरीर को हर तरह का अनाज पचाने की आदत भी रहे और उससे हम फायदा भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कई बार लोग शहरों में देखिए तो सलाद ही खा रहे हैं, इस तरह का काम हालांकि गांव में नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं लेना है आपको। नमक जो आप चुन रहे हैं वो बढ़िया नमक हो, जिसमें आयोडीन हो कम से कम। साबुत अनाज जैसे दलिया वगैरह बना करके हम लोग खड़े अनाज का खाते हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें बीच बीच में भोजन में करनी चाहिए। विटामिन ई है, जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खा सकें, फिश ऑयल्स रहते हैं, तो ये सब लिया अगर तो थायराइड होने के चांसेस कम होते हैं।
1: धन्यवाद फोन करने के
2: ठीक है,
1: लिए।
2: डॉक्टर साहब को धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत
0: जी जी
2: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: एक फोन आ रहा है मैडम। हेलो।
2: हेलो
1: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
2: जी, मैं रश्मि बोल रही हूँ धनबाद से।
1: रश्मि जी, धनबाद से आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थायराइड पर बात कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी आई हुई हैं, तो आप डॉक्टर साहिबा से बात करें। डॉक्टर साहिबा लाइन पे हैं।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते नमस्ते।
2: मैम मेरा प्रॉब्लम है ना कि थायराइड का टेस्ट कराने से थायराइड तो निकला नहीं है। 6 महीने पहले मैंने टेस्ट कराया था,
0: जी
2: लेकिन मेरा बाल पतला होना, गाल में स्वेलिंग और शरीर में भारीपन, इस तरह के सिम्टम्स मुझे दिखते हैं। तो
0: जी
2: मैं जानना चाहूंगी कि क्या मैं कर सकती हूँ इसके लिए।
0: एक्चुअली ये थायराइड का पूर्व रूप हो सकता है, मतलब कोई भी व्याधि अपने प्रॉपर रूप में आए उससे पहले बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं तो बिल्कुल ये पूर्व रूप में आ सकता है। आप उसके लिए एक्चुअली एक बार लिवर प्रोफाइल अपना करवा लीजिए, ठीक है ना।
2: अच्छा, लीवर
0: हाँ
2: लीवर मैम।
0: हाँ लिवर, तो लिवर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी की एक्टिविटी के लिए, थायराइड की एक्टिविटी के लिए भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर और ऊपर से जो खान पान में जो बदलाव आप करेंगे वो गट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी तीखी चीज़ें थोड़ी कम कर दीजिए। जो भी चीज़ें खाने के बाद आपको ब्लोटिंग होती है या गैस होती है उसको, भाई वो शरीर का वार्निंग है कि ये हमें नहीं चाहिए, उसको बंद कर दीजिए जब तक कि मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से बेहतर ना हो जाए, शरीर में हल्कापन वगैरह ना आने लगे। जिस चीज़ से भी आपको सूजन जैसी समस्या होती है, जैसे कई लोगों को मूंगफली खाने के बाद भी तकलीफ होती है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, या टमाटर या खट्टा ज़्यादा खाने के बाद ये तकलीफ होती है, उसको रोक दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस, जो भी चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं उसको जैसे भी हो, अगर आप बात करके कम कर सकती हैं, जैसे भी हो वो स्ट्रेस लेवल को नॉर्मल करना है, कम करना है। तीसरी चीज़ ये है कि यदि आपको किसी भी तरह का मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको पहले ट्रीट करना है। पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, इंडोमेट्रियोसिस हो गया, कुछ भी इस तरह की तकलीफ है तो पहले उसको ट्रीट किया। महामारी मान लीजिए उसमें कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी पीरियड नियमित नहीं आ रहे हैं तो उसको पहले उसको रेगुलेट करना है। हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज तो जरूर करना है और कुछ योगासन, जो बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, उष्ट्रासन हो गया जैसा मैंने पहले बताया, उष्ट्रासन है, सिंहासन है, ठीक है ना। और अगर ये अलग अलग नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य नमस्कार को कीजिए, लेकिन वो रेगुलर कीजिए ताकि सारी चीजें नॉर्मलाइज हो सके।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम,
0: जी
2: आपके धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी रश्मि जी। आरोग्य में इसी तरह फोन करते रहें और अपनी सेहत का समाधान पाते रहें।
2: थैंक यू मैम।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है?
0: अपना ख्याल रखें, शरीर की छोटी छोटी चीजों का वार्निंग साइन देता है, ठीक है ना। कॉमनली सोच लेते हैं कि अच्छा ये शायद मौसम की वजह से होगा, या थकान लगातार बने रहना शायद मौसम की वजह से होगा। तो जो भी चीजें कोई लगातार अगर परेशानी हो रही है, या हृदय की धड़कनें कई बार बढ़ जाती हैं, ठीक है, अगर वो लगातार हो रही हैं तो वो हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें मतलब स्वस्थ रहना है और इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है सबसे पहले, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए।
1: डॉक्टर साहिबा, वक्त का पता ही नहीं चला और घड़ी की सुइयां आप कह रही हैं कि आज का सफर बस यहीं तक, थायराइड जैसी साइलेंट किलर बीमारी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर

0: शिखा त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी।
0: मित्रों, आरोग्यम का आज का मंत्र याद रखिएगा कि थायराइड कोई लाइलाज बीमारी नहीं बल्कि शरीर का असंतुलन है, इसलिए घबराइए नहीं और खुद का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते इसी समय सेहत की एक नई पोटली के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सुनते रहिए सेहतमंद कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
2: ये था स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था थायराइड की समस्या और चिकित्सा। इस विषय पर डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी से बातचीत की शिखा श्रीवास्तव ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
6: सर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ।
0: सुकांत काम्बोज जी।
6: जी काम्बोज जी बोल रहा हूँ।
0: आकाशवाणी अपने 90 वर्ष मना रही है।
6: आप ही मिल गए।
0: हाँ देखिए, आकाशवाणी का ही मिलना एक बड़ी बात है। रेडियो का समाज में और पूरी दुनिया में क्रांतिकारी योगदान रहा है। पिछले तकरीबन 100 वर्षों का जो सफर रहा है रेडियो प्रसारण का दुनिया में। कितना पुराना जुड़ाव है आकाशवाणी से आपका, और बचपन की कुछ यादें, जब रेडियो शुरुआत में आपने सुना था तो कैसा लगा था?
6: सर बहुत बहुत बढ़िया लगा था। 1998 में सर पापा ने हमारे वो ली थी रेडियो।
0: जी
6: तो तब से मेरा जुड़ाव है सर रेडियो से। जी बहुत बढ़िया लगता था, रेडियो ही सुनते थे हम शुरू में।
0: जी जी,
6: तो हमारे यहाँ
0: अच्छा शुरुआत में आदमी शॉर्ट वेव पे या फिर मीडियम वेव पे अपने दूर दराज के केंद्र जो या फिर बिल्कुल नजदीक का रहता था वही सुन पाता था। अब ये सुविधा आ गई है डीटीएच और ऐप के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कि आप देश दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन हो जो आपके पसंद का प्रोग्राम हो आप सुन सकते हैं।
6: सर हमने सुना आपको मुंबई वाले जो प्रोग्राम आते थे उस टाइम पे रेडियो में सुनते थे।
0: जी जी बिल्कुल
6: सुना है सर हमने।
0: हाँ कई केंद्रों का सफर हमने किया, जमशेदपुर, विविध भारती मुंबई, फिर आकाशवाणी ओबरा और अब बनारस। तो काफी अनुभव है और लंबे समय से हम लोग खुद एक श्रोता हैं बचपन से, रेडियो में भाग लेने से लेकर के और आज तक का सफर रेडियो का साथ बना हुआ है।
6: जी जी सर। जी सर
0: तो कौन सा गीत आज सुनवा दें हम आपको?
6: सर आज मेरी वाइफ का बर्थडे है।
0: जी जी, हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
6: धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर गाना सुनना है मोहम्मद रफी जी का है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में।
0: आप तो ऐसे न थे, इसको रफी और मनहर दोनों ने गाया है।
6: जी सर।
0: रफी साहब की आवाज में आपको सुनना है, निदा फाजली ने इसे लिखा है।
6: और सर सर मेरा भाई है विपुल काम्बोज, लो बात कर लो सर एक बात।
0: जी जी जी,
6: लो सर बात करो। सर सर मार रहे हैं तो बात करना।
0: गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार,
6: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी, मैं चंदूपुरा वाराणसी से राहुल कुमार बोल रहा
0: हूँ। राहुल जी, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष के सफर को पूरा कर चुकी है, खासतौर से जो पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हुआ करता था उसका नामकरण ऑल इंडिया रेडियो हुआ, वो तारीख 8 जून ही है और यही वर्षगांठ है इस नामकरण के मौके की। तो आपकी कुछ यादें बचपन से?
1: जी सर, हमारे बाबू जी थे राजकुमार नाम था
0: जी,
1: तो वो रेडियो लाए थे तभी से मैं सुन रहा हूँ, सन 2085 से।
0: नहीं, 1985 से।
1: जी हाँ,
0: 2085 तो अभी आएगा।
1: नहीं,
0: और तब हम कहाँ तुम कहाँ वाली बात होगी। लेकिन ये कि जो रेडियो यानी आकाशवाणी या FM वगैरह का ये जो सफर है, साथ है, ये बना रहे आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक, हम सभी यही कामना करते हैं।
1: कल सर सचिव सहेली में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम सर दे रहा था
0: जी,
1: इसी वजह से,
0: जिसमें हिमानी शिवपुरी आई थी।
1: जी
0: जी जी, आकाशवाणी विविध भारती के तमाम केंद्र देश भर में ऐसे खास प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जो पुराने लोग आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं और ऐसे खास शख्सियतों को आमंत्रित किया जा रहा है।
1: जी,
0: तो आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं इस प्रोग्राम में?
1: जी सर, मैं आज गाना सुनना चाहता हूँ, मन का रेडियो बजने दे जरा, गम के भूल कर जी ले तू जरा, ये गाना सर मुझे सुनना है। जी सर, आपका ऐप में हम देख रहे थे तो ये गाना बहुत अच्छा लग रहा था।
0: हाँ,
1: और हमारे भाई सर केवरा पान का दुकान लगाए और नया नया कुछ काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, नया कुछ काम का क्या मतलब है?
1: मतलब कि नया काम यही है कि पान का दुकान खुले।
0: रोजी रोजगार कोई भी हो, उसमें मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहिए तो जरूर सफलता मिलती है।
1: ग्राहक लोग आते तो ये रेडियो वेडियो भी सुन रहे, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: देखिए, हम लोग भी बचपन में कहीं भी जाते थे बाजार में, रास्ते में, तो क्रिकेट कमेंट्री हो, गाने हो, वो सुनते सुनते सफर तय हो जाया करता था। तो दुकानों का भी और इस तरह के जो होते हैं कियोस्क वगैरह, उनका बड़ा योगदान है रेडियो के प्रचार प्रसार में। तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं, आपके मन का रेडियो यूं ही बजता रहे, यही शुभकामना। नमस्कार, शुक्रिया।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर, मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट बोल रहा हूँ सर।
0: मुरलीधर गुप्ता जी, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष मना रही है और इस मौके पर कुछ बचपन में शुरुआत के दिनों के बारे में अपनी बताइए कि रेडियो कैसा जादू और चमत्कारिक उपकरण लगता था जब आपके घर में पहली बार रेडियो आपने देखा सुना।
1: हमारे यहाँ रेडियो सर, सर हमारे यहाँ रेडियो एक बड़ा सा था सर, 5 बैंड का, फिलिप्स कंपनी का।
0: जी जी।
1: और वो सर हमारे पिताजी खरीदे थे। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे सर, तो बहुत उसकी एरियर ऊपर टांग दिया जाता था
0: जी,
1: और वो एरियर के द्वारा ही बहुत साफ क्लियर आवाज आती थी सर।
0: हाँ,
1: उसमें मोहल्ले के लोग सब आकर सुनते थे सर।
0: हाँ, यही वो चीजें हैं कि एक वो दौर था कि जब एक रेडियो सेट पर पूरे आसपास के लोग आकर के सुनते थे, कहीं वो गांव चौबारे पर और बचता था जब ऐसे। और बहुत सारे प्रोग्राम
1: बहुत
0: होते
1: अच्छा
0: थे।
1: लगता था सर।
0: जी जी, बड़ा योगदान है सामाजिकता में आकाशवाणी विविध भारती का। और आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और कई केंद्रों से आपका जुड़ाव रहा है।
1: जी जी सर।
0: तो अब बता दें
1: सर,
0: हम अच्छे से, आज कौन सा गीत आपको सुनवाना है?
1: एक फिल्म थी है सर, अंदाज गाना है सर।
0: अंदाज
1: कहना
0: दो तीन
1: जरूरी है कि तुम्हें मुझे तुमसे प्यार
0: हुआ है। हाँ, ये वही हम कह रहे थे कि कई अंदाज हमारे यहाँ हैं, तो ये नया वाला है, ये
1: नया
0: अंदाज नई फिल्म है।
1: और कुमार सानू की आवाज है सर।
0: आज कहना जरूरी है।
1: जी जी।
0: ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत और अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं।
1: अच्छा अच्छा सर।
0: तो गीत सुनते हैं, बहुत शुक्रिया मुरलीधर जी।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: अरुण सर जी को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बिल्कुल मोहब्बत भरा नमस्कार आदाब आप तक भी पहुँचे स्वागत है आपका।
1: सर मैं ओमकार डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर ग्राम पंचायत चौड़ा टोड़ी तहसील क्लेर जिला शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ।
0: बहुत दूर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कई बार आपके फोन लग जाते हैं हमें खुशी होती है कि आसपास के जनपद जो हैं वो भी आकाशवाणी वाराणसी के प्रोग्राम से वहाँ के श्रोता शौकीन हैं वहाँ की।
1: सर हमारी यहाँ से आज बहुत दिन के बाद मेरा फोन करीब होली का लगा था।
0: जी जी और अब ये अवसर ऐसा है कि 8 जून को आकाशवाणी अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रही है और 90 वर्षों का ये सफर आपके भी बचपन से रेडियो से जुड़ाव रहा होगा क्या यादें हैं शुरुआत की?
1: सर आपकी आवाज वापसी आ रही
0: है। जी
1: आपकी आवाज सर वापसी आ रही है।
0: हाँ तो आप बता दीजिए वो आपकी रिकॉर्डिंग सही हो रही है आप बताएं रेडियो की बचपन से शुरुआत के दिनों की कुछ यादें।
1: बचपन की सर यादों हम रेडियो जो है लगातार सुनते हैं और 24 घंटे मेरा एक पुस्तकों का दुकान है।
0: जी
1: पुस्तकों की दुकान पे मेरा रेडियो चलता रहता है और मेरे घर पर रेडियो चलता रहता है और आप कार्यक्रम को बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। देखिए दोनों ही माध्यम जो आपके हैं वो ज्ञान विज्ञान सूचना शिक्षा मनोरंजन के पर्याय हैं वो चाहे किताबों के जरिए ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त की जाए या आकाशवाणी के प्रसारणों के जरिए।
1: किसी ने कहा कि सपने सच होते हैं तो हमने कहा यहाँ सपने सच होते हैं हमने कसम रखी हमने कहा अरुण सर से बात जरूर करेंगे तो आज जैसे मेरे स्वयं राम जी से बात हो रही हो।
0: ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है। जी बड़प्पन है आपका जो आप लोग इतना प्यार करते हैं और बड़ी परिश्रम से फोन लग जाता है हमें भी एहसास है कि श्रोता एक साथ बहुत सारे प्रयास करते हैं और कुछ को सफलता और ये खुशी मिलती है।
1: सर हमने अलाउंसर बहुत देखे पर सर आप बहुत बढ़िया आदमी हो।
0: जी देखिए आदमी वाली बात आपने अच्छी कही। बशीर बद्र साहब जिनका हाल में इंतकार हुआ है उन्होंने कहा था एक शेर की घरों में नाम थे नामों के साथ ओहदे भी बहुत तलाश किया एक आदमी न मिला। तो ओहदे बहुत से हैं बड़े बड़े लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर रहते हैं लेकिन इंसानियत होना आदमियत का होना इंसान के भीतर बहुत जरूरी है। वही लोग याद रह जाते हैं जो थोड़ी सी आत्मीयता के साथ बातें करते हैं और सहयोग किसी मौके पर करते हैं अपनी बात सुन लेते हैं। श्रोताओं को हम यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में उनके जो बातें हैं वो हमारे बाकी श्रोताओं तक पहुंचे।
1: हमारी भगवान से इच्छा की आपसे मेरी बात जरूर हो जाए आज भगवान ने हमारी सुन ली बुरा से ट्राई कर रहे थे हम।
0: जी तो आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: सर मूवी रहेगी जमाना दीवाना और गाने के बोले तुझसे पूछूं एक सवाल बोल जरा क्या है तेरा हाल।
0: हाँ बड़ा मकबूल और पॉपुलर गीत है ये।
1: सर मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी बताएं।
1: जैसे सर उदिता बिस्कुमरा मैम है मेरे आज भाई हैं।
0: जी
1: और क्या नाम एक है रविंद्र पुजर है मेरे पड़ोसी हैं सर
0: और
1: सर,
0: श्रोता पसंद
1: भगवान ने उनकी आवाज दी है जो आपने प्रोग्राम बना के सर जरूर सुनते हैं।
0: जी तो ये गीत
1: अपने हेडफोन लगा के
0: बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ। नमस्कार
1: सर एक बात बता दीजिए।
0: जी बताएं
1: इसका सर प्रसारण कब होगा?
0: इसका प्रसारण रविवार को 12 से 1 बजे के बीच।
1: नमस्कार सर
0: शुक्रिया।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी सर हेलो फोन फरमाइश।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर। आप बोल रहे हैं?
0: जी मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ और आपका नाम जानने की जिज्ञासा है हमें।
1: मेरा नाम रमेश यादव है, मुकलपुर मड़ियाहूं जोधपुर।
0: अच्छा यहाँ से आप आसपास से बोल रहे हैं, वहाँ हमारे मड़ियाहूं में बहुत सारे दूसरे श्रोता हैं जो वर्षों से हमें सुनते हैं। और आपका फोन कम लगता है या पहली बार लगा है?
1: नहीं पहली बार लगा है।
0: जी जी बहुत स्वागत है। और ये पहली बार जो मौका है वो ये है कि आकाशवाणी अपने 90वीं वर्षगांठ 8 जून को मना रही है और 90 वर्षों का सफर रहा है। आपका आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रमों का जुड़ाव कितना पुराना है, बचपन की क्या यादें हैं आपकी?
1: नहीं सर 1975 से ही सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी और तब सोचिए कई कई बैंड के रेडियो घरों में होते थे।
1: अरे सर उस समय तो 5-5 बैंड 4 बैंड के सब रेडियो होते थे।
0: और रेडियो को घुमा फिरा के ऊपर नीचे छत से और दिशाओं में खिड़की के पास, वो एक अद्भुत यादें हैं हम सबकी बचपन की।
1: अरे उस समय किसी जगह अपने गंगा भैया और वो सब बड़े पुराने सब भैया ये सब थे।
0: जी जी जी यानी बहुत पहले के दौर के हमारे श्रोता हैं। बड़ा बदलाव आ गया, तकनीक ने उन्नति की है। अब जैसे श्रोता सीधे, आप जैसे श्रोता हमारे कार्यक्रम में सीधे बातचीत कर पाते हैं। वो दौर था सिर्फ पत्र लिखे जाते थे, लेकिन इस तकनीक के युग में रेडियो ने विस्तार तो पाया है।
1: जी सर अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सब चल रहा है, डेली कार्यक्रम सुनते हैं आपका, टेलीफोन फरमाइश इसी जगह समाचार और इसके बाद में और भी दोपहर कार्यक्रम जो महिलाओं के आते हैं सब वो सब सुनते हैं।
0: जी जी यूं ही जीवन में हमारे श्रोताओं का आकाशवाणी की उपयोगिता बनी रहे, साथ बना रहे। कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: सर वो सुना दीजिए भोजपुरी वाला जो नदिया के पास फिल्म का है, कौन दिशा में लेके चला रहे बटे।
0: बिल्कुल बहुत मकबूल गीत है और राजश्री की फिल्म थी और एक आइकॉनिक फिल्म है, याद की जाती है और बड़े मशहूर उपन्यास था उसके पर ये आधारित थी।
1: और हमारे जौनपुर जिले की ही शूटिंग है उसकी। अच्छी
0: जी जी बिल्कुल वास्तविक स्थान थे और बड़ा अच्छा अभिनय हर कलाकार ने किया जो उनके भी जीवन के लिए और दर्शकों के लिए भी यादगार बन गया। हेमलता और जसपाल सिंह की आवाजें हैं और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, रविन्द्र जैन का गीत संगीत है। शुक्रिया।

0: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी भैया नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी भैया, हम आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।

0: बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, और उतनी दूर से रेडियो से आपका जुड़ाव है। आकाशवाणी अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रही है 8 जून को, और ये मौका है जब रेडियो का योगदान हर क्षेत्र में बड़ा विशिष्ट रहा है, और खासतौर से जिस तरह के इलाके से आप हैं, आकाशवाणी वो माध्यम है जो दूर दराज के जंगलों में, खेत खलिहानों में, दूर दूर तक के गांव में जिसकी आवाज पहुंच जाया करती है।
1: 20-25 साल से तो हम ही जुड़े हुए हैं भैया।
0: जी जी, और इन 20-25 वर्षों में क्या हुआ कि इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन आकाशवाणी अपनी जगह बनाए हुए है। आप जैसे श्रोताओं का बड़ा योगदान है इसमें।
1: तो इंटरनेट से ये भी फायदा हुआ है भैया कि अब मोबाइल ऐप पे आने लग गया है।
0: जी जी हाँ, वरना पहले आपको हम लोग के जैसे केंद्र हैं, अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो आप दूर दराज के केंद्र अगर शॉर्टवेव पे नहीं है तो उसे नहीं सुना जा सकता था।
1: जी जी जी।
0: ये तो है कि अब दुनिया के इस तकनीक ने बड़ा उसको एक कर दिया है कि सभी लोग एक दूसरे से वास्तविक अर्थों में वसुधैव कुटुम्बकम की बात जो है वो सार्थक हो गई है।
1: जी।
0: तो कौन सा गीत आज हम आपको सुनवा दें?
1: सिलसिला से सुनवा देंगे
0: जी।
1: टाइटल है उसका, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: शिव हरि का संगीत, बहुत ही मशहूर ये गीत और फिल्म दोनों ही, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, जावेद अख्तर ने इसे लिखा है। शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, मैं ग्राम मुड़वाला तहसील लोकुश नगर जिला छतरपुर से बालेंद्र कुमार पाल बोल रहा हूँ सर।
0: बालेंद्र कुमार पाल जी, आपने पहले भी फोन किया या पहली दफे फोन लगा?
1: सर, लगाते लगाते तो हमको सर 2 साल हो गया।
0: जी जी जी, यानी आपका बड़ा मुश्किल से पहली बार फोन लगा है। बहुत स्वागत है आपका, और बड़े खास मौके पर जब आकाशवाणी अपने प्रसारण के सफर के 90 वर्ष मना रही है, और 8 जून ही वो तारीख है जो ऐन कल ही है, और इस मौके पर आप जैसे दूर दराज के श्रोताओं का हम बहुत स्वागत कर रहे हैं। क्या योगदान है, क्या यादें हैं आपकी रेडियो की शुरुआत से?
1: तो रेडियो तो मैं सर बहुत पहले से शुरुआत से सुन रहा हूँ। जब मैं सर 5-6 साल का था
0: जी,
1: तो मामा का हमारे पास रेडियो था, तो चोरी चोरी माल चुपके चुपके से लेकर सुना करते थे हम छोटे में।
0: जी जी, यानी बड़ी पुरानी यादें हैं।
1: जी सर,
0: और अभी आप क्या करते हैं?
1: तो रेडियो को मैं सर कक्षा 6 में पढ़ता था, जब से मैं रेडियो में बराबर फोन लगा रहा हूँ, पत्र भी लिखता था।
0: जी जी, वो पत्रों वाला दौर था, हम सब आकाशवाणी के नजदीकी केंद्र दूर दराज के भी केंद्रों को हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे।
1: जी सर, जी सर, वही हमारी भी यादें हैं सर।
0: जी जी बिल्कुल, और अभी आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर?
1: अभी सर अब घर ही में है सर, खेती करते हैं और अपना पूरा घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं।
0: जी जी, तो ये तो गर्मियों का मौसम है और इसमें आपका रेडियो का साथ है, तो वक्त अच्छे से और बड़ा सार्थकता से समय कट जाता है रेडियो सुनते हुए।
1: हाँ जी सर।
0: कौन सा गीत आज सुनवाए हम आपके
1: जरिए सुनना करता हूँ आपका कार्यक्रम?
0: जी जी जी,
1: तो अपना बढ़िया साउंड में लगा लिया, बढ़िया आवाज से बढ़िया अच्छा लगता है सुनने को।
0: बहुत शुक्रिया, और कौन सा गीत आज सुनवाए जी बताए?
1: सर पहले तो सर आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि बिना आपने आपके ही कार्यक्रम उसमें सुनता कर रहता हूँ।
0: बहुत दिल से शुक्रिया आपका। यूं ही जुड़े रहें और बाकी श्रोताओं को भी रेडियो और प्रोग्राम से जुड़ें, और हमारी शुभकामनाएं हर श्रोता के लिए हैं कि उनका फोन लग जाए, क्योंकि इंतजार तो हर श्रोता को प्रयास काफी करना पड़ता है।
1: तो सारे साहब जब प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी एक ना एक दिन।
0: जी बिल्कुल, और अब बताइए इस सफलता को हम लोग सेलिब्रेट करें किस गीत के साथ?
1: सर फूल और कांटे का सुनवा दीजिएगा, इसमें कोई सभी गीत चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं।
0: जी, इसमें तो एक से एक गाने हैं और बड़े अच्छी, अजय देवगन की ये शुरुआत वाली फिल्म है।
1: जी सर, जी सर।
0: समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, बहुत सारे गाने हैं, और मैंने प्यार तुम्ही से किया है, जिसे देख मेरा दिल धड़के, धीरे धीरे प्यार,
1: मैंने प्यार तुम्ही से किया, यही वाला सुनवा दीजिएगा।
0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में गीत है, सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।
1: नमस्ते सर, धन्यवाद।
2: मैंने प्यार

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222105। एसटीडी कोड है वाराणसी का 05542 अर्थात 0542। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होता है। तो आकाशवाणी हमारा आपका ये जो 90 वर्षों का साथ है, इस मौके की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारा आपका ये साथ यूं ही सार्थक और उपयोगी एक दूसरे के लिए बना रहे, समाज के लिए रेडियो प्रसारण की महत्ता यूं ही कायम रहे और हमारा आपका सफर मनोरंजन का, सूचना का, शिक्षा का जारी रहे अनवरत। इन्हीं कामनाओं के साथ अब इजाजत दें आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे।

1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना है और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता, पति का नाम अनिल, निवास का पता शिवपुर पन्नूगंज सोनभद्र, ये 19 फरवरी 2026 से ग्राम शिवपुर से लापता हैं। सुनीता की आयु है 34 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, एक हरा शरीर, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल इनके काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद सोनभद्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद जौनपुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार पूजा सरोज, पिता का नाम अशोक सरोज, ये भगरी जलालपुर जौनपुर की निवासी हैं और 5 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे से भगरी से लापता हैं। पूजा सरोज की आयु है 18 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था पीले रंग का समीज सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद जौनपुर को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद जौनपुर से ही प्राप्त एक और सूचना, इसके अनुसार रक्षा शुक्ल, पिता का नाम रमेश चंद्र शुक्ल, ये दियावां मछली शहर जौनपुर की निवासी हैं और 14 अप्रैल 2026 की सुबह 5:30 बजे से अपने घर से लापता हैं। रक्षा शुक्ल की आयु है 27 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, एक हरा शरीर, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले और सफेद रंग की समीज सलवार। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद जौनपुर को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज रात 10 बजे आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी का कर्नाटक शैली में गायन। अंजुमन कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 7वीं कड़ी होगी। इसमें आज का विषय होगा वंचित को वरीयता। प्रसारण समय याद रखें रात्रि 8:10 का। रात में 8 बजे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गायी गजलें आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। पत्र के लिए धन्यवाद, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इसमें श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और पूजा सिंह। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर अनुभव खेती में विषय पर राजेंद्र यादव से राजेश नारायण की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे शेर बहादुर सिंह। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण है आज की बात युवाणी गांव से यूथ डायरी में आज के शब्द विश्व घटना चक्र रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें डॉक्टर साधना सिंह की वार्ता होगी रंग बिरंगी तितलियां। इसके अलावा बाल गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। आज की फिल्म है बागबान, प्रस्तुति शैलेश दुबे की। लोक रंग कार्यक्रम होगा 1:30 पर। 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की लिखी झलकी गए काम से। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वरुण कुमार श्रीवास्तव। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती रेलवे पुलिस के काम का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि रियासत में रेलवे सिक्योरिटी निजाम को मजीद जदीद और तकनीकी तौर पर काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत, खवातीन के तहफ्फुज, जराइम पर काबू पाने और पुलिस की फौरी मदद को अवलियन तरजीह दी जानी चाहिए। प्रोसिक्यूशन अवलियन सिस्टम का जायजा लेते हुए वजीर आला ने मुजरिमों को फौरी और मौसर सजा देने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, भारत आलमी मईशत में तेजी से बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत ने इक्तसादी तरक्की को मुस्तहकम, खुद एतमादी, तसलसल और एतबात के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है। वजीर दिफा ने अपनी रिहाइश पर लोगों से मुलाकात के बाद आलमबाग वाके टेढ़ी पुलिया के पास प्रबुद्ध जनसंवाद प्रोग्राम में शामिल हुए और इलाके के मुमताज शहरियों से बातचीत की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। तलबा अब आज आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। इससे पहले कल 6 जून की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। रियासत में सिविल पुलिस कांस्टेबल और उसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान कल से 10 जून तक रोजाना 2 शिफ्टों में मुनक्किद होगा। इंतजामिया इसके लिए तैयारियां कर रही है। वजीर आला की हिदायत के बाद इम्तिहान की तैयारियों की रिहर्सल हुई। कानपुर में इंतजामिया ने इंतजाम के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। रेलवे ने भी खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उम्मीदवारों को रियायती शहरों पर खिदमात फराहम करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पेपर के मुबैना लीक या फरोख्त के दावों की तर्दीद की है। NTA ने कहा है कि ये मुनज्जम धोखाबाज गिरोहों का काम था जो तलबा और उनके अहल खाना के खदशात का फायदा उठा रहे हैं। एजेंसी फाल तौर पर काबिल एतराज चैलेंजेस अकाउंट्स और मवाद की निशानदेही कर रही है और उसने मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। NTA उम्मीदवारों और वालदैन को मशवरा देता है कि वो ऐसे किसी पैगाम का शिकार ना हों। आम की खुशबू और मिठास अब अमरोहा के सरहदों से निकलकर कई ममालिक तक पहुंच जाएगी। इस सीजन में अमरोहा के आमों की खुशबू और जायका सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, यहां तक कि लंदन के लोग यहां के आमों का मजा चखेंगे। मलेशिया से भी आम के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। इन ममालिक से 400 टन से जायद आम के ऑर्डर मौसूल हो चुके हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि अमरोहा में हुकूमत की तरफ से मरबूत पैक हाउस की तामीर की वजह से आम की बरामदात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम के तहत खुदनी तेल के लिए मियारी पैकेजिंग नाफिज की है। इससे मार्केट में ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आएगी। सार्फिन के उमूर के महकमे ने खुदनी तेल और घी के खालिस मकदार और मियारी पैक साइज का तयन करने के लिए मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार में तरमीम की है। माहौलियाती तहफ़ुज़ और ईंधन की बचत का पैगाम देते हुए जिला कोर्ट मान लखनऊ के अदालती अफसरान ने कल साइकिल मुहिम में हिस्सा लिया। वहीं हमीरपुर में यौम आलमी साइकिल के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया जिसे माहौलियात के तहफ़ुज़ का पैगाम दिया गया। वहीं सुल्तानपुर में आज माहौलियात के तहफ़ुज़ और अवामी बेदारी के मकसद से मुनक़िद माहौलियात मैराथन मुकाबले का इफ्तिताह पर्यावरण पार्क से किया गया। घरेलू गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर में 29 रुपए का इजाफा किया गया है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979 रुपए 50 रुपए हो गई है।

0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर DTH DRM न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर एक साथ उपलब्ध हैं। 1:15 और 28 सेकंड हुए हैं। आज इतवार है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी गए काम से। लेखक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रस्तुति डॉक्टर वरुण कुमार श्रीवास्तव की।

0: कवनर, अरे कवनर रे, आए खदर ना, अरे अरे अरे, हतना काहे रोता है, अरे अब का हुआ रे खदर ना, काहे अतना भोकास पार के रो रहा है, ससुर कुकुर सियार भी तोरे जैसा भोकास नहीं मारता होगा।
1: हम कहा था ना चौधरी कि हमार बिया हुआ मत कराओ।
0: बिया न होता तो कुआरे मर जाता, कुआरा आदमी कोनो काम का होता है जी।
1: और बियाहल आदमी
0: मर तो बियाहले आदमी होता है नू।
1: कैसे
0: ससुर हम ही को देखो ना, कभी भोकास मारते हमको देखा है?
1: नहीं देखा।
0: ये मर्दई जब देखो हंसता ही रहता हूँ।
1: हंसते का हो?
0: उतना भी नहीं बुझाता है, हंसना मर्द का निशानी है।
1: हमारा उसके साथ निभा नहीं होगा।
0: तब बोलो हम क्या करें तोहरे खातिर?
1: चलो उसको बता दो, अब हम मार खाकर उसके साथ नहीं रहेगा।
0: देखो हमको हुआ मत लिया जाओ।
1: तुम भी डराते हो का चौधरी?
0: हम किसी से नहीं डराते हैं, अरे बाघ भी सामने आ जाए ना तो ये चौधरी नहीं डराएगा, फिर मेहरारू कवन चीज रे?
1: बाघ से तो हम और नहीं डराते।
0: बाघ से नहीं डराता, अपने मेहरारू से डराता है।
1: बाघो मेहरारू से डराता है।
0: ये तुम बाघ कहाँ देखा रे?
1: सर्कस में देखा, बिजुरिया की माई गया था ना, वही बोला देखो बाघो मेहरारू से डरा रहा है ना, तुमको शर्म आना चाहिए।
0: बदमाशी तुम ही नु किया है, है? काहे दिखा दिया उसको सर्कस? जौन मेहरारू सर्कस देख लेगा वो तुमसे डराएगा।
1: पहले तुम बताओ चलते हो कि नहीं?
0: देखो हमारा गुस्सा बहुत खराब है, पहले तो वो आता नहीं लेकिन जब आ जाता है ना तो हम बहुत खतरनाक बन जाता हूँ।
1: तो आज खदरना के लिए अपना गुस्सा दिखाइए तो चौधरी, बिजुरिया की माई उसी से ठीक होगी। हाँ
0: पर बिजुरिया की माई का गुस्सा कैसा है रे?
1: उसके हाथ में जो आता है ना अखिया मूंद कर चला देती है, उसके गुस्से में सब खदेड़ना नजर आता है।
0: तो क्या हुआ? कौनो फिक्र नहीं। अरे तनी डर यह बात का है कि मान लो हमको गुस्सा नहीं आया तब क्या होगा?
1: तब चलो ना, हम तुमको चवन्नी का मलाई चटा देता हूँ।
0: उसे क्या होगा रे? ओका जो तो पीछे में खत्म हो जाएगा।
1: ए भैया इससे बेसी तो हम कुछ नहीं कर सकता।
0: ससुर रेलगाड़ी के आगे कटाने भी ले जा रहा है और पॉकेट में फूटल कोड़ियो नहीं।
1: अरे तो ऐसे बोलो ना कि तुम्हारी टंगरी भी काप रही है।
0: कहाँ रही है रे? कहाँ काप रही है? चलो चलते हैं। हमको डरपोक समझ रहा है, चलो आज फैसला होकर रहेगा।
1: चलो
0: तुम आगे चलेगा।
1: अगर आगे हम ही को होना रहता तुम्हारे पास क्या आता है? तुम आगे चलो ना।
0: तू पीछे से भाग गया तब?
1: अरे हम भाग कर कहाँ जाएगा, हम तो आगे रहूं चाहे पाछे रहूं कौनो फर्क नहीं पड़ता। यही होगा रोज पहले मैं मराता हूँ, आज पहले तुम्हारी हजामत हो जाएगी।
0: मेरी हजामत करने वाला कौन जन्म लिया है रे? बोल रे
2: चौधरी जी। अरे चौधरी जी, अरे जिंदा हो ना, अरे बाहर हो गए हो कहा?
3: हम चौकी के नीचे घुसुर जाते हैं, तुम कह दो खेत में घूमने गए।
1: अरे दुर्गा भौजी गई गई गई, निकल आओ चौधरी।
3: किधर गई?
1: उस रास्ते हरखू चाचा के घर की ओर।
0: देखो उसको पता नहीं लगे कि हम तुम्हारा पंचायत करने गए थे।
1: सूरज भगवान की कसम कभी नहीं बोलेंगे। पर तुम डराए कह रहे हो चौधरी?
0: अरे कल कटहर लाने को कही थी, हम बोल दिया कि बिरजू की पंचायत किया था, आज कटहर लेके आएगा।
1: अरे बाप,
0: ससुर बदफरोश निकला।
3: चौधराइन को कटहर की तरकारी बहुत

0: पसंद है। अगर आज कटहर नहीं आया तो हमारी खैर नहीं।
1: देखो अगर आज हमको बचा दो तो हम तुमको कटहर ला के दे देगा।
0: ए तू कहाँ पाएगा रे कटहर?
1: बिरजुआ पर से।
2: चोरी करेगा?
1: चोरी? अरे कोई हमको बिजुरिया की माई से बचा दे तो हम डाका भी मार सकता हूँ।
0: अच्छा ऐसा बात है, तब मैं तुमको बचा दूंगा। चलो आज देखता हूँ तोरे का नाम से वो बिजुरिया की माई को।
3: बुलाओ ना।
4: का नाम है उसका?
3: बिजुरिया की माई। अरे बिजुरिया की माई कहो।
2: बिजुरिया की माई?
3: ऐसे बोलोगे तो उसे सुनाई देगा। हाँ
4: तब कितना गला फाड़ू जी?
3: अरे तुम्हारे कंठ से तो वजह नहीं निकल रही है, ये तो हम नहीं सुन पा रहे हैं। अरे तनी जोर से चिचियाओ, जोर से।
4: कैसे चिचिया है?
2: बिजुरी की माई
3: बाहर निकलो। अरे जोर लगा कर घोराओ, जोर लगा कर।
2: का हो बिजुरी की माँ?
3: अरे बाप रे, अरे कुछ किरोध दिखाओ, किरोध। ऐसे तनिको नहीं डराएगी
0: बिजुरी की माँ।
3: हाँ।
2: बाहर आओ।
5: चौधरी चाचा, अरे ये तो बाबूजीओ है साथ में।
3: का रे बिजुरिया, तोर माई किधर है?
5: बेलना लेके तुम्ही को खोजने निकली है।
0: कहा बेलना लेकर?
5: पहले तो हल्दी प्याज पीस के तुमको लगाने के लिए ढूंढी, जब नहीं दिखाए तो।
0: ए खदरना, हमरे कटहरवा का क्या होगा रे?
3: अरे ये नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा है? तुमको अपना कटहर दिखाई दे रहा है।
0: कटहर नहीं, दुर्गा।
3: ये चौधरी आज पराने में ही कुशल है।
5: हमरी मानो तो भागे मत बाबूजी, ना तो भेटाओगे तो और खराब हाल हो जाएगा। हम माई से कह देंगे।
3: क्या कह देगी रे? क्या कह देगी? यही ना कहेगी कि चौधरी की यहाँ फरियाद करने गया था।
5: अच्छा तो चौधरी चाचा के यहाँ गए थे, माई ठीक है बुझी।
0: तो कहा तुम्हारी माई सब जान गई है?
3: अच्छा सब जान गई तो कहा है? बहुत डराया, अब नहीं डराऊंगा।
0: लेकिन हमको तो बहुत डर लग रहा है रे खदेना, तुम ठीक कहा था। चल चल भाग चलो।
3: लेकिन कहाँ?
0: अरे बस चुपचाप हमारे पीछे भना भन बढ़ते चले आओ। चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल,

0: दुर्गा भौजी आई है यहाँ? अरे लो, भौजी तो सामने ही बैठी है।
1: का हो बिजली कमाई, कैसे?
0: तुम्हारे घर हमारा मरद आया था।
1: के खदेरन, वो कैसे आएगा? चौधरी तो कहीं गए हैं नू?
0: हमको तो पता चला है वो एहरे आए हैं।
1: कौन बोला?
0: गांव में पता चला है।
1: इसका मतलब चौधरी हमसे झूठ बोले हैं।
0: अतनी चलो तो हमरे साथ है।

0: गुड़िया आ गई।
1: का रे, काहे जान के पीछे पड़ी है?
2: चाचा, दुर्गा चाची अमाई तुमको खोजते हुए इधर आ रही है।
0: अब तो ससुर पाताल लोक में भी जान नहीं बचेगा।
1: तब चलो आकाश में। ए बिजुरिया, तू जा, जा जा जा जा।
0: आकाश में का पाग जमा है तुमको?
1: अरे तनी वो हरे ताको।
0: कटहर का पेड़?
1: हाँ, इतना कठिन है कि कोई नहीं खोज सकता।
0: चल चल चल चल।
3: अरे ये तो जादू हो गया। अब ही दिखा रहे थे, गायब कहाँ हो गए हैं सब्जी?
4: कहाँ गया होगा वो लोग?
3: अरे कहीं लुकाया होगा, तनी ठीक से निहारो तो।
4: देखो हमसे झुकने की कोशिश बेकार है, रहो से सामने आ जाओ।
3: लगता है कि कहीं धरती फट गई जमे की समा गए हैं सब।
4: भाग कर जाएगा कहाँ? यहाँ भागने की कोनो जगह नहीं।
3: ओए, ये कटहरवा का हिल रहा है जी?
4: कहाँ कहाँ हिल रहा है?
3: अरे कौनो भूत दूत न बैठा हो जी।
4: और रहो रहो भौजी, तनी झांकने दो।
3: अरे माई रे, जान गई रे बाबा।
4: अरे बाप रे, इतना भारी कटहर कैसे चू गया? भला कपार पर नहीं गिरा? अब भौजी चोट तो ना लगी?
3: ऐसा घाव तो नहीं लगा, लेकिन दर्द से तो पूरा देह झनझना उठा है जी।
4: अब तनी हमको ठीक से देखने दो। अच्छा तो तुम हो? उतरो उतरो नीचे।

0: निकला ना तो जवान सर से खींच लूंगी। हम कितना बार बुलाया, तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ा सुनकर चुप लगाने का? अब ही बिहाने की हजामत भुला गया? ये बेलना देख रहे हो, देख रहे हो ना? कहो तो तुम्हारी बदमाशी का मजा अभी चिखाऊं। अगर ये कटहर भौजी के कपार पर गिर जाता तो?
1: ये कटहर हमसे नहीं गिरा,
0: तो अच्छा भगवान जी गिराए हैं।
1: चौधरी,
2: चौधरी कहाँ है चौधरी? आए देख, ये तो खदेरन से भी दो हाथ ऊपर चढ़े हैं। यह है पंचायत का कटहर है? ये उम्र में कटहर चुराते तुमको शर्म नहीं आई? फौरन आओ नीचे, नीचे आओ।
1: अब क्या बताऊं दुर्गा, तुम बुझोगी कि हम झूठ बोल रहा हूँ।
2: तुम झूठ बोल रहे हो कि सच? ये तो घर चलकर फैसला होगा। तुम्हारी चौधराई ने बुलवा दिया तो मैं भी लहटन पहलवान की बेटी नहीं। डोली में जब बैठी थी तो जानते हो हमारे बाप ने हमसे क्या बोला था? बोला, बेटी डराना मत, याद रखना तुम उस बाप की बेटी हो जो काबुल का मोर्चा पर लड़ा है। तुम्हारा सास ससुर ननद जो भी तुम्हारा डहर में आए किसी को नहीं छोड़ना। और आज तुम हमारा नाक कटहर के लिए कटवा दिया। तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुमको नहीं छोड़ूंगी। आप बिना बोले चुपचाप घर चलो, घर चलो। तो
0: तुम का कान फारे सुन रहे हो जी, तुम अपना रास्ता पकड़ो। अरे दुर्गा भौजी, अब कटहरवा काय को छोड़ रही हो? ये बेचारे का कौन दोष है?
2: ऐसा करो, इसको तुम ले जाओ, अब बिजुरिया से रात को छिपा कर आधा हमरे यहाँ भिजवा देना। और देखो, अब खदेरन को कुछ कहना मत।
0: और तुम भी, जोन हो गया तोन हो गया, आखिर कटहरवा की तरकरिया तो बनी न गई।
2: खबरदार जो तुम लोग हंसे, ब्याह के बाद मरद के मुंह पर हंसी कभी नहीं लौटनी चाहिए।
0: अच्छा?
2: हाँ, ई बात गांठ बांध लो बिजुरी की माँ, कि जहाँ हंसी आई तहाँ गए काम से।

0: गए काम से। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी, इसके लेखक थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, भाग लेने वाले कलाकार अनूप अग्रवाल, प्रतीचि मालवीय, नीलाक्षी सिंह, रमा उपाध्याय और प्रणय कुमार। प्रस्तुति थी डॉक्टर वरुण कुमार श्रीवास्तव की। आज इतवार है, कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 और 34 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
1: 0542227658। लोक रंग कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोता, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम आप जानते हैं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा मालूम ही है आपको, 7905519981, यानी 7905519981। आज इस कार्यक्रम में शामिल लोकगीतों के कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। उन्हीं के लोकगीत की फरमाइश आपको भेजनी है। सबसे पहले कलाकार का नाम लिखें ताकि उनके लोकगीत के साथ आपका नाम शामिल हो सके। उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक बार ही संदेश भेजें, वक्त रहते यानी 1:45 बजे तक जरूर अपने संदेश भेज दें और फिर हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहें। बुल्लू यादव, शारदा सिन्हा और हीरालाल यादव। बुल्लू यादव, विदुषी शारदा सिन्हा और हीरालाल यादव, ये आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं। सात नौ शून्य पांच पांच एक नौ नौ आठ एक ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अपनी 90वीं वर्षगांठ कल यानी 8 जून को मना रही है और इस मौके की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। खासतौर से हमारे इस भोजपुरी अवधि, इस क्षेत्र के लोकगीतों के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और ये जो तमाम कलाकार हैं, ऐसे और भी कलाकार हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने में रेडियो की भूमिका, क्षेत्रीय केंद्रों की भूमिका अमूल्य, महत्वपूर्ण और बड़ी ही संवर्धनकारी रही है।

तो संदेश में अगर आप संक्षेप में अपनी कुछ बात लोकगीतों के बारे में कुछ कहना चाहें या फिर आकाशवाणी की भूमिका के बारे में, तो वो भी हमारा प्रयास होगा कि शामिल हो जाए। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। बहुत सारी फरमाइशें आ गई हैं, शुक्रिया आपको कि आप प्रोग्राम का इंतजार करते हैं और फिल्मों के या कलाकारों के नाम बताते ही हमारे कार्यक्रम में से जुड़ जाते हैं। बुल्लू यादव बहुत ही मशहूर इस क्षेत्र के बिरहा गायक थे और हम लोगों ने तो बचपन में उन्हें खेत खलिहानों में बिरहा मुकाबले जब हुआ करते थे उस दौर में सुना भी है। और उन्हीं का एक बेहद मकबूल गीत जो रेडियो के जरिए खासतौर से आकाशवाणी वाराणसी के इस केंद्र की रिकॉर्डिंग के माध्यम से जन जन तक पहुंचा, ये पूर्वी आप तक पहुंच रहा। आज इस प्रोग्राम में बुल्लू यादव और साथियों की आवाज़ों में आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने इसे सुनना चाहा है।

पूर्वी आप सुन रहे थे बुल्लू यादव और साथियों की आवाजों में। इसके लिए फरमाइशें आप सब की आई हैं आशीष कुमार हमारे श्रोता हैं महरे जौनपुर के। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और मैंडी शर्मा। गांव गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक गाजीपुर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ, शिवांश, शिवांगी और अन्नू जायसवाल। जमानिया गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से ये फरमाइश आई है जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह की। हमारे श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और कव्या मल्होत्रा। जगरावां पंजाब से अनारकली बाजार जगह है। गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल।

0: जायसवाल, साथ में चक्किया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम में बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और उनके साथी। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष व्हाइट फील्ड बेंगलुरु में सुन रहे हैं। जवाहर नगर दुर्ग के श्रोता हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। पोफाली से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। ये फरमाइश है संदीप तिवारी, श्रेया तिवारी, श्रेयांश तिवारी की अखंड नगर सुल्तानपुर से आई हुई। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की फरमाइश पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और बिहारी बाबू ही नाम है, ये प्रयास करें, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं, कि असली नाम लिखा करें। रामगढ़ कैंट से आप हैं। संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह उमरिया मध्य प्रदेश से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी की फरमाइश चोहलदा बागपत से आई हुई है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रिश्ता खुराना, रिधान खुराना और उनके परिवार के बाकी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहाने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
0: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। और अब लोकरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश। ये लोकगीत हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है, स्वर विदुषी शारदा सिन्हा का।

विदुषी, शारदा सिन्हा की आवाज थी श्रोताओं। और ऐसे ही बहुत सारे लोकगीतों को सुनते हुए हम सब बचपन से अब तक आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं।

इस लोकगीत के लिए फरमाइशें आई हैं आप सबकी। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान।

आप हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह, और आपने लिखा है आज के तीनों ही कलाकार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये अपनी माटी और अपनी बोली के सिरमौर हैं वास्तव में, और इन लोकगीतों का हमारे जीवन में संस्कारों में बड़ी अहमियत रही है। रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ की फरमाइश रतलाम मध्य प्रदेश से आई हुई है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी ने, डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून, आफ्ताब मेहताब मेराज और कल्लू मल्लू अंसारी, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। आपने भी शुभकामनाएं भेजी हैं, आपको भी। आरजी और श्रोता एक दूसरे के पूरक हैं, ये लिखते हुए आपने शुभकामनाएं भेजी हैं। आप हमारे श्रोता हैं संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, चौखंटी हाथी बाजार वाराणसी से, शुक्रिया आपका। फरासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। मढ़ा मऊ से दीपा यादव, उषा यादव,

अनुराग यादव और मास्टर भारती। ये फरमाइश रविंद्रनाथ सिंह, रमन कुमार, जयंत कुमार देवरिया, नुआव, रामगढ़, कैमूर, बिहार से आप सबकी आई है। मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और तुबा आफरीन। अस्तुपुरा मऊ के श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना।

गंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, राम सकल चौधरी हैं मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार गाजीपुर से, शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से हैं डब्लू और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा से विनोद और पिंकी जायसवाल, लालमाता सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान के हमारे श्रोता हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला अटलाई झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फूंदी बाई बागरी, हरिश्चंद्र उपाध्याय ककरहिया लोहता वाराणसी से हमें सुन रहे हैं। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान, जमानिया से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल लिख रहे हैं, बुल्लू यादव के साथ रामदेव यादव की बिरहा की जोड़ी बहुत फेमस थी। बिल्कुल, चूंकि तीन ही लोकगीत हमें रखने होते हैं, वरना रामदेव के भी गाए हुए लोकगीत जरूर इस प्रोग्राम में होते, और आपने लिखा है जमानिया रामलीला मैदान में आपने सुना है, और बिल्कुल उसी इलाके के हम सब हैं, हमने भी हीरा बुल्लू और रामदेव को बहुत सुना है बचपन में। और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

ये भी रहा हीरा लाल यादव और साथियों की आवाज़ों में है। और हीरा लाल जी को न सिर्फ बचपन में बल्कि इस केंद्र पर आने के बाद कई रिकॉर्डिंग में उनसे रूबरू मिलने का अवसर मिला। एक बड़ी महान देशभक्त शख्सियत, लोकगीतों की जो पारंपरिक शैली होती है उसके बड़े मुरीद थे और उसके संरक्षक थे हीरा लाल जी। इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है सुनीता जी सेबेस्टोपोल फ्लॉक मॉरिशस से, बहुत शुक्रिया। इस लोकगीत की फरमाइश भेजते हुए पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश गुप्ता गौंड, पूजा गुप्ता और अग्रिम गुप्ता गौंड लिखते हैं कि बहुत कुछ सिखाया है आकाशवाणी ने इन 90 सालों में, हमारा मनोरंजन भी किया है विभिन्न तरीके से और आपने तमाम हमारे आकाशवाणी के पुरोधाओं को

0: श्रोताओं, चाहते हम लोग भी हैं कि सिर्फ लोकगीतों का ही आनंद लिया जाए। ऐसे महान कलाकारों के जुगाए हुए धरोहर लोकगीत हैं, लेकिन आपके नाम इतने ज़्यादा रहते हैं और कई कई श्रोता तो बार बार और कई नाम भेजते हैं, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। 90 वर्षों में बहुत संयम और धैर्य का परिचय आप सब ने दिया है। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर हैं, डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से। आपने कुछ बातें भी लिखी हैं, बहरहाल हम लोग पढ़ते हर बात को। ग्राम नागर कोहरा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी और आराध्या साहू हमें सुन रहे हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद हैं पाकुड़ झारखंड से। मुबारकपुर उची तकी आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा। असनाव बाजार भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं। बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव, पीयूष यादव हमें सुन रहे हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। जीएनपुर आजमगढ़ से परवेज अहमद और मास्टर भारती ने भी 90वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं भेजी हैं। बालोद से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर और ईश्वर राज पप्पू ठाकुर। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन और इंदु सेन की फरमाइश आई हुई है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। अमितेश कुमार तिवारी, करनई बलिया के श्रोता। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा हैं बठेना पाटन दुर्ग से। दिलदानगर गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। जगदीश धाकड़, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी की फरमाइश रतलाम से आई हुई है। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा हैं भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता। विराज मिश्रा, शालिनी मिश्रा, वान्या मिश्रा हैं करनाल हरियाणा से। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी और प्रतीक केसरी ने लिखा है आकाशवाणी मंदिर है, तो श्रोता उस मंदिर के पुजारी हैं। रमेश चंद्र चौहान और जय नारायण चौहान की फरमाइश मारवाड़ बिलाड़ा से आई हुई है। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी और भूपेश। भास्कर दुबे हैं चोचकपुर गाजीपुर से। गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, अमित कुमार, स्नेहा कुमारी, जागृति और रुद्र कुमार। सोनू बिंद जौनपुर से सुन रहे हैं। तकिया मड़िया हूँ जौनपुर से जमील अहमद शाह, अल्तमश शाह, दानिश शाह, रोमेश शाह, हसरत शाह और उनके मित्र नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, आप सभी हैं मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता। तो श्रोताओं, ये था आज का लोकरंग कार्यक्रम और ये आखिरी पेशकश थी हीरालाल यादव और साथियों की आवाज में। अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए अरुण पांडे को। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। अभी आप सुन रहे थे लोकरंग, हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिडडे न्यूज। The headlines: India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New

0: आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
2: दोस्तों, कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त शैलेश दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जिस फिल्म के बारे में हम सब बात करने वाले हैं वो कौन सी फिल्म है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। आज की फिल्म है बागवान। ये फिल्म 2003 में बनी थी। इस फिल्म का निर्देशन रवि चोपड़ा ने किया और निर्माता थे बीआर चोपड़ा। इस फिल्म में मुख्य किरदार में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान, परेश रावल, महिमा चौधरी, रिमी सेन और असरानी ने कार्य किया था। फिल्म बागवान में संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह ने।

दोस्तों, फिल्म बागवान केवल एक फिल्म मात्र ही नहीं थी। जब ये फिल्म आई थी तो बहुतों को इसने एक शिक्षा पाठ भी पढ़ाया था। पाठ परिवार के महत्व का पाठ, अपने घर के बुजुर्गों के सम्मान का पाठ, अपने माँ बाप के आत्मसम्मान स्वाभिमान के रक्षा का। क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाया गया कि परिवार क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं और उनकी इच्छाएं क्या होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं के आगे उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखते, और वो भी उस समय जबकि हमें उनकी फिक्र बहुत ही ज्यादा करनी चाहिए। वो लम्हा जब वो शरीर से भी कमजोर होते हैं और उम्र के अपने आखिरी पड़ाव पे होते हैं, तब उन्हें सहानुभूति की नहीं, साथ की जरूरत होती है। अगर हम इस फिल्म के कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि अमिताभ बच्चन ने राज मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया था और हेमा मालिनी ने किरदार निभाया था इनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा का। ये दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बच्चे जो कि धीरे धीरे बड़े होते गए और उनकी अपनी लाइफ अपनी दुनिया बन जाती है और वो भूल जाते हैं कि उनकी दुनिया शुरू कहां से हुई थी। वो उन लोगों को ही अपनी दुनिया मान बैठते हैं जो उनके साथ जुड़ते हैं, और जो जन्म देने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर देते हैं। इस फिल्म में इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। फिल्म जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी होती जाती हैं उनकी इच्छाएं भी, कुछ ऐसी इच्छाएं जिसको कि वो दरकिनार नहीं कर पाते। बच्चे आपसी लड़ाई झगड़ों में कुछ इतने उलझ जाते हैं कि वो दुखी कर बैठते हैं अपने माँ बाप को, यानी कि हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन को। बच्चे आपसी लड़ाई झगड़े के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं कि दोनों कुछ कुछ महीने अलग अलग एक एक बच्चे के घर में रहें। राज और पूजा अपने बच्चों के लिए अलग अलग हो जाते हैं और उनमें ही अपनी खुशियां ढूंढने लगते हैं। इन दिनों में राज अपने दोस्त हेमंत यानी परेश रावल की मदद से अपनी किताब लिखता है। उस किताब में वो सारी बातें लिखी होती हैं जो एक माता पिता और साथ ही साथ एक पति पत्नी ने महसूस किया होता है। उम्र का वो दौर, उम्र का वो पड़ाव जहां की पति पत्नी को एक साथ होना चाहिए, वो बच्चों की खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढते हुए अलग हो जाते हैं।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

वक्त कहाँ ठहरता है। कहते हैं कि जो चीजें गलत होती हैं उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, तभी तो समय जरूर गुजरता है मगर वो साथ नहीं छोड़ता। और बच्चों को वो सारी चीजें महसूस होती हैं कि उन्होंने जो किया था वो गलत किया था। दोस्तों, परिवार का मतलब ही होता है खुशियों का दोगुना हो जाना और दुखों का बिल्कुल कम हो जाना। तभी तो कहते हैं कि रंग कोई भी हो, खुशियां वो ऐसा माहौल बना देती हैं कि वो रंग सिर्फ माथे पे नहीं लगता, गालों पे नहीं लगता, उससे पूरा तन और मन भीग जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से निर्देशक रवि चोपड़ा ने एक बहुत ही सशक्त और हमारे इस समाज के विकास के रथ पर सवार हो चुकी पीढ़ी को एक ऐसे यथार्थ से रूबरू करवाया है जो आज नहीं तो कल उनके हिस्से भी आने वाला है। अगर वो आज नहीं संभले, साथ ही साथ परिवार और अपने माता पिता की वैल्यू नहीं समझे, और ये सब तभी संभव है जब हम आज से ही अपने बच्चों में संस्कार रूपी बीज बोना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो वृक्ष है जिसे संभालना और समय के साथ साथ संवारना भी पड़ता है। माँ बाप कभी भी किसी भी परिस्थिति में सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं हो सकते, और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपसे कभी भी मंदिर या मस्जिद जाना संभव ना होना तो बस संसार में इनको साथ लीजिए। इनको साधना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी कोई परेशानी छू तक नहीं सकती, क्योंकि भगवान भी इनके पीछे ही मिलेंगे, आगे तो इनके कभी मिल ही नहीं सकते। उन तक पहुंचने का सबसे सस्ता और सुलभ कोई मार्ग है तो वो है माता और पिता का चरण और उनका आशीर्वाद। भगवान सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक ऐसा मित्र भी है जो सिर्फ एक बार देखने और महसूस करने से ही कई सकारात्मक बदलाव लाती है हमारी जिंदगी में। इसलिए परिवार की ताकत को समझे, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम लोग बातचीत कर रहे थे फिल्म बागवान की। अब अपने दोस्त शैलेश दुबे को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से विदा लेने की। नमस्कार, वादे और उम्मीद के साथ कि हम और आप फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और हम सबको हमेशा दूसरों की खुशियों का

0: खिलाना खिलाना
1: तोरी शपथ मैं उमरिया की थोरी।
0: हाय हाय हाय हाय चाचा देखे हाय।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज की फिल्म थी बागवान, पेशकश शैलेश दुबे की। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स डीटीएच, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआरएफ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। शाम के 5 बजे हैं। बच्चे अपना कार्यक्रम सुने बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। चुन्नू मुन्नू देखा हो तो हर गुंजा दीदी एक बार फिर से आगे लेन तू लोगन से बतियावे। आज लेके आयल है एगो ऐसन बात जैसे तू लोगन का जानकारी भी बढ़ी। देखा आज तारीख कौन सा हो? आज है 7 जून ना, मने कि आज का मनावल जाला जानत हुआ? आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आई एक खातिर मनावल जाला ताकि कुल जनी के अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। जानत हुआ ना, गंदा खाना खाए से, दूषित खाना खाए से अब बीमारी बढ़ेला, अब मने बीमार हो जाएला। एक खातिर 7 जून एक खातिर मनावल जाला कि कुल जनी के अच्छे से खाना उपलब्ध हो सके। और जब खाए का बात करत है तो हम जानत है कि तू लोगन के मतारी नयका नयका खाना बना के तू लोगन के खियावत हुए ना। कैसे कि भाई छुट्टी हो गए, अब छुट्टी में लेकिन बच्चन करिए का तरह तरह के खाना के बारे में महतारी लोगन से कहियन। महतारी लोगन का करियन, अरे लैका बच्चा के फुसलावे के हो तो खाना तो खियावे के पड़ी। अब जानत हुआ बच्चा लोगन एक बात और, देखा अन्न का बर्बादी सबसे बड़ का बर्बादी होला, समझला ना? ए लिए खाना अपने थरिया में उतना लेवे के चाही जितना कि तुहार पेट भर सके और खाना ना छूटे। कहें से कि ई दुनिया में बहुत सा ऐसन लोग भी हुवन जेके एक समय का खाना ना मिल पावत हो। तो जब हम लोगन धीरे धीरे करके खाना बचाएब, खाना के सुरक्षित रखब, तो हो सकेला उ लोगन तक भी भोजन पहुंच सके। बच्चा लोगन हमार बात तो तू लोगन सुनत हुआ ना? तो देखा हो ढेर का जानकारी जाने खातिर

0: तू लगन के लिए आज एगो वार्ता भी लेके आयल है। और वार्ता का विषय इतना बढ़िया हो ना कि तू लगन सुनबा तो वही में सुनत रहबा और भुलाए जेबा सब कुछ। आज के वार्ता का विषय है रंग बिरंगी तितलियां। और वार्ताकार हैं डॉक्टर साधना सिंह। तो बच्चा लोगन पहले ई वार्ता सुन ला, फिर बतियाइन गुंजा दीदी।
1: बच्चों, आज हम रंग बिरंगी तितलियों के बारे में आपको कुछ बताएंगे। बच्चों, तुमने यह कविता तो सुनी होगी। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली करी पर इतराती इठलाती। कितने सुंदर हैं पर इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंजनी बसंती, काले नीले पीले। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। बच्चों, कहते हैं ईश्वर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना यानी तितलियां बनाई है। बच्चों, ये धरती के सभी प्राकृतिक भागों जैसे गर्म ठंडे तथा अधिक वर्षा वाले इलाकों में पाई जाती है। तितलियां जंतु समूह के इंसेक्टा वर्ग में आने वाली बहुत सुंदर एवं आकर्षक प्राणी है। बच्चों, तितलियों का शरीर तीन भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। इनमें तीन जोड़ी संधियुक्त पैर पाए जाते हैं। इनके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। बच्चों, इनके मुख में स्प्रिंग की तरह खोखली लंबी सूंड के समान जीभ होती है, जिससे यह फूलों का रस चूसती हैं। बच्चों, तितलियों में एक जोड़ी एंटीना पाया जाता है, जिससे यह किसी वस्तु की गंध का पता लगा सकती हैं। बच्चों, तितलियों का दिमाग बहुत तेज होता है। इनमें सूंघने, देखने अथवा चखने व उड़ने के अलावा जगह को पहचानने की भी क्षमता होती है। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वयस्क होने पर तितलियां आमतौर पर ये उस पेड़ के तने या पौधे पर वापस आती हैं जहां इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया होता है। बच्चों, तितलियां अपने पंखों की सहायता से दिन में एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है और मधुपान करती है। इससे ये परागण में भी सहायता करती हैं। बच्चों, तितलियों की कुछ प्रजाति सड़े हुए मांस, गोबर एवं फल से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। बच्चों, तितलियों के रंगों में ही नहीं आकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसी कारण इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे जूलिया, गार्डन टाइगर मॉथ, मोनार्क बटरफ्लाई, पीकॉक बटरफ्लाई, पोस्टमैन बटरफ्लाई तथा वायसराय। इनके अलावा भी इनके कई नामों से इन्हें जाना जाता है। इन रंगों की सहायता से यह शिकारियों से अपना बचाव करती हैं। बच्चों, दुनिया में तितलियों की 20 लाख से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। बच्चों, तितलियों का जीवन एक हफ्ते से लेकर एक साल का होता है। मादा तितली अपने अंडे पत्ती के निचली सतह पर देती है। अंडे से तितली बनने की चार अवस्थाएं होती हैं। इनके अंडे एक खास गोंद से पेड़ से चिपके रहते हैं। इन अंडों से कुछ दिनों बाद एक छोटा सा कीट निकलता है, जिसे लार्वा कहते हैं। साधारण भाषा में हम इन्हें इल्लियां कहते हैं। यह पत्तियों को खाकर बड़ी होती हैं। ये इल्लियां ज्यादातर समय अपना पेट भरने में लगाती हैं। बच्चों, तितलियों की ये इल्लियां पत्तियां खाते वक्त शहद जैसी मीठी चीज बनाती हैं, जिसे हनी ड्यू कहता है। यह चींटियों के काम आता है। ये चींटियां इन हनी ड्यू को खाती हैं और बीटल

0: जैसे दुश्मनों से इन इल्लियों की रक्षा करती हैं। बच्चों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली क्वीन अलेक्जेंडर है। बच्चों, हम लोग हर साल 14 मार्च को बटरफ्लाई डे मनाते हैं। बच्चों, प्रदूषण के कारण तितलियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। अतः हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम इन सुंदर जीवों की रक्षा करें। एक बार हम इन रंग बिरंगी तितलियों के लिए यह कह सकते हैं कि तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो? परी लोक से आई हो?
1: तो सुनला हो चुन्नू मुन्नू, डॉक्टर साधना सिंह कितना थोड़े समय में कितनी अच्छी अच्छी बात तू लोगन के बतेलिन है ना। अब इतनी अच्छी बात सुने के बाद देखा हो तो ही लोगन की तरह एक ठे छोटी सी गुड़िया का छोटा सा कविता लेके आयल है, तो एके भी सुनला।
2: मेरा नाम इसी पाठक है कि जी तू ए में पढ़ती हूँ। मैं

0: चमकता। जैक और वो जेल चढ़ गेलो एगो टीला पर, भरे काती एगो बाल्टी पानी। जै गेलन धराम, फूद गले कपार, जेल दगर दगर तावित बारी।
1: तो का हो चुन्नू मुन्नू, कितना नीक लगल है ना अपने प्यारी प्यारी आवाज में इसी पाठक इतना नीक गीत गा रे कविता सुनैली ने तू लोगन के। अब इतना नीक कविता के संगे संगे तू लोगन के एगो बाल गीत भी सुनवल चाहते, तो चुन्नू मुन्नू एके सुना।

0: तो बच्चा लोगन, अभी तू लोगन जो गीत सुनला है वो आवाज रहल है मोहम्मद रफी का। अब देखा हम लोग, हमरे भी जाए का समय हो गए लो। अब तू लोगन से विदा लेते है, अगले अंक के साथ फिर आई तू लोगन के लिए नई नई जानकारी लेके। तो हम चले थे बच्चों, जय हिंद।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने, युववाणी।

0: निकल पड़े हो जो राह पर तो अब पीछे मुड़ना क्या, रास्तों की कठिनाइयों से डर कर यूं कदम रोकना क्या।
1: मंजिल मिलेगी तुम्हें भी एक दिन, बस हौसला बनाए रखना, जो टूट कर भी ना हारे उसे इस जमाने में रोकना क्या।
0: बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम यमवाणी में। मैं हूँ मोनी।
1: और मैं हूँ निशा। तो यूं तो दोस्तों हमारा युवाणी कार्यक्रम रोज़ कुछ ना कुछ खास हमारे श्रोताओं के लिए लाता ही है, लेकिन संडे का दिन और भी स्पेशल होता है हमारे साथियों के लिए। तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत की जाए इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा है। आज 7 जून है, जिसे पूरी दुनिया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाती है।
3: जी हाँ साथियों, अन्न ही जीवन है, यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या वो वास्तव में सुरक्षित है? अक्सर हम स्वाद के चक्कर में या जल्दबाजी में स्वच्छता से समझौता कर लेते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि दूषित भोजन का सेवन हर साल लाखों लोगों को गंभीर बीमारियों का शिकार बना देता है।
2: खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि पोषण और शुद्धता सुनिश्चित करना है। इस मौके पर हमें 3 स्तरों पर सजग होने की आवश्यकता है। खरीदारी के समय हमेशा पैकेट बंद उत्पादों पर एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे कि FSSAI मार्क की जांच करें। खुले में बिकने वाले बिना ढकी खाद्य सामग्री से बचें।
3: जी हाँ, और रसोई में स्वच्छता रखें। खाना बनाने से पहले और बाद में हाथों की सफाई जरूर करें। बर्तनों की शुद्धता रखें और कच्ची सब्जियों को

0: अच्छी तरह से धोएं। और ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं ना, वो हमें बड़े संक्रमणों से बचा सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, हम केवल अपने घर तक ही सीमित नहीं रहें, यदि आप बाहर खाने खाने जा रहे हैं तो वहाँ की स्वच्छता को भी महत्व दें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक रहे। याद रखिए दोस्तों, सुरक्षित भोजन न केवल बीमारियों को दूर रखता है बल्कि यह हमारे देश के उत्पादकता और विकास में भी योगदान देता है। एक स्वस्थ नागरिक ही एक स्वच्छ राष्ट्र का आधार होता है।
0: बिल्कुल। तो आज के दिन आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम न केवल स्वयं शुद्ध और पौष्टिक भोजन करेंगे बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ और सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि स्वच्छ भोजन ही है बेहतर कल की गारंटी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको पता है कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन सालों में उन्होंने देश का तो विकास किया ही है बल्कि काशी भी कितनी बदल गई है ना।
1: बिल्कुल। अब बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालु गंगा घाट से सीधे मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसे दर्शन करना पहले की तुलना में काफी सुविधाजनक हो गया है।
0: और अगर घाटों की बात करें तो नमो घाट आज लोगों की फेवरेट जगह बन चुका है। सुबह की सैर हो या फिर योगा, गंगा स्नान हो, गंगा के किनारे बैठकर समय बिताना हो।
1: बिल्कुल। सिर्फ नमो घाट ही नहीं, सामने घाट और शास्त्री घाट को भी सुंदरीकरण किया गया है और वाराणसी में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं, जिसके लिए रुद्राज कॉन्वेंशन सेंटर मनाया गया है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए जाते हैं।
0: और सड़कों की भी बात करें तो एयरपोर्ट से शहर आने वाला रास्ता काफी बेहतर हो गया है और बाबतपुर वाराणसी 4 लेन सड़क और रिंग रोड बनने से लोगों का सफर भी बहुत आसान हो चुका है।
1: बिल्कुल। और कैंट और बनारस स्टेशन कितने सुंदर और आधुनिक नजर आते हैं। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों ने काशी की देश के कई कई बड़े शहरों से जोड़ा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो कैंसर अस्पतालों की स्थापना और BHU हॉस्पिटल में नई नई फैसिलिटी से पूर्वांचल के लोगों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है दोस्तों। तो ये तो थी हमारे 12 सालों में की गई केंद्र सरकार के कुछ बातें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक गीत का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ,
3: 0542227658।
4: दादू आपका तारा मतलब
5: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
6: पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
4: हाँ बैल मुझे मार मतलब
5: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसा।
7: अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
4: इसका मतलब?
7: इन्हीं से पूछो।
6: समझा पापा।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: दोस्तों अब बारी है आपको सुनवाने की कि हमने युवाड़ी कैंपस में हमारे दोस्तों से क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं।
11: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं युवाड़ी कैंपस में लेकर एक और कैंपस। जी हाँ, हम आ चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में। होने वाले जैसा कि आपको पता ही होगा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आइए हम अपने कुछ साथियों से बात करते हैं कि उन पर ऐसा क्या विचार है। तो जी मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
12: जी मैम, मेरा नाम नवीन कुमार।
11: जी नवीन जी, आप क्या करते हैं?
12: मैम मैं बीए मास कम्युनिकेशन करता
11: हूँ। तो जैसा कि नवीन जी आपको बता दे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो सर रेडियो से कोई ऐसी जुड़ी बात जो आपके बचपन से जुड़ी हो, या आप रेडियो में क्या वो चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
12: मैम रेडियो के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पहले तो यही साधन थे, टीवी भी इतना घरों में होता नहीं था, होता भी था तो कलर नहीं होता था, लेकिन रेडियो से हम लोग का बचपन से ही जुड़ा हुआ है। हमारे दादा लोग जब सुनते थे रेडियो, सुबह होता था तो वो सुबह का भक्ति गाने जो आते थे और फिर उसके बाद न्यूज, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। और शाम, मुझे याद आ रहा है कि शाम को एक शो आता था, हेलो फरमाइश या फिर फरमाइश करके आता था, तो उसमें कई सारे मैसेजेस आते थे और वो गाना सिलेक्ट करके सुनाया जाता था, तो वो बहुत अच्छा लगता था। शाम को हम लोग दादा से रेडियो मांग के उसको सुनते थे, या फिर वो बैठे रहते या फिर ऐसा कुछ है, तो हम लोग जाके वहाँ पे साथ में सुनते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। हम बच्चों का जो है, लड़कों का फेवरेट होता था वो। अब बातों के

0: साथ साथ गाने भी सुनने को मिलता था।
1: अच्छा जैसे नवीन जी, ये जो रेडियो है हमारे आजादी के समय से लेकर आज उसको 90 वर्ष पूरे होने को हैं, तो
0: जी
1: जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजादी के समय भी रेडियो ने कितना योगदान दिया है चीजें लोगों तक पहुंचाना। उस समय तो टीवी वगैरह नहीं थी, तो इस पे आपका क्या कहना है?
0: बहुत मैम, अगर रेडियो की बात करें तो सबसे सस्ता माध्यम यही था, क्योंकि हम टीवी बहुत ज्यादा महंगा आता था और उसके लिए एंटीना वगैरह अफोर्ड करना बहुत, मतलब बहुत महंगा पड़ जाता था। लेकिन रेडियो का क्या है कि बिजली भी जाता था टीवी में, रेडियो का क्या है कि बस लाके आप लगा दियो, एक एंटीना थोड़ा सा उसका निकल गया है, बैटरी लगा दी और चल रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा था। और रेडियो उन दिनों में रेडियो घरों की शान हुआ करती थी कि भाई इनके यहाँ रेडियो है।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कह
0: जब
1: रहे हैं।
0: जब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनते थे वहां पे, मतलब खेत में बैठे हैं और रेडियो सुनते थे, तो उन सब से हमारी जो यादें जुड़ी हुई है ना, वो अभी भी याद करते हैं, मिस करते हैं। आज ये हो गया, वीडियो वगैरह हो गया है, रील्स वगैरह आ गए हैं, नहीं चल रहे, लेकिन पहले रेडियो बहुत बड़ी बात थी। और सबसे अच्छा सरकार और जनता के बीच कनेक्टिविटी फैलाने का जो माध्यम था वो सबसे अच्छा माध्यम था ये।
1: अच्छा जैसा नवीन जी आपको पता ही होगा कि आकाशवाणी में हर तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं, खासकर लोकगीत संगीत और जो भाषाएं हैं, जो हमारी पारंपरिक भाषाएं हैं, इन सब पे भी हम लोकगीत गीत कार्यक्रम लाते थे, कृषि से जुड़े कार्यक्रम लाते थे, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम लाते थे। इन कार्यक्रमों के बीच में आपको मतलब कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता था?
0: वैसे तो मुझे आकाशवाणी के सारे लगते थे, क्योंकि इंटरेस्टिंग रहता था हमारे मतलब कल्चर से जुड़ा हुआ चीजें, जुड़ी हुई चीजें रहती थी। लोकगीत हो गया, ठुमरी, और त्योहारों पे तो स्पेशल ठुमरी और ये कजरी, ये सब चलते थे स्पेशल। और अदर मतलब कई सारे लैंग्वेजेस में चलते होंगे, जैसे भोजपुरी में भी आते थे। और आकाशवाणी वाराणसी केंद्र का मैं सुनता था, हमेशा से सुनता रहा हूँ और अभी भी सुनता हूँ कभी कभी। तो मुझे एक ये पहला फरमाइश कार्यक्रम बताया, एक शाम को आता था 7 बजे, जब ठंडी का समय रहता था और वो किसान भाइयों का कार्यक्रम रहता था। तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो एंकर या फिर वो आरजी होते हैं, उद्घोषक जो होते हैं, वो बोलते हैं पंचो राम राम। तो ये वाली चीजें जो उसमें किसान भाई अपनी अपनी बातें करते थे, फसल की बात
1: हाँ,
0: करते
1: वो
0: थे
1: ऑथेंटिकेशन
0: और
1: लगता
0: शाम
1: था।
0: को ठंड की
1: हाँ
0: मौसम की बात करते थे। साथ ही साथ वो लोग, वो जो नोक झोंक था ना उनका, चार लोग बैठे हैं उनका नोक झोंक चल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था।
1: हाँ, वो
0: तो
1: रियलिस्टिक होता था।
0: हाँ, रियलिस्टिक एकदम, ऐसा लगता है ना कि एक पेड़ के नीचे चार लोग बैठे हैं और किसान बैठे हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे हैं और बीच बीच में गाने सुन रहे हैं वो लोग, वो इंटरेस्टिंग लगता था। और मुझे याद आ रहा है, ड्रामा मुझे अच्छी लगती थी। जब कभी ड्रामा आता था रेडियो पे, दोपहर 1-1.5 बजे तक आता था वो, तो संडे संडे मैं ड्रामा जरूर सुनता था, क्योंकि वो एक ऐसा चीज होता था। हम लोग नाटक बहुत देखे थे, टीवी में हो गया, पिक्चर हो गया, मूवी हो गया, अब भी देखते हैं, लेकिन वो ड्रामा एक अलग टेस्ट देता था हमें, एक अलग कॉन्फिडेंस देता था। और वो कैसे करते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे ये सब होता है, एकदम रियलिस्टिक लगता था कि कैसे हम ड्रामा देखने के बजाय सुन रहे थे
1: उसको
0: और सभी
1: महसूस कर
0: चीज
1: रहे थे, उसमें जी
0: महसूस कर
1: रहे
0: रहे
1: थे।
0: थे। और वो चीजें ऐसी लग रही थी जैसे इधर सुन रहे हैं और हमारी आंखों के सामने
1: घटित हो
0: वो
1: रहा है।
0: प्रस्तुत
1: हाँ
0: हो रहा है, एकदम वीडियो चल रही है। तो
1: जी
0: वो चीजें बड़े रियलिस्टिक और मुझे अच्छा लगता था। अब शायद आता है कि नहीं आता है, या फिर हो सकता है अभी हम लोग बिजी चल रहे हैं, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम के चक्कर में नहीं सुन
1: जी
0: पाते हैं,
1: हम अपने
0: बट अब
1: साथियों
0: भी
1: को
0: होगा।
1: यही बताना चाहते हैं कि हमारा आकाशवाणी आज भी उसी पेस के साथ काम कर रहा है। अभी भी बहुत सारे नए नए कार्यक्रमों से जुड़े हैं हम लोग, नई नई चीजें हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अब आपको पता ही होगा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो आप ये बताइए कि अभी के लिए रेडियो का क्या महत्व है आपके लिए?
0: मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं टेलीविजन कम देखता था, मैं रेडियो ज्यादा सुनता था। इवन मैं समाचार वगैरह से, मतलब जब पढ़ा पढ़ता उड़ता था तो बहुत चिढ़ता था कि अरे समाचार आ गया फालतू में, गाना
1: हाँ
0: बजना चाहिए, इतना अच्छा बज रहा था फिर समाचार आ गया कट के। और रेडियो में तो कई बार आते थे, मतलब पहले मॉर्निंग न्यूज 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर दोपहर में भी, एंड फिर शाम को 4 बजे, फिर 7 बजे। तो इस तरीके से न्यूज, और न्यूज मतलब अपडेट

0: मिलता था वहां का। हम
1: के
0: एंटरटेनमेंट की
1: ग्लैमराइज कर
0: बात कर,
1: देते हैं लोग, मतलब इतना शोर शराबा, न्यूज हो या कोई प्रोग्राम ही हो
0: हाँ
1: तो वो ज्यादा ग्लैमराइज कर देते थे। जो ऑथेंटिकेशन होता था, जो न्यूज का परिभाषा होता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म होते लग रहा है इन सब
0: हाँ
1: माध्यमों
0: अब
1: से।
0: खत्म होते लग रहा है। पहले क्या होता था, बहुत मतलब ऐसा आप सुन रहे हो बैठ के, यहाँ से एक एक वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको कि इन्होंने क्या कहा, ये क्या बात हुई, ये इस न्यूज में इसका क्या निचोड़ था, सब कुछ मतलब। और इस तरीके से बताया जाता था कि वो न्यूज जैसा वहां पे है वैसा ही न्यूज हमारे पास पहुंचता था। अब क्या है कि ग्लैमराइज कर दे रहे हैं बहुत ज्यादा, और आज के समय में हर चीज ब्रेकिंग है। हम टेलीविजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेडियो की भी बात कर रहे हैं। रेडियो में आप देखिए इतना फास्ट हो गया रेडियो, अभी तो फिलहाल शिफ्ट हो रहा है वीडियो की तरफ, बट इतना फास्ट हो गया रेडियो कि आरजे खड़े खड़े बोलते हैं गुड मॉर्निंग हेलो, और बहुत मतलब एनर्जी के साथ।
1: हाँ, सही कह रहे हैं।
0: आकाशवाणी में जब स्टार्ट हुआ था, जब था पहले, अब भी बहुत इत्मीनान से, बहुत क्लियरिटी के साथ, एक
1: हाँ,
0: भी
1: बहुत
0: बिना किसी
1: ठहराव
0: गलती के,
1: था।
0: हाँ
1: हाँ, बातें
0: ठहराव
1: थी।
0: के साथ, और ऐसा कि एक छोटा बच्चा से लेकर एक 80 साल का बुढ़ा भी उस समाचार को, उसी समाचार को समझ सके, सुन सके और उस पर रिएक्ट कर सके, जहन में बस जाता था उसके।
1: नवीन जी, आपसे बात करकर हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी इतनी अच्छी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं। आपने हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आ गए एक और साथी से मिलने। आइए बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? तो
2: जी अमन,
1: अमन जी, आप क्या करते हैं?
2: अभी तो बस पढ़ाई खत्म हुई है, उसके बाद अभी मतलब ऐसे ही वेल्ले, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
1: अच्छा, तो अमन जी, जैसा कि आपको बता दें कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने को हैं, तो इस पे
2: हाँ
1: आपका
2: जी
1: क्या?
2: जी
1: हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना है?
2: सबसे पहले तो आकाशवाणी और आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 90 वर्ष कोई कम नहीं होता है। 90 वर्ष यानी आप शतक के बस 10 वर्ष कम है।
1: बिल्कुल
2: सबसे पहले तो
1: बिल्कुल।
2: आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।
1: थैंक यू थैंक यू। अमन जी, ये बताइए, जैसे जो ये रेडियो स्टेशन है, ये जो आकाशवाणी है, उसने अपना 90 वर्ष पूरा किया, और ये हमारे आजादी के समय से है, तो आप कुछ ऐसा बताएंगे कि रेडियो का क्या योगदान रहा हमारे आजादी के समय या आपके समय में?
2: देखिए रेडियो का योगदान हमेशा से समाज में बहुत एक अलग ही मीडियम के रूप में काम करा है रेडियो ने, चाहे वो हमें जानकारी के लिए हो, हमारे मनोरंजन के लिए हो, कई तरीकों से रेडियो ने जीवन में अपना योगदान दिया है। क्योंकि इससे देखिए, इससे केवल हमें समाचार सुनने को नहीं मिलता, ना ही हमें केवल ये गाने सुनने को मिलते, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीजें, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात सुनते हैं, किसानों के लिए बात होती है रेडियो पे।
1: बिल्कुल
2: खैर अभी
1: बिल्कुल।
2: तो सोशल मीडिया है, लेकिन पहले की अगर हम बात करें, पहले जो रेडियो ही एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू हमें सारी चीजें मिलती थी। अब तो खैर सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन आ गया, तब से ये रेडियो कम हो गया, लेकिन अभी भी रेडियो सुनने वाले लोग जो हैं वो आज भी रेडियो को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे।
1: जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए, कोई ऐसा किस्सा, जो ऐसी कोई बात जो आपकी रेडियो से जुड़ी हो, जो आपको अच्छी लगती हो, या कोई ऐसा कार्यक्रम जो आप सुनते हो और आपको पसंद हो?
2: रेडियो और जैसे आकाशवाणी की बात करें, तो जब हम लोग छोटे थे तो छोटे में एक तो आपका प्राइम टाइम जैसे अभी टीवी पे आता है, वैसे ही रात 8 बजे एक आती थी आप आकाशवाणी पे, कहानियों की एक कोई सीरीज आती थी, बहुत पहले की बात है, मुझे पूरा रिमेम्बर नहीं है। तो वो काफी, क्योंकि उस टाइम पे टेलीविजन था लेकिन उतना सबके घरों में नहीं था, तो रेडियो एक ऐसा मीडियम था कि लोग वहां से कहानियां सुन, हम वहां से भी कहानियां सुनते थे। तो बात करें, और एक ऐसा भी टाइम आया जब हमारे हाथ में नया नया फोन तो आया, लेकिन वहां से हम FM सुनना शुरू करते हैं, तो वहां गाने जो भी रेडियो पे आते थे, ये सब रहा, यादें ऐसी ही रहेंगी। अब खैर डिजिटल होने के बाद जब से सोशल मीडिया है, इन सब से इंसान थोड़ा दूर हो गया, लेकिन अभी भी जब भी टाइम मिलता है तो रेडियो हम जरूर सुनते हैं।
1: अच्छा अमन जी, ये बताइए, जैसा कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो इसके कई सारे योगदान है। हमारा जो आकाशवाणी है वो लगभग कई भाषाओं में ब्रॉडकास्ट करता है, वो चाहे कहानियां हो, लोकगीत हो, ड्रामा हो, और शिक्षा से जुड़ा हो या कृषि से जुड़ा हो, तो इस पे आपका क्या कहना है?
2: देखिए इस पे वही जो मैंने पहली चीजें कही कि इसका योगदान हर क्षेत्र में रहा है, आकाशवाणी का या रेडियो का हर क्षेत्र में योगदान उतना ही रहा है, चाहे कृषि हो, युवा हो, या कहानियों को लेके हो, गानों को लेके, हर क्षेत्र में योगदान रहा है रेडियो का। रेडियो मतलब एक ऐसी चीज है जिसे भूला नहीं जा सकता, चाहे हम कितने भी डिजिटलाइज हो जाए, चाहे कितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन रेडियो जो है वो हम कहें तो स्टार्टिंग वहीं से हुई हमारी मनोरंजन के साधन समाचार सुनना हमने वहीं से

0: सीखा सारी चीजें वहीं से, रेडियो से ही हमारी शुरुआत हुई है। खैर नए जनरेशन जो अभी है उन्हें तो नहीं पता होगा रेडियो के बारे में क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम हमारा बचपन रहा है, बचपन में हमने भी रेडियो सुना है, तो बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कहानियां वाने, तो रेडियो का योगदान बहुत रहा है हमारे जीवन में।
1: और अमन जी, ऐसा कोई वाक्या, कोई किस्सा जो रेडियो से जुड़ा हो आप हमें, हमारे दोस्तों को बताना चाहें?
0: जी रेडियो से बताया तो मैं बहुत बचपन में सुनता था, कुछ खास किस्सा याद नहीं है, और वैसे भी
1: अच्छा,
0: अब धीरे धीरे कम हो गई चीजें, तो कुछ याद तो है नहीं अभी रेडियो से। वैसे
1: आप
0: रेडियो
1: ऐसा कोई बदलाव जो आज के समय में आकाशवाणी या रेडियो में चाहते हो कि अगर ये हम लोग करें तो और भी आकाशवाणी आगे बढ़ सके?
0: आकाशवाणी देखिए आगे बढ़ने की, आकाशवाणी ऐसी नहीं कि आगे आकाशवाणी कोई पीछे किसी भी मामले में, आकाशवाणी सही है। लेकिन हाँ मैं ये चीज कहूंगा, आप सोशल मीडिया पर आकाशवाणी टीम एक्टिव तो है, लेकिन
1: हाँ
0: थोड़ा और एक्टिव हो जाए अगर सोशल मीडिया टीम पे, तो क्योंकि यूथ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अगर हम, तभी जैसे नई जनरेशन है उन्हें आकाशवाणी के बारे में क्या ही पता है, अगर हम सोशली एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तो आकाशवाणी के बारे में यूथ भी, ये जो नए बच्चे हैं नए जनरेशन वाले उन्हें भी पता चलेगी, और वो उसके बाद से शायद सुनना शुरू करें।
1: जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। आपको मैं बता दूँ कि हमारा आकाशवाणी का फेसबुक फेसबुक चैनल्स भी है, उस पे भी प्रोग्राम्स आते हैं, लाइव होते हैं, और हम लोग खुद इंस्टा पे हम लोग चीजें लोगों से शेयर करते हैं, हम अपने कार्यक्रम के बारे में, अपने जो इंटरव्यूज होते हैं जो, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे और आपके माध्यम से लोगों को पता चले कि नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और जो न्यू जनरेशन है उनके तरह कदम से कदम मिलाकर चले।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं यही कह रहा था, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तभी हम उनको फॉलो कर पाएंगे
1: जी
0: और वो
1: बिल्कुल,
0: हमें फॉलो करेंगे, इसलिए कदम से कदम मिला के चलना बहुत जरूरी है। और बाकी आपकी टीम अच्छी काम करती है, आकाशवाणी की पूरी टीम बहुत अच्छी काम करती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष हो चुके हैं। सर आपका नाम क्या है?
3: हम बधाई देना चाहते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चुके हैं। हमारा नाम विपिन कुमार शर्मा है और मैं तो बहुत पहले से ही,
2: आपकी क्या कुछ यादें हैं आकाशवाणी को लेकर?
3: आकाशवाणी में विविध भारती के बहुत सारे गाने सुनते थे हम, जो रात में 10 बजे के बाद में, इसके बाद 10 बजे से जो रात में गाना आता था सब बहुत बढ़िया सुपरफुट गाने आते थे और इतना अच्छा लगता था कि हम सुनते सुनते सो जाते थे, और रेडियो उसमें लिए थे, और अभी भी जब भी फोर व्हीलर में बैठता हूँ तो विविध भारती लगाने का होता है और बढ़िया बढ़िया गाना सुनने लगते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे चीज़ बताए जाते हैं जैसे किसान के बारे में बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ बताए जाते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है, ये भी पसंद करते हैं आकाशवाणी को।
2: कोई गाना जो आपका मन पसंदीदा हो?
3: चिट्ठी आई है ये हमको गाना बहुत अच्छा लगता है, और हम कभी भी कहीं भी सुनते हैं तो बहुत पसंद आते हैं।
2: ठीक है सर, धन्यवाद।
4: दोस्तों अब वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए खोलते हैं अपने शब्दों के पिटारे को और जानते हैं कि क्या है हमारे आज के नए शब्द। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है प्रतिमान, जिसका अर्थ है आदर्श, मॉडल, मानक या उदाहरण। इसका प्रयोग अक्सर किसी ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जिससे किसी दूसरे कार्य के लिए आधार या मिसाल माना जाए। जैसे आप वाक्य में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य और अहिंसा का प्रतिमान है।
5: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है ग्रीवेंस, जिसकी स्पेलिंग है GRIEVANCE, विच मीन्स अ रियल और इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेन, स्पेशली वन दैट इज कंसिडर अनफेयर। और हिंदी में कहे तो शिकायत, कष्ट, आपत्ति या दुखद अनुभव। और आप इस वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार कर सकते हैं, द एम्प्लॉयज डिसाइडेड टू फाइल अ फॉर्मल ग्रीवेंस अगेंस्ट द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द न्यू वर्किंग आवर्स।
4: और इसी के साथ दोस्तों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यानी क्वेश्चन ऑफ द डे की,
5: लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमने आपसे कल क्या पूछा था और उसका सही जवाब देकर विनर्स कौन बने हैं।
4: हाँ, तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज मावी गंगा क्लास बनारस से शुरू होकर भारत के किस राज्य तक जाता है, और जिसका सही जवाब है असम।
5: और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से, और बाबू दिव्यांश। ग्राम खैगा, तहसील महस

0: से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेत, धर्मेंद्र, मेघा, नंदनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। वहीं रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। वहीं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा भी हैं।
1: जी बिल्कुल। और नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदेश शिवा, और संगीत की नगरी खांडवा से हैं श्यामा बाई राव राव करे, और प्रमीण चौहान हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, अलोक कुमार श्रीवास्तव हैं सारनाथ वाराणसी से, वहीं अमित कुमार बस्ती से हैं, रवि मौर्या ग्राम सिमरौल आजमगढ़ से, परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से।
0: तो दोस्तों, ये सब थे हमारे आज के विनर्स। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और बनते रहिए हमारे डेली के विनर्स। और इसके साथ आज का हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के तहत काम करता है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के तहत काम करता है?
1: और इसका सही जवाब आप हमें हमारी इंस्टा आईडी youth_AIR_वाराणसी या फिर हमारी ईमेल आईडी youth_AIR_VNS@gmail.com पर भेज सकते हैं।
0: दोस्तों, अब बारी है जानने की कि वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि दुनिया में इस टाइम बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव पूरा कर लिया है। इसमें किर्गिस्तान ने पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपनी सीट पक्की की है, जबकि ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैको और जिम्बाब्वे भी एक सदस्य चुने गए हैं।
1: और भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है, और इस ऐतिहासिक समझौते के तहत ओमान अब भारतीय कपड़ा, चमड़ा और ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क में भारी कटौती करेगा।
0: और मेघालय के उमरोई में भारत ने पहली बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 की शुरुआत की है। 2 सप्ताह तक चलने वाला इस युद्धाभ्यास में वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका सहित 13 देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए हिस्सा ले रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक गीत का।

0: अब समय है दोस्तों रोजगार सूचना की। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने SSC CGL 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लगभग 12,256 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
1: और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
0: दोस्तों जाते जाते हम एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे जो कि हमारे जीवन की नींव है, बड़ों का सम्मान।
1: हम अक्सर अपने करियर और व्यस्त दिनचर्या में इतने खो जाते हैं कि घर के उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें बोलना, चलना और दुनिया देखना सिखाया। हमारे बुजुर्ग केवल घर के एक सदस्य नहीं है बल्कि अनुभवों का जीता जागता पुस्तकालय हैं। उनके पास जीवन की वो अनमोल सबक होते हैं जो हमें किसी बड़ी डिग्री या किताब से नहीं मिल सकती।
0: आज के समय में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और बुजुर्ग अक्सर अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। उन्हें हमारी भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक हमारे समय और प्रेम की आवश्यकता है। बड़ों का सम्मान करने का अर्थ केवल उनके पैर छूना नहीं है, उनकी आज्ञा मानना नहीं है, बल्कि उन्हें यह महसूस कराना है कि वे आज भी हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
1: आप ये छोटे बदलाव कर सकते हैं। समय निकालिए, दिन में कम से कम 15 मिनट उनके साथ बैठिए और उनकी बातें सुनिए और उनसे सलाह लीजिए। घर के छोटे छोटे बड़े बड़े फैसले जो होते हैं उनकी राय लीजिए ताकि उन्हें अपनी अहमियत का एहसास हो। धैर्य रखिए, कभी कभी उम्र के साथ उनकी बातें दोहराने की आदत हो जाती है। अब ऐसे में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है और याद रखिए कि आप भी एक दिन उसी उम्र तक पहुँचेंगे।
0: दोस्तों हमारे संस्कार भी हमारी पहचान है। जो व्यक्ति अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं करता वह जीवन में कभी भी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़ों का आशीर्वाद एक ऐसी ढाल है जो हमें मुश्किलों से बचाती है।
1: तो आज ही घर पहुंचते ही उन्हें गले लगाएं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करिए।
0: इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, हम आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। केंद्र सरकार कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी के दाम में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीयों के घरेलू गैस सबसे कम दाम पर उपलब्ध हो रहे हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कहलस कि भारतीय सिलेंडर कौन हो पड़ोसी देश के तुलना में सस्ता हवे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसन विकसित अर्थव्यवस्था के तुलना में ढेरे कम बा।
1: सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसमें समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत भारतीय पहले 4 रिफिल पर प्रति वर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए का भुगतान करना पड़ता है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उन्हें आज घरेलू रसोई गैस के दाम में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपए का बढ़ोतरी कैल गयी हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने। यह मौका पर रक्षा मंत्री कहले कि लखनऊ के साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश विकास के राह पर आगे बढ़े रहल हो। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहले कि जन समस्या का समाधान और विकास कार्य में गति देवे खातिर संवाद बहुत जरूरी बा। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन और भाजपा का कार्यकर्ता लोग हिस्सा लेले। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल असम कक्ष पदन पर भर्ती परीक्षा बीने से 10 जून ले रोजाना 2 पाली में आयोजित कई जाये। एक ले के प्रशासन की ओर से पुरहर इंतजाम कैल जा रहे हो। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के सुविधा खातिर रेलवे और परिवहन निगम खास तैयारी कैले बा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेन चलवले का फैसला ले लिया हो। परिवहन निगम रियायती दर पर परीक्षार्थियों के सेवा उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रशिक्षित

0: स्नातक टीजीटी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पछिला 3 और 4 जून के भयल लिखित परीक्षा के सचिव 15 बिसेन का प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की ओर से जारी कई दिहल गेल बा। आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर सुशांत कुमार बतवले की जोता कौनो प्रश्न चाहे उत्तर के बारे में कौनो आपत्ति होके था अभ्यर्थी तय प्रक्रिया के हिसाबी से ऑनलाइन जरिया से आपन आपत्ति दर्ज करा सकेले। डॉक्टर प्रशांत कुमार बतवले की 12 जून के राती 12 बजे ले आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कैल जा सकेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कक्षा 12वीं के परीक्षा का नतीजा जारी भइले के बाद ऐसे जुड़ल मुद्दन का जांची आ उत्तर पुस्तिका के फेर से मूल्यांकन बदे ऑनलाइन आवेदन जमा कैले का आज आखिरी तारीख को बोर्ड सोशल मीडिया पोस्ट में पतवलस की पोर्टल आधी राती से खुलत रही। छात्र लोगों से अनुरोध बा कि वो आखिरी तारीख के पहले अपन आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 का पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र का कथित लीक चाहे बिक्री के दावन का खंडन कैले हो। एनटीए कहले हवे कि ई छात्रन आ उनके परिवारन के चिंता का फायदा उठावे वाले संगठित नकल गिरोह का काम हो। एजेंसी सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनल खातन आ सामग्री का पहचान कई के ऐसे जुड़ल प्लेटफॉर्म के खिलाफ जुड़ते कार्यवाही का चेतावनी दिले हो। केंद्र सरकार का 12 बरस पूरा भेले के उपलक्ष्य में आज प्रदेश सरकार का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से देउरिया के खनवा नदी में वृहद सफाई अभियान चलावल गयी। अभियान में नदी से सवार सेवार जल कुंभी अवशेष निकाल गयी। यह मौका पर कृषि मंत्री पौधों लगवले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरुष हॉकी अंडर 18 जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम की ओर से स्वर्ण पदक जीतले पर भारतीय खिलाड़ियों के बधाई आ शुभकामना दिले हवे। मुख्यमंत्री केतन कुशवाहा शाहरुख अली प्रहलाद राजभर राहुल यादव आ सुमित पाल के बढ़िया प्रदर्शन कैले पर उनका सराहना कैले हवे। जापान के काका मिकाहारा में खेल गेल फाइनल मुकाबला में भारत मेजबान जापान के 4-1 से हराकर एशिया चैंपियन बनले का गौरव हासिल कैले हो। समाचार पूरा भए नमस्कार।
1: मीडियम वेब के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 7वीं कड़ी। हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे शाम 6:30 से, जिसमें अनुभव खेती में इस विषय पर विशेषज्ञ राजेंद्र यादव से बातचीत करेंगे राजेश नारायण। साथ ही सुनिएगा शेर बहादुर सिंह का गाया हुआ लोकगीत। शाम 7:31 पर सुनिएगा पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और पूजा सिंह की होगी। गैर फिल्मी गीत और गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 और शाम 7 बजे। रस रंग का समय होगा शाम 7:50। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आप सुबह 7:31 पर और रात्रि

बजकर 30 मिनट पर सुनेगा गिटार वादन। कलाकार होंगे निर्मल सैनी। दिन के 12:45 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर वी बालाजी का वायलिन वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह दोपहर 12:30 पर सुनेगा महुआ बैनर्जी के गाए हुए गीत और रात्रि 8 बजे हम इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें। शाम 6:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें पीलिया रोग कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर डॉक्टर विवेक राय से बातचीत करेंगे सुधीर कुमार श्रीवास्तव। साथ ही आनंद लीजिएगा राम जियावन और साथी के गाए हुए लोकगीत का। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर और दोपहर 1:45 पर भी। शहरी बहनें अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी सुबह दोपहर 1:15 से, जिसमें गीत संगीत के अलावा डॉक्टर असीम मित्रा से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा कैंसर रोग समय पर पहचान क्यों जरूरी। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 से, जिसमें आकर्षण होगा आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और गीत संगीत। साथ ही सुनिएगा वार्ता, विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय माध्यम। वार्ताकार होंगे आदित्य प्रकाश। शाम 7:31 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। वाचन और स्वर होगा आशुतोष और सना सलीम का। रात्रि 8:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला की 8वीं कड़ी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा खेती की बातें, विषय होगा अरहर की वैज्ञानिक खेती, जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना का समय होगा सुबह 6:10। सुबह 6:30 पर विचार बिंदु का विषय होगा कर्म ही कल्प वृक्ष। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर, जिसमें विटामिन की कमी से होने वाली समस्याएं इस विषय पर जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह। सुबह 7:00 गुड मॉर्निंग बनारस और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:45 से। सुबह 10:00 फिल्म संगीत और आपके पत्र आपके गीत का समय होगा सुबह 11:00। तो ये थी हमारी केंद्र से प्रसारित होने वाली आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है फिल्म आ अब लौट चले से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
6: अगली आवाज आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान की, शब्द रचना जयदीप साहनी का और संगीत है सलीम सुलेमान का। फिल्म का नाम है आजा नचले।

इसी के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रातःकाले नवदिल्लीनगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य सप्तसप्ततितमे संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्याया समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतदभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलनरूपं धारयति। अद्य विश्वखाद्यसुरक्षादिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्वखाद्यसुरक्षादिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधानपर्यन्तं सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्यसुरक्षायाः अधिकाररूपेण तथा सामूहिकदायित्वरूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तम् अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमम् आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान्। नवचंडीगढ़ नगरे आयोक्ष्यमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीय दलेन अफगानिस्तान दलस्य सम्मुखे अष्ट क्रीडकानां हानि पुरस्सरं चतुष्षष्ट्यधिक पञ्चशत धावनांकान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता। भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।

0: पंचो राम राम। और हो गुंजा बहन?
1: बिरजू भैया
0: बढ़िया हो? तर तबीयत ठीक बा ना?
1: एकदम ठीक हो भैया। आपन बतावल जाए कैसन हुआ आ संगे संगे खेती किसानी का जो काम तू कर रहा हुआ ना ओके देख के तो बड़ा नीक लगत हो। इहो नीक लगत हो कि भाई बड़े नया तकनीक से भाई अपन खेती किसानी कर रहा हुआ।
0: एकदम अब हमारे मन के बात छिल लो हम ही ना करत है। अब इन देखा कुल किसान भैया लोग के चाहिए कि देखा भैया हमन के जो खेत बारी बा वो तो भैया बढ़ी है ना, लेकिन भाई अब उतने खेत कियारी में पूरा देशवासी लोग का पेट पार्जन करे कि ना बा बहन?
1: हाँ भाई जरूरी हो।
0: हाँ तो देखा ओके हमन के नई कृषि तकनीक अपनाए के आ नए गुणवत्ता वाली बीज जिसे जिला कृषि केंद्र वाज निकाई बा वहाँ से समझ बूझ के अच्छे बढ़िया उन्नत किस्म के बीज लिया बा। अब बढ़िया से ओके बुवाई करा आपके समय समय पर देखभाल करके निराई गुड़ाई करके जितना अधिक से अधिक अन्न हमन उपजाओल जी ना तो हमन के समय ला कि जितना भी भारतवासी चाहे विश्व स्तर पर जितना भी भाई लोग हों सब कर पेट पार्जन हुए।
1: एकदम सही कहत हुआ भाई। अपने बारे में नहीं और लोगन के बारे में भी सोचल जात हो। किसान भैया लोगन देखा लग गए हुआ अपने खेती किसानी में नया नया तकनीक अपना के। ऐसे का फायदा हो तो देखा तो हुआ ना मने कि लागत कम लगत हो आ उपज देखा कितना बढ़िया होता।
0: देखा बहन हम कहते हैं कि देखा अमन का पुरनिया लोग परंपरागत खेती करत आवत रहा हाँ तो भैया उसे तो खाली अपन लुगा रोटी ने चली
1: हाँ
0: बाल बच्चन का पेट भरी लेकिन और कुल जौन हमन का काम रुक जाई

0: तो ऐसे दुपैसा भैया अपने दिन रात के भी ओके जरूरी बा, तो जितना अधिक से अधिक हमन के अन्न उपजी उसे दुपैसा मिली तो भाई आगे के जौन बा हमन के गाड़ी खिंचाई।
1: एकदम भाई सही बात हो, ई जरूरी भी हो कि देखा भैया किसान भैया लोगन का अपन जौन पूंजी हो देखा कुल अपने खेती किसानी में लगा देहल जाला। अब उनमें भी अगर हम लोगन के फायदा ना होखे तो फिर बात तो वही भैल ना कि कुल तो लगा दिली मिलल कुछ ना। तो ये खातिर जो नई नई किसान लोगन अपन तकनीक अपनावत हुआ ना वो देख के बड़ा अच्छा लगत हो, और संगे संगे देखा अपने देश का विकास भी तो यही से जुड़ल हो ना।
0: देखा बहन समस्या ये है कि अब हमन का जिसे कोनो भी खेती किसानी में कृषि यंत्र भैल नए नए यंत्र आवत बाड़ा उनके हमन का उमें उपयोग में ला के बढ़िया ढंग से जुताई गुड़ाई निराई करत हैं जा आ नए ढंग से बीज ओकर ले आए के अपन बोआई था। अच्छा खेती करे से पहले हमन देखा हो अब हरी खाद के भी बोआई जिसे सनई भैल ढैंचा भैल एक ही बोझ है तो हमन का मिट्टी उपजाऊ हो जाते।
1: हाँ?
0: आ देखा कुछ किसान भैया लोग हुआ तो बर्मी कंपोस्ट भी बनावत हुए तो उसे अपन खेत का उर्वरा शक्ति भी देखा बढ़त है आ अपन फसल भी बढ़िया से होत है। आ देखा ये गुंजा बहन हम तो कथी देखा हो आज हमके याद आल है आज देखा हमन का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी 7 जून की पूरा विश्व मनावाला तो एकर देखा हमन का मेन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के ये उद्देश्य है बहन कि देखा हमन का अन्न उपजावत है जा तो ओकर हमन समय से भंडारण करी जा ताकि भाई देखा सही से भंडारण होई तो कोनो नुकसान ना होई। आ हमन के समला पूरे भारतवासी या विश्व में जितना भी हमन के भाई बहन लोग रहत हो तो हमन के किसान के ये उत्तरदायित्व है कि भाई जितना अधिक से अधिक अन्न उपजावा तो ओकर समयला कि सही से भंडारण करा तब स्कूल भैया लोग के थाली में अनाज या भोजन समला मुहैया हो पाई।
1: थाली में अनाज उहे आवे जौन की पोषक तत्व से भरल रहे।
0: हाँ
1: तो एक खातिर यही लिए ना देखा अपन जी 7 जून के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनावल जात हो कि जो भाइया भाई लोगन हंगवन उनके भरपूर खाना मिल सके और संगे संगे ओकर सुरक्षा हो सके, माने कि कवनो ऐसन चीज ना उनके थरिया में जाए कि उनके बेराम कर देवे।
0: देखा बहन इतना उद्योग धंधा का कंपनी खुलल है
1: हाँ।
0: अब टिफिन के व्यवस्था हो गई है मेस चलत है तो भाई हम तो ये कहब कि मेस में जवन भी खाद्यान्न भोजन बनत है तो जवन कुक भैया बाणा लोग तो बढ़िया से साफ सफाई रखें कोनो भी जैसे बा अनाज पानी के बनावत हो तो बढ़िया से उके धोए के और बढ़िया से उके बर्तन में बनावें आ सुनिश्चित करें साफ सफाई कि भाई ई भैया मनइये लोग खई हैं तो एक मनई का बहिन ना ध्यान दही तो देखा ये ठीक ना हते ऐसे हमन को उत्तरदायित्व बनत है कि खाना पानी जहाँ भी बने वो साफ सफाई वहाँ रहे अपन हाथ हाथ धो के आ बनावें आ टिफिन सुरक्षित जगह जाते तो भैया लोग अपन आराम से खाएं ताकि स्वास्थ्य भी सबका सही रहे।
1: संगे संगे एक बात और कह बिरजू भैया वो ई है कि देखा खाद्य सुरक्षा दिवस जोन मनावल जाता हो ना ये तो देखा अपने थरिया में आए के पहले जोन एकर उपज होता उसे भी संबंधित हो, लेकिन जब थरिया में अपने खाना आवत हो ना तो हम तो भैया बहनी लोगन से यह कहब ना कि भाई उतने खाना थरिया में ला जितना कि खाइल जा सके, ई ना कि ढेर का भर ले ली और खात खात अघाए गई ली।
0: देखा भैया कितना हम देखी ला भैया लोग के अनाज पानी कूड़ा में फेंक दवा ना फेंके छी भैया तू महत्व वो अनाज के ना जानतवा केहू देखा है भोजन बिना तरसत रह तो इना होके चाहिए बहन।
1: देखा अन्न का बर्बादी हमन लोग ज्यादा सोच सकेला समझ सकेला कि कहे कि अपन लोग किसान है ओके एक अन्न उपजावे में उतने मेहनत लगल तो जितना का सारा खेत भर जाए। तो यही खातिर भैया बहिनी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करल जाला कि खाना बर्बादी ना करें, खाना उतने लेवे जितना कि उनके खा सकल जा सके।
0: देखा हमन के दादा भाई बाबा लोग रहा हो खरियनवा जो अनाजवा छिटा जाए बहन एक एक दाना लोग बटोरे बचवा देखा अन्न का कीमत जिना समझी ना तो एक दिन अन्न खातिन तरसे के हो जाए। तो ए बहन देखा हम बात बात कही तो करबे कल जी तनी हई पंच लोग के सने से सुनवा दो जा।
1: सुनवा दे
2: दस लाख की लॉटरी।

0: मुझे
1: फर्जी ऑफिस से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती दे।
5: गुंजा बहन,
6: हाँ,
5: देखा सनेश तो होगल।
6: हाँ?
5: आ देखे बहन हमन के आज देखे आज के बातचीत हुआ अनुभव खेती में। आ तनी आप कगरी हटे राजेंद्र यादव से हम तनी बात बत कही कह रहे हैं। ठीक है,
6: एकदम एकदम।
7: देखा आज हमारे पंचायती में आप राजेंद्र यादव किसान हुए ग्राम बहादुरपुर चौबेपुर वाराणसी। आप अनुभवी किसान हुए, आपसे हम कुछ किसान भैया लोग के बारे में कुछ जानल चाहब। तो हमारे पंचायती में आपको बहुत बहुत स्वागत बा। तो हम आपसे ये जानब कि आप जायद में कौन कौन खेती कैले हुए।
8: ऐसे न भैया, हम जायद में भिंडी और जो है नेनुआ और खीरा।
7: अच्छा अच्छा,
8: हाँ, तो तीन चीज की खेती की है।
7: ये बताओ कि जैसे भिंडी का आप खेती कैले हुए तो एकर कैसे आप खेत की तैयारी करावा, आय में कौन कौन खाद आप डालना, तो हमारे किसान भैया लोग के आप बृहद बताओ।
8: ऐसे न मैंने भिंडी के खेत के बुआई के पहले कम से कम तीन और चार बार खूब बढ़िया से जुताई कर देते हैं।
7: अच्छा।
8: उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद डाल करके और कुछ माने डाई ये सब डाल करके फिर से जुताई करके उसको विधिवत तैयारी कर लेते हैं।
7: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप खेत के जैसे तैयार आप कह रहे तो गोबर के खाद के साथ साथ रासायनिक खाद भी आप डालो।
8: हाँ, थोड़ा बहुत डालते हैं।
7: अच्छा, तो एके बिजाई आप कैसे कर लो, छीट देना कि ओके मतलब कतार में लगाओ?
8: नहीं, बिजाई हम करते हैं कतार में।
7: अच्छा,
8: कतार में करने से जो अच्छी जामता होती है।
7: अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आप भिंडी कतार में बोते हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी कितनी कितना आप कर रहे?
8: मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 1.5 फीट।
7: अच्छा,
8: और बीच से बीच की दूरी कम से कम 6 से 8 इंच।
7: अच्छा, तो भिंडी का जमाव कितना दिन के बाद हो जाला?
8: एक हफ्ता में।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर जैसे जमाव जब एक भिंडी का हो जाला तो आप एक कितना दिन के बाद सिंचाई कराओ?
8: जमाव भले के कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन बाद।
7: अच्छा,
8: हल्की सी सिंचाई कर देते हैं।
7: अच्छा अच्छा, तो जैसे मान लीजिए इसमें खर पतवार अगर हो जाला तो एक कैसे आप निराकरण कराओ?
8: इसकी निराई करने के लिए मजदूर लगा करके उसको खुरपी द्वारा थोड़ा निकाल लेते हैं।
7: अच्छा अच्छा, तो कितना दिन में फूल और फल आ जाला?
8: लगभग फल और फूल 40 से 45 दिन के अंदर।
7: अच्छा अच्छा, तो जैसे 40 से 45 दिन के बाद भिंडी के आपको फल तैयारी हो ले तब एक तोड़ाई कितना दिन के बाद करूँगा यार?
8: जैसे 45 दिन लेकर के 50 दिन में भिंडी की तोड़ाई करने की समय तैयारी हो जाती है। हाँ। उसके बाद प्रति दूसरे दिन या बहुत रुक गया था आपका तीसरे दिन प्रति तीसरे दूसरे दिन तोड़ाई होती है।
7: अच्छा, तोड़ाई के समय का रहा, सुबह की शाम को?
8: नहीं, जैसे मंडी सुबह वाली है भोर में।
7: हाँ हाँ हाँ,
8: तो शाम को कर लेते हैं।
7: अच्छा अच्छा,
8: और जैसे पास वाली मंडी है वहाँ सुबह जाता है। सुबह माने 2-3 बजे तक चलती है।
7: अच्छा,
8: तो उसमें सुबह हम लोग कर लेते हैं।
7: अच्छा अच्छा
8: जी,
7: तो जैसे आप एक बीच बीच में भी कुछ खाद उद डालना ना?
8: हाँ, लगभग 20 से 25 दिन के भीतर थोड़ा हल्की खाद, रासायनिक खाद जैसे डाई हुआ।
7: कितना कितना दिन में एक सिंचाई फिर कराऊं?
8: सिंचाई लगभग हम एक हफ्ता।
7: अच्छा, एक एक हफ्ता मतलब?
8: हाँ, हल्की सी सिंचाई क्योंकि गर्मी का समय है ना।
7: हाँ हाँ,
8: तो हल्की सी सिंचाई एक एक हफ्ता में करते रहते हैं।
7: एक एक हफ्ता में आप पानी देते रहो
8: जी।
7: अच्छा, तो आपके नजदीकी कहाँ मंडी है, कहाँ की ले जाऊं आप?
8: हमार नजदीकी मंडी भैया बनारस भी है और चहनिया भी है।
7: अच्छा अच्छा
8: जी,
7: तो आपके मुनाफा बढ़िया से कर मिल जाला?
8: बहुत बढ़िया मुनाफा मिल रहा भैया।
7: एकरे अलावा आप कौन कौन खेती कैले हूँ?
8: एकरे

0: एकरे अलावा नेनुआ
1: हाँ
0: और खीरा।
1: तो नेनुआ कैसे आप तैयारी करना खेती का?
0: जैसे जुताई वगैरह ये सब तो उसी प्रकार से की जाती है, इसको कुल्ला बना करके माने बोया जाता है।
1: अच्छा,
0: जी
1: कुछ किसान भैया लोग हों जिसे मान लो के मचान वचान बनाए के नेनुआ खेती करना, तो आप कैसे कराओ?
0: गर्मी के समय नेनुआ या खीरा की खेती मचान बना के नहीं करना चाहिए,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ताप लगता है ना, पानी कम मिल पाता है,
1: हाँ,
0: इसलिए नेनुआ की खेती गर्मी के सीजन में
1: हाँ,
0: मैंने जमीन पर फैला करके करना चाहिए।
1: अच्छा, एक तैयारी आप करें में जैसे कितना खाद देना, कंपोस्ट और कितना रासायनिक खाद?
0: कम से कम मैंने 1 बीघा खेती में
1: हाँ
0: कम से कम 7 से 8 टाली गोबर
1: हाँ
0: की खाद,
1: हाँ अच्छा,
0: और उसमें 1 बीघे में कम से कम 1 बोरी डाई माने 50 किलो तक।
1: रासायनिक खाद भी डालो ना?
0: हाँ रासायनिक खाद डाई डालते हैं थोड़ा। जी
1: तो एकर जमाव कैसे कितना दिन के बाद हो जाला?
0: इसका जमाव 6 से 7 दिन के अंदर हो जाता है।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो जैसे मान लीजिए इसमें खरपतवार होते हैं तो फिर कैसे एकर निराई गुड़ाई आप करो?
0: उसी प्रकार से खुरपी द्वारा हल्का सा निरा लेते हैं, क्योंकि लाइन से लाइन रहता है, निराने गुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि गुचड़े में पानी दिया जाता है, तो पानी देने पर गुचड़े में ही घास खरपतवार आता है। जी
1: अच्छा, तो जैसे मान लीजिए सिंचाई आप नाली में करते हैं कि पूरा खेत को सींच
0: नहीं
1: देते हैं?
0: नाली में
1: अच्छा,
0: हफ्ता देने पर नाली में सिंचाई करते हैं।
1: आ कितने दिन के बाद इसमें फूल और फल आ जाला?
0: कम से कम तैयारी इसकी 45 से 50 दिन।
1: अच्छा, 45 से 50 दिन में
0: जी
1: मतलब
0: तैयारी
1: फूल
0: हो
1: और फल
0: जाती,
1: आ जाता
0: तोड़ने
1: है?
0: के लिए तैयार हो जाता है।
1: अच्छा, तो जैसे मतलब एक मंडी में आप एकर तोड़ाई कैसे कर लो? वही जैसे भिंडी आप बताओ ना, वही तरह?
0: हाँ इसका भी मैंने अगर शाम वाली मंडी मिल रही है भोर वाली तो
1: हाँ
0: शाम को कर लेते हैं ठंडे में,
1: हाँ
0: और सुबह की है तो सुबह वाले में तो भाई सुबह ही तो लिया जाता है।
1: हाँ अच्छा,
0: जी
1: तो सुबह तोड़ करके आप अपने नजदीकी मंडी में ले जाते हैं,
0: जी
1: तो 1 बीघे में कितना मुनाफा आपको हो जाला?
0: लगभग इसकी फली 1 बीघे में आ जाती है 80 से 90 क्विंटल के अंदर।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आपके बढ़िया मुनाफा मिल जाला नेनुआ खेती में?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, खीरा की खेती आप कैसे कराऊं?
0: खीरा की खेती नेनुआ की खेती की ही तरह की जाती है।
1: अच्छा, जैसे कुछ किसान भैया लोग हों कि खीरा के पहले पॉलिथीन में करावा, तो आप कैसे होके करावा?
0: नहीं हम डायरेक्ट बोते हैं,
1: अच्छा,
0: इसका नाली बना करके गुचड़ा,
1: हाँ
0: उसमें पानी पहले भर दिया जाता है,
1: अच्छा,
0: और पानी सोख देने के बाद हल्का सा भुरभुरा जब मिट्टी हो जाती है तो
1: हाँ
0: उसमें 2 इंची गहरा तक बीज को डाल
1: हाँ
0: देते हैं।
1: अच्छा,
0: 3-4 रोज के बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं।
1: अच्छा, सिंचाई कैले के बाद ये कितना दिन के बाद इसका जमा हो जाला?
0: मैंने सिंचाई करने के कम से कम 4 रोज बाद बीज अंकुर होकर के बाहर निकल जाता है।
1: अच्छा, तो जैसे इनमें कुछ कोनो रोग भी याद?
0: हाँ रोग जैसे आपका फंगस लगता है ना,
1: हाँ,
0: माइट वगैरह,
1: अच्छा,
0: हल्का सफेद सफेद कीड़ा महीन महीन रहते हैं।
1: तो कितने कितने दिन पे कीटनाशक दवा का छिड़काव आप कराना?
0: कम से कम 10 से 12 रोज।
1: अच्छा, इसमें फल फूल कितने दिन के बाद आ जाला?
0: इसमें भी कम से कम 45 से 50 दिन के अंदर फली तोड़ने लायक आ जाती है।
1: अच्छा, तो एकर जैसे बीच बीच में भी एक खाद वो देना है आप?
0: हाँ इसको भी बीच बीच में जब फली दे रहा है तो पौधा थोड़ा शुष्क होगा, तो उसके लिए बीच बीच में 20 से 25 दिन के भीतर हल्का हल्का खाद दे दिया जाता है।
1: तो जैसे मान लीजिए गोबर एक कंपोस्ट आप देना है कि
0: ज्यादातर
1: रासायनिक?
0: खीरा में गोबर की ही खाद ज्यादातर।
1: अच्छा,
0: जी
1: जैसे एमें कुछ किसान भैया हम देखिला कि बहुत कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना, मतलब का बहुत ज्यादा एमें परेशानी आवेली का खेती में?
0: नहीं इसमें तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती है, और ज्यादा परेशानी

0: उस वक्त आती है जब माने आप समय से पानी नहीं देंगे, हाँ, पौधा सूखने लगता है, उस समय ज्यादा परेशानी आती है।
1: अच्छा, जैसे आप मान लीजिए खेती करत बना तो खाली सब्जी है खेती कर लें, जैसे और कुछ खेती करम है आप?
0: नहीं, सब्जी की खेती के अलावा जैसे मूंग हुआ,
1: अच्छा, मूंग खेती करते हैं?
0: हाँ, उड़द हुआ, ये
1: हाँ,
0: सब की हल्की फुल्की खेती भी कर लेते हैं।
1: अच्छा, तो मूंग खेती करे के कैसे आप एक तैयारी करो ना खेत का?
0: जैसे एक बार मूंग के खेत को माने गेहूं कटने के बाद,
1: अच्छा,
0: हाँ, हल्की सी सिंचाई करके
1: हाँ
0: उसको कम से कम 3-4 मांडा जोत करके
1: हाँ हाँ
0: खेत को तैयार कर लेते हैं।
1: हाँ अच्छा,
0: उसके बाद मार्केट से बीज भंडार से बीज लिया करके तो छीट करके, और शाम को ही छीटते हैं हम लोग।
1: अच्छा,
0: शाम को छीट करके तो उसको बिदा दिया जाता है, मैंने मिट्टी में मिला लिया जाता है।
1: तो एमए जिसे आप कौन खाद दे?
0: इनमें ज्यादातर गोबर और हल्का फुल्का रासायनिक खाद।
1: जमाव कितना दिन बाद मूंग का हो जाले?
0: मूंग का 5 से 6 रोज में।
1: अच्छा, ये मूंग के कई बार आप सिंचाई कराओ?
0: मूंग को कम से कम 2 बार।
1: 2 बार। अच्छा, 2 बार कितने दिन के बाद आप कराना?
0: पहली सिंचाई कम से कम 25 दिन।
1: अच्छा, तो आप इसमें फली कब आ जाती है?
0: वही 40 से 45 दिन।
1: अच्छा, 40 से 45 दिन के बाद इसमें मतलब फल आ जाता है,
0: जी,
1: तो इसको कब तोड़ते हैं जैसे?
0: इसको जब मैंने ब्राउन कलर का उसका फल हो जाता है,
1: अच्छा, जब पक जाता है?
0: पक जाता है,
1: हाँ,
0: तो उस समय इसको तोड़वा लिया जाता है।
1: अच्छा, तो इसको मतलब आप तोड़ाई करके और इसको मड़ाई उड़ाई करके निकाल लेते हैं बीज?
0: जी
1: अच्छा, तो कुछ बेचते भी हैं कि?
0: नहीं, बेचते भी हैं, ज्यादा
1: अच्छा,
0: बोए हैं तो भाई बेचते ही हैं।
1: हाँ। अच्छा, धान उनकी नर्सरी लगाए हैं कि नहीं?
0: अभी तो नहीं मगर लगेगा अब।
1: धान खेती करते हैं?
0: जी,
1: कौन कौन धान लगाओगे आप?
0: हम तो एक चिंटुआ धान थोड़ा खाने पीने घर के लिए लगाते हैं, वैसे कुबेर है,
1: अच्छा,
0: धनरेखा है, संपदा है, इस
1: व्यवसाय व्यवसाय खातिर एक ही आप लगाओ,
0: जी।
1: तो एकर कैसे आप नर्सरी बीज कैसे डालना धान का आ एकर कैसे तैयारी करना तनी बताओ किसान भैया लोग के हमरे?
0: भैया, मैंने धान की खेती के लिए नर्सरी लगभग शाम को खूब पानी उसमें डाल दिया जाता है, जोत बना करके खेत तैयार रखते हैं, शाम को पानी डाल करके और उसको माने पाटा से हिंगा देते हैं, या ज्यादा में डाल रहे हैं तो ट्रैक्टर से लेव लगा करके छोड़ दिया जाता है कम से कम
1: अच्छा,
0: 1/2 घंटे बाद। तो उसमें घास आती है तो घास न आने के लिए एक दवा होती है, उस दवा का प्रयोग कर देते हैं।
1: अच्छा, ये दवाई आप पहले डाल देना?
0: हाँ, पहले डाल देते हैं,
1: हाँ
0: उसके डालने के कम से कम 4 घंटे बाद
1: हाँ हाँ
0: तब बीज माने धान की
1: हाँ हाँ
0: उसमें डालते हैं।
1: अच्छा, कितना दिन के बाद जमा नर्सरी की जमा हो जाला?
0: कम से कम 5 से 6 रोज में अंकुरित हो जाता है।
1: अच्छा, जैसे मान लीजिए आप धान के नर्सरी लगाओ से पहले भी कंपोस्ट गोबर वगैरह आप डालना, एक बाद जैसे कितना दिन में नर्सरी तैयार हो जाए कुछ रासायनिक खाद भी डालना?
0: हल्का फुल्का यूरिया,
1: अच्छा, नाइट्रोजन।
0: हाँ, और डाई
1: कितना दिन के बाद धान के नर्सरी आपको तैयार हो जाले?
0: कम से कम 25 दिन।
1: अच्छा, तो आप हमरे किसान भैया लोग के बहुत अच्छा अनुभव साझा आप कहीं ना हमरे पंचायती में आवर बदे राजेंद्र यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया। तो
1: गुंजा,
0: बिरजू भैया,
1: हाँ गुंजा भाई,
0: देखा हो कितना नीक बत कही रहल है। हम तो कहेला ना कि अपन खेती किसानी तो भैया लोगन करबे करेले, लेकिन संगे संगे अगर केहू का अनुभव मिल जाए उम्मे तो अपन खेती किसानी और बढ़िया हो
1: चार
0: जाला।
1: चांद लग जाला बहन
0: हाँ,
1: एकदम।
0: 4 चांद लगे के बात कहला है ना, तो एकदम सही कहला है। आ देखा हो इनसे राजेंद्र यादव से बतियावत रहने अपन राजेश नारायण भैया, तो देखा बत का ही बड़ा नीक कर रहा है। भैया लोगन के सुनले होइन तो सीख भी उनके मिलल होई। अब

0: बिरजू भैया का
1: देखा मैंने बात
0: कहा
1: बत कही तो भाई अब करवाई देलू।
0: था।
1: तो देखा अपने पर पंचेती में जबले मनसायन ना होला ना तबले समझला कि आनंद ना होला। तो केकर गौ नहीं कराओ थो आप सुनवाओ थो
0: तो आज सुनवाई
1: शेर
0: शेर
1: बहादुर से
0: बहादुर। हाँ देखा हो लौगते ना हो
1: नहीं
0: तैसी।
1: पजरे कला।
0: हाँ हाँ तो भैया लोगों ने के सुने।
1: शेर बहादुर सिंह।

0: गुंजा बहन,
1: हाँ बिरजू भैया,
0: देखा शेर बहादुर सिंह के खेमटा बहुत निक रहल हो आ पंच लोग के सुनल हम। तो ऐसा कह ले बहन कि देखा हम के तो भाई अब काल के बिहाने के जो बातचीत कार्यक्रम के बारे में बता दे पंच भैया लोग के, तो बिहाने 6:05 पर खेती के बातें में विषय बा गर्मी की जुताई का महत्व। आ ये विषय पर देखा गुंजा बहन जानकारी नहीं है अपन दिनेश कुमार सिंह भैया। आ सांझ के बेला में आपका आप सुनवाओ तो कृषि जगत में
1: सांझ ही के होई 6:30 पे अपन कृषि जगत कार्यक्रम जेमे होई बत कही पीलिया रोग कारण लक्षण अ बचाओ। डॉक्टर विवेक राय से बतियाई हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया।
0: हाँ पंच भैया लोग सुनी हैं। आ देखा ये बहन हम तो कहते हैं कि दऊ देखा रह रह के मन बनावत हो लेकिन पानी अभी तो ना बरसत है।
1: हाँ।
0: आ देखा गर्मी

0: तो बहुत पड़त है। तो
1: अरे
0: देखा तापमान धरती का बहिन असो बहुत बढ़ गल है। तो हम तो यह कहब कि पूरा हमन के भारतवासी इस संकल्प ले जा कि असो जब दऊ बरसें तो उनमें सब लोग दो दो ठे पेड़ लगावे।
1: एकदम जरूरी हो भैया, काहे से कि जब तक अपन पर्यावरण सुरक्षित ना रही, बची नहीं, तो मनाई देखा ऐसे परेशान होत रही। काहे से कि जब पर्यावरण संतुलन ना बनाई ले रही, तो देखा पनियो कम बरसी और पानी कम बरसी, तो जनते हुआ अपन अनाज का फिर जो मतलब उपज हुई उपे भी असर अबे करी, और संगे संगे जो नो धरती में पानी ना सोखी भैया, तो बड़ा देखा बहुत परेशानी
0: आ
1: बढ़
0: देखा
1: जाला।
0: बहन, तू पर्यावरण के बात कैलू है ना, तो एक बात इहो सबके समझे के चाहिए कि देखा पर्यावरण खाली पेड़ पौधा लगौली से ना सुरक्षित रही,
1: हाँ
0: अपने अगल बगल साफ सफाई भी रखा। आ जवन भैया ई जवन साग सब्जी लोग बाजारे से लिया उथवा प्लास्टिक के थैला में, तो एके
1: हाँ
0: बिल्कुल बंद करें। आ देखा भैया भरसक ई लोग झोला लेके जाएं, आ झोला का प्रयोग करें। आ देखा अगल बगल अपन साफ सफाई भी रखें। आ ये गुंजा बहन
1: का
0: देखा भाई, अब तो हम तो कहते कि देखा समय भी अब हो गई है, तो हमन के चले के बेला भी हो गई है, तब पंच लोग से हमन आज्ञा लेवल जाओ। तो चल जाओ ना बहन,
1: एकदम चले
0: तो
1: जाए,
0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है निखिल विनय ने।

अगली आवाजें आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। गीत के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने, संगीत है अन्नू मलिक का, फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्णिमा विश्वकर्मा पुत्री राम गोपाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम बरोधा कछार थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर यह दिनांक 27 मार्च 2026 से लापता है। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 25 वर्ष कद 5 फीट 3 इंच दोहरा बदन चेहरा गोल और रंग गोरा है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा हरा पीला मिक्स कुर्ती और बैगी जीन्स आसमानी रंग का था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया अपने नज़दीकी थाने को अथवा थानाध्यक्ष कटरा कोतवाली मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार बीमा देवी पत्नी जितेंद्र कुमार ग्राम मुराजपुर थाना जिगना जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं। ये दिनांक 24 मार्च सन 2026 को सुबह 9 बजे अपने 3 वर्षीय पुत्र रूपेंद्र को लेकर अपनी दवा लेने प्रयागराज के लिए घर से निकली और वापस नहीं लौटी। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 37 वर्ष कद 5 फीट 2 इंच इकहरा बदन चेहरा गोल और रंग गेहुआ है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा नीले रंग की साड़ी थी। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया अपने नज़दीकी थाने को अथवा थाना अध्यक्ष जिगना को मोबाइल नंबर 9454404006 पर सूचित करें। सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: So girls,

0: अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है, और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
4: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
3: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को

0: बख्शा नहीं जाएगा।
1: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
3: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
0: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2,500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा।

0: सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपये की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपये हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सेल्फी लेंगे,
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और पूजा सिंह की है।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। पूजा सिंह हैं हमारे पास, क्योंकि आज वो नहीं है जो कालीन भाई के शहर से होती हैं, और ये बाबा गोरक्षनाथ का जो प्रसिद्ध शहर है गोरखपुर, वहां से पूजा जी आती हैं। हालांकि पिछले काफी समय से बनारस में है। पूजा जी, आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: अरुण जी, आपको भी नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गोरखपुर की बात आई है तो बहुत टाइम हो गया गोरखपुर छोड़े, और बहुत समय से अब तो मैं बनारस की हो गई हूँ, एक बनारसी पक्की।
0: लेकिन जो बचपन का जो साथ जिस शहर का होता है, हाँ, वो हमारी यादों में आजीवन बसा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे गोरखपुर, हालांकि शहर बदल जाता है और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं,
1: लेकिन
0: जो शुरू में वहां के, जहां पे आपका बचपन बीता हो, शुरुआत के 8-10 वर्ष वो किसी गांव या पुराने शहर में हो, तो वो शहर आपके अंदर तो हमेशा जीवित रहता है।
1: जी बिल्कुल, जहां पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई हो तो वो शहर तो बिना भुलाए भूले नहीं जाता।
0: और ठीक वैसा ही आकाशवाणी है, और कल वो दिन है 8 जून, जब आकाशवाणी अपनी 90वीं वर्षगांठ, ये जो ऑल इंडिया रेडियो नामकरण हुआ उसका मना रही है। और ये बचपन से हम लोग भी आकाशवाणी रेडियो सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो इसकी भी यादें बिल्कुल वैसी हैं और हमारे अंदर रचा बसा हुआ है आकाशवाणी विविध भारती का ये जो प्रसारण है।
1: बिल्कुल, तो अरुण जी चलिए, बहुत सारे मेल्स हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, तो उन्हें पढ़ना शुरू करें।
0: बिल्कुल, श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए, और उनका हमारा साथ यूं ही बना रहे, आने वाले कई 90 वर्ष 100 वर्ष इसी तरह से आए, और रेडियो
1: सारे मेल्स हमारे पास ऐसे ही वो भेजते
0: रहे। रेडियो का जो सफर है वो यूं ही उपयोग

0: योग्यता के साथ बना रहे।
1: जी हाँ, तो ये पहला मेल हमारे पास आया है सुनीता जी का, सेबेस्टोपोल फ्लैक मॉरिशस से।
0: जी
1: ये लिखती हैं, नमस्ते जी। नमस्ते आपको भी। मैं सुनीता सेबेस्टोपोल फ्लैक मॉरिशस से आकाशवाणी वाराणसी रेडियो सुनती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलते हैं। हेलो फरमाइश में कॉल की थी और अरुण सर जी से बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत धन्यवाद।
0: तो बहुत धन्यवाद की आप। यह है कि सुनीता जी उतनी दूर रहती हैं और अच्छी तरह से हिंदी समझ लेती हैं, रेडियो से उनका जुड़ाव है और ऐप के जरिए वो सजीव बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ती हैं, फरमाइशें भेजती हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि देश से नहीं दुनिया के कोने कोने से आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ाव रखते हैं। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें और अगले मेल में जरूर बाकी कार्यक्रमों का भी आप जिक्र करेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया।
1: और ये अगला जो मेल हमारे पास आया है वो आया है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर जी का।
0: जी।
1: ये लिखते हैं कि दिनांक 30 मई 2026 को शैलेश सर द्वारा हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रस्तुत था, जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। दिनांक 31 मई 2026 को अनुपम सर द्वारा लोक रंग कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। तो इन्हें दोनों लोग के प्रोग्राम बहुत पसंद आए हैं।
0: हाँ, और गर्मी बहुत तेज है वरना, हालांकि ये जब सना जी आएंगी तो हम लोग जाकर के आपकी बधाई वहां तक पहुंचा देंगे। बड़ा छोटा सा मेल है और इन दोनों तक ही आपकी बधाई पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया। आइंदा मेल में बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: और ये जो अगला मेल हमारे पास आया है वो आया है अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रामा गुप्ता गौड़, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेस टू से।
0: जी।
1: ये लिखते हैं कि 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस की आकाशवाणी केंद्र को हार्दिक शुभकामनाएं सहित बधाई। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बनारस बीट्स में श्री आशुतोष शास्त्री जी द्वारा पूछे गए सवाल, पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचारों के लिए आप किसको विश्वसनीय तथा सच्चाई से रूबरू करने वाला मानते हैं, निसंदेह आकाशवाणी से प्रसारित समाचार।
0: बिल्कुल, ये वो बता रहे हैं। एक समय था हम लोग भी रेडियो सुनते हुए, पहले वो दौर था कि अखबार भी गांव देहात में कई कई दिनों बाद पहुंचते थे, तो आकाशवाणी की विश्वसनीयता खासतौर से इसके समाचारों की उस दौर से रही है। और हम लोग तो ये मुहावरे की मानिंद कहते रहे हैं कि रेडियो से अगर कुछ बोला कहा गया है तो वो शत प्रतिशत विश्वसनीय है और सही है, उसका ही अनुकरण करना है, उस पर ही भरोसा करना है।
1: ये आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी से दोनों ही चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम मनोरंजन के साथ मालूमात में भी इजाफा करते हैं। सभी नवोदय उद्घोषक और उद्घोषिकाएं बड़ी लगन और तपस्या से अपने कार्यक्रमों को खूबसूरती प्रदान करती हैं और हम सभी का मनोरंजन।
0: ये
1: और
0: तपस्या कितनी हो रही है ये आप लोग बताएंगे हमें। और हमारे साथी भी, आपने सही कहा कि थोड़ी सी साधना, तपस्या और लगन की आवश्यकता है किसी भी कला के क्षेत्र में काम करने के लिए।
1: हम सभी का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते हैं। विशेष तौर से कुछ नाम लेना चाहूंगा। सना सलीम उनकी प्रस्तुतियों को बेहद रुचिकर और लाजवाब बनाती हैं। श्री आशुतोष शास्त्री जी अपनी प्रस्तुतियों में भाव और स्वर के उतार चढ़ाव इत्यादि पर आपको कुछ और बेहतर करना चाहिए।
0: अच्छा, ये सलाह दे रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कुछ सलाह ऐसी ही दी थी, लेकिन हम ये कहें कि हर किसी का अपना अंदाज होता है बोलने का, किसी की कोई कुछ खास विशिष्टता होती है। तो आशुतोष जी बहुत मेहनत से ढूंढ करके और बड़े परिश्रम से वास्तव में, वरना आजकल तो चैट जीपीटी और गूगल का जमाना है, आपको बिल्कुल हर चीज रेडीमेड मिल जाया करती है इंस्टेंट, तो उस दौर में मेहनत से खोजबीन करके प्रोग्राम ले आना एक बड़ी बात है।
1: इन्होंने तारीफ भी की है आशुतोष जी की, लिखा है कि आपकी प्रस्तुतियां और कथानक एवं जो शोध है
0: जी
1: और जो खोज आप करते हैं उसे लगन और मेहनत को हम देखते हैं, उसे प्रणाम करते हैं।
0: जी, इसी लगन और मेहनत का हमने जिक्र किया था।
1: जिनको चाहने वाले इंतजार करते हैं, हरफन मौला मंजूषा ज्योत्सना इधर प्रोग्राम से काफी लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। पूजा जी, स्नेहा जी, कृतिका जी, साथ में शिखा और नैन्सी जी जिनका नाम याद नहीं है, उन लोगों को भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विशेष शुभकामनाएं और बधाई।
0: बिल्कुल।
1: आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आवाज तथा उच्चारण, स्वर का भाव और उतार चढ़ाव समय की प्रतिबद्धता, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और प्रोग्राम की समय अवधि, सभी कुछ महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका ध्यान रखते हैं, इस पर मेहनत करते हैं, हम सभी के लिए प्रस्तुतियां पेश करते हैं। इसके लिए 90 सालों के सफर में आप लोगों ने हमारा मनोरंजन किया, संचार और शिक्षा में सूचना प्रदान की, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से आभार और अभिनंदन।
0: ये आभार अभिनंदन हमारे आप जैसे श्रोताओं के लिए भी कि तमाम आजकल विकल्प हैं, बहुत आसानी से सूचना, शिक्षा, मनोरंजन हमारे हर हाथ में है, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए। ऐसे में भी जो रेडियो, आकाशवाणी, विविध भारती का प्रसारण है, उसमें आप जैसे पुराने श्रोता अब इसी लगन और सुधी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। और हमारा आपका संबंध यूं ही बना रहे, यही कामना हमारी।

0: रिपोर्ट से।
1: अभी इन्होंने और भी लिखा है अरुण जी, ये लिखते हैं कि लोक रंग कार्यक्रम विगत सालों से काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। 29 मई को कृतिका जी द्वारा बनारस वॉइस में लोकगीतों का प्रचलन बढ़ने का प्रयास काफी सफल रहा। इसके लिए सभी कार्यक्रम से जुड़े लोगों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। लोक रंग को आकाशवाणी केंद्र को समय का विस्तार देना चाहिए, कम से कम एक घंटे का यह प्रोग्राम होना चाहिए। उम्मीद है कि केंद्र निदेशक श्री अशोक पांडे जी इस संबंध में कुछ सकारात्मक उपाय खोजें। धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और जैसे ही वो उपाय खोज लेंगे हम लोग आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल तो ये जो कार्यक्रम है वो रविवार को 1:30 से 2 बजे के बीच लोकगीतों का फरमाइशी प्रोग्राम है, उसे आप सुनते हैं। ये जो आपने कृतिका जी लिखा है, हम लोग भी शुरुआत में सोचते थे कि यही नाम है, लेकिन वो कीर्तिका है और उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है।
1: ये लिखते हैं, अंत में दो नाव की सवारी क्या उचित है।
0: जी, यहाँ तो अभी इतनी तेज गर्मी है स्टूडियो में कि एक भी नाव नहीं है।
1: इन्होंने आगे लिखा है, facebook.com/banarswire।
0: ये वाराणसी वाइब्स लिखना चाह रहे होंगे, टाइपिंग एरर हो सकता है, लेकिन हमें ये लगता है ये चाह रहे हैं कि उसमें वाराणसी वाइब्स में जो हम व्हाट्सएप, फेसबुक और खासतौर से FM पर भी वो प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम का कुछ हिस्सा सिर्फ फेसबुक पर जाता है और कुछ FM पर जाता है इस दृष्टि से। लेकिन तकनीक का एक नया दौर है और उसे भी श्रोता बहुत बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। दूर दराज के श्रोता उस फेसबुक प्लेटफॉर्म के जरिए भी जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा तकनीक है, उसके साथ हमें भी चलना चाहिए और उसकी अच्छी बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए। फिलहाल तो यही स्थिति है। गुणवत्ता पर प्रभाव ये तो आप बताएंगे, लेकिन हमारी जानिब से कोशिश होती है गुणवत्ता बनी रहे कार्यक्रमों की। आपसे खासतौर से कहेंगे कि इतना लंबा मेल कई महीने बाद लिखने से अच्छा है कि हर हफ्ते छोटे छोटे मेल आप हमें भेजेंगे, तो हमें भी इन मेल को शामिल करने में सहूलियत होगी। शुक्रिया, आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा।
1: और ये अगला मेल हमारे पास आया है असगर अली जी का, शिवपुर वाराणसी से। लिखते हैं, 90 वर्ष पूरा होने पर आकाशवाणी के सभी उद्घोषकों और श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष हुए हैं।
1: ये आगे लिखते हैं, जगत भर की रोशनी के लिए श्रोताओं की हर खुशी को लिए सूरज यानी अरुण पांडे जी हमेशा रोशन रहे। अब कुछ बहुत पुरानी टिप्स आपके लिए।
0: जी,
1: 75 साल पुरानी बात, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कचहरी की बिल्डिंग बहुत छोटी लाल रंग की थी, उसी कंपाउंड में एक राधा कृष्ण का छोटा सा मंदिर भी था।
0: ये पूजा जी, मैं अच्छा कि ये वाला 75 पढ़ ले रही हैं, वरना जो इनकी सखी हैं सना जी वो ये 75 उंगली से इशारा करती हैं कि उसे हम क्या कहें।
1: गिनकर एक लंगड़ा आम के पेड़ थे।
0: जी, अब यहाँ तो पकड़ में आ गई बात ना, ये 9 है।
1: अच्छा, ये 9 है।
0: 9 है, कुछ साम्यता है सखियों में। ये 9 लंगड़ा आम के पेड़ हैं।
1: गिनकर 9 लंगड़ा आम के पेड़ थे जो कंपाउंड में थे बैंक के। हर साल राधा कृष्ण मंदिर का श्रृंगार होता था, जिसमें कथक डांसर गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज का कार्यक्रम होता था। कुछ दिन पहले कार्यक्रम में किसी श्रोता में माँ फिल्म का टाइटल सॉन्ग बजवाया, शुरू से तो अच्छा लगा।
0: जी जी, ये अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। खासतौर से जब इन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्षों का जिक्र किया, तो इन्हें भी नेवी से रिटायर हुए भी काफी समय हो गया, 80-90 के जीवन के दशक में असगर जी चल रहे हैं। तो एक दौर था शुरुआत में जब ऐसे, जो गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज का आपने नाम लिया, हम लोगों ने भी इधर पहले बहुत बड़े बड़े कव्वाल और शायर या फिर लोकगीत कलाकार होते थे, जो गांव गिराव खरिहान में और शहरों में भी रात रात भर के प्रोग्राम हुआ करते थे, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट प्रोग्राम पेश करते थे।
1: आगे ये लिखते हैं, जंगल जलेबी का नाम सुना है।
0: जी जी, हमने खाया भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं।
1: जी हाँ, इन्होंने लिखा है, हमने खाया है। वरुणा नदी उलट गई भागो, इसका मतलब समझ आया आपको? हमारे बचपन में पहले वरुणा का बहता पानी था, हर साल जब पहला बारिश होता था और सुबह चमकीली धूप निकलती थी तो ठंडा पानी नीचे और गर्म पानी ऊपर, उससे मछली,
0: बचपन बिल्कुल वरुणा नदी के किनारे बीता है।
1: हाँ, तो इन्होंने लिखा है, उससे मछली सब ऊपर आ जाती थी, उसी को बोलते हैं नदी उलट गई। इन्होंने लिखा है, आपने पत्र ईमेल करने वाली का नाम पूछा था, नाम पढ़िए अब। पुन्नु पिंग पोंग महनूर माही, ये चारों नाम जो हैं महनूर के हैं और वही ईमेल लिखती है। पत्र शामिल अगर करें तो उसके लिए थैंक्स अलॉट। अरुण जी को और संगनी सना सलीम को प्यार और दुआ, ओवर एंड आउट।
0: अच्छा, तो बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आर्मी नेवी वाला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं असगर जी। आपको भी यही कहें कि हफ्तेवार छोटे छोटे मेल लिखवाएं आप माहेनूर से, और इन तमाम साथियों को भी कि वो रेडियो से जुड़े रहें। आकाशवाणी की बड़ी लंबी परंपरा है, संस्कृति संस्कार के जो बीज हैं वो रेडियो पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते सुनते हुए हमारे बीच आ जाते हैं, तो ये पारिवारिक माध्यम है, ये बना रहे और हमारा आपका साथ भी। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपको और माहेनूर को भी और बाकी बच्चों को भी।
1: और ये अगला मेल जो हमारे पास आया है वो आया है सरोज आहूजा।

0: और पूनम आहूजा जी का ग्राम एवं ब्लॉक बरहनी चंदौली उत्तर प्रदेश से ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अरुण पांडे जी और सना सलीम जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। पिछले काफी दिनों से स्वास्थ्य समस्या होने के कारण और बाद में ईमेल का पासवर्ड खो जाने के कारण हम मैसेज नहीं कर सके। वैसे सच कहा जाए तो मैसेज करने का मन भी नहीं किया। मैं आकाशवाणी से 25 वर्ष छोटा हूँ और कम से कम 50 वर्षों से रेडियो का श्रोता रहा हूँ।
1: बिल्कुल ऐसी स्थिति हम लोगों की भी है, कि लग रहा है कि आकाशवाणी से 25 साल छोटे तो हम नहीं है, वरना अब तक हम रहते ही नहीं।
0: इन्होंने आगे लिखा है, अपने सर्विस पीरियड में मैंने कई शहरों में कार्य किया लेकिन रेडियो नहीं छूटा था। अब रिटायर होने के बाद लगातार वाराणसी केंद्र के कार्यक्रमों को सुन रहा हूं। अरुण पांडे जी को याद होगा, काशी में काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह जी जब भी कहीं निकलते थे तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका अभिवादन किया जाता था और उनकी बड़ी इज्जत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपनी परंपराओं और मर्यादाओं का पालन किया और अपनी अंतिम क्षण तक उसका पालन करते रहे। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे आधुनिकता कितनी भी हावी हो जाए, समय कितना भी बदल जाए, लेकिन समाज पूजता उसे ही है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और जुड़े रहने के साथ ही अपनी मर्यादाओं में रहकर अपना कार्य कर रहा है। इस बात का आकाशवाणी वाराणसी के वर्तमान प्रसारण से कोई संबंध नहीं है।
1: आपकी बात हम लोग समझ रहे हैं और खासतौर से पूजा जी ने भी इसे पढ़ा है और नए पीढ़ी के भी लोग हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी जो शहर है या माध्यम है, जैसे हमारा काशी बहुत प्राचीन शहर है, आकाशवाणी प्रसारण का प्राचीन माध्यम है, तो ये जो प्राचीनता बनी रहती है वर्षों तक, सदियों तक, वो उसके गुणवत्ता के कारण होती है। और वही गुणवत्ता जिसे आप संस्कृति परंपरा कह रहे हैं, ये जो मूल्य हैं ये कायम रहें, बने रहें, और उनकी साधना ही बड़ी बात होती है। नयापन तो ले आना और लीक से हट जाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी एक बने बनाए रास्ते पर चलना और जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही चुनौती नई पीढ़ी के साथ है, वो चाहे किसी भी माध्यम के हमारे साथी हों। तो आपकी बातों को हम सबको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आप थोड़ा सा नियमित रूप से हमें लिखेंगे, कार्यक्रमों का जिक्र करेंगे तो और अच्छा होगा। इस मेल के लिए शुक्रिया फिलहाल आपका।
0: और ये अगला मेल अरुण जी आया है, हर्षद गुप्ता, रोहित कुमार, राहुल कुमार, अंकित सिंह, गौतम विहार, जिला वाराणसी से।
1: जी
0: लीजिए पूरा नाम पता के साथ, इन्होंने लाइन शुरुआत ऐसे ही की।
1: जी जी, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेगुलर पहले नहीं आते थे, इधर नए नाम के कई
0: और
1: श्रोता
0: आते भी
1: आने
0: थे तो अपना एड्रेस पूरा नहीं बताते।
1: जी
0: थे।
1: जी जी, तो हमें लगा कि थोड़ा सा कहा जाए कि अपना नाम पता पर्याप्त लिखा करें क्योंकि समय बड़ा बदल गया है।
0: इन्होंने आगे लिखा है कि पत्र के लिए धन्यवाद वाला कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अरुण जी जो सीनियर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है उनको नमस्कार और धन्यवाद भी कि हमारा ईमेल शामिल किए। पिछली बार वाले में हमारा नहीं आया था लेकिन सुनते हैं बस काम करते हुए।
1: ये है कि हमारे पास हर हफ्ते बड़ी तादाद में मेल आते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन हम हर मेल को आगे पीछे शामिल करते हैं और मेल जरूर ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें बताई हुई बातों पर हम लोग अमल करते हैं। तो आप जरूर हफ्तेवार मेल लिखें और हर श्रोता का मेल शामिल होता है।
0: ये आगे लिखते हैं कि बहुत से लोग तो दिन तारीख वाइज तारीफ करते हैं एकदम अकाउंटेंट की तरह, सुनते हम भी हैं बस ब्योरेवार लिख नहीं पाते। जो याद आया बता दिया शुरू में, शायद बुधवार को था अरुण जी का फोन इन कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा लगा। आप तो शान ही हैं बनारस की, ये तो एकदम सही बात इन्होंने कही। सना जी भी बढ़िया करती हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाए।
1: हाँ, जैसे आज 9 नहीं आदमी पढ़ पाया और कभी 1, 2, 3 भी ऐसा होता है पुराने। अच्छा एक चीज और है कि जो नया जो हमारा व्यवस्था है लिखने की, उसमें रोमन को अपना लिया गया है, जो 1, 2, 3, 4 वाला जो डिजिट होता है उसे हम लोग 1, 2, 3, 4 कहते हैं। और उधर आपने कही बहुत सारे श्रोता हमारे वास्तव में है जो दिन और तिथि और समय के हिसाब से कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप हफ्तेवार प्रोग्राम सुने और जब आप लिखने बैठते हैं तो जो जो खास बातें आपको याद रहती हैं वो भी आप उस तरह से लिखेंगे तो बहुत रहेगा आपका।
0: सना जी भी बढ़िया करती हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाई, बोली आप पढ़िए। फिर आपने संस्कृत का अर्थ भी बताया, संस्कृत तो केवल एक आशुतोष जी बनारसी बाबू पढ़ पाते हैं या सीधी साधी वाली मंजूषा जी। हास्य दिवस और नित्य दिवस वाला तो गजब था।
1: यही विविधता में है, खासियत है, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। और चलिए हमारे यहाँ कुछ न कुछ करने वाले हैं और हर आदमी हर फन में माहिर हो ये जरूरी नहीं है, तो हर किसी में कोई न कोई खासियत है जिसे आप जैसे श्रोता पसंद करते हैं।
0: पूजा जी का का सुबह वाला कार्यक्रम, शिखा जी का, सना जी का भी सुनते हैं। स्टोर का टाइम रहता है तब भी। पूजा जी का बनारसी किस्सा मस्त होता है, राहुल फैन है उनका। वही लड्डू, वही वाला जो लड्डू की मनौती करता है। दरअसल हम लोग हर शनिवार या मंगलवार संकट मोचन

0: आते हैं तो कभी कुछ मांग लेते हैं।
1: यानी ये पूजा जी, या जैसे आपने सीधी सादी का जिक्र किया, तो जब इनको प्रोग्राम में आने की बात आप लोग करते हैं तो वो कभी कुछ ही टाइप का होता है।
0: आगे ये लिखते हैं, आप सब सकुशल हम सबका मनोरंजन करें इसकी भी मनौती करते हैं। सना जी मनौती बताई, बहुत अच्छा लगा। दूसरे वाले चैनल पर अरविंद जी की गाने की पसंद बहुत अच्छी लगी। आकाशवाणी 90 वर्ष पर गृह लक्ष्मी में एक सुरेखा जी, तंजील जी लोगों से फोन इन पर बात की, कई माता बहनों से बहुत अच्छा लगा। युववाणी में एक शुभम राय ने बताया, विदेश में पढ़ाई के बारे में बहुत ही जानकारी भरा लगा। डॉक्टर सुनील जी से चंदन सिंह की बातचीत दोबारा सुना, वह तो हमारी शान है, बधाई। निवेदिता जी का मोहब्बत का शरबत वाला तो मजाक लगा, लेकिन बताई तब विश्वास हुआ। उनका शुक्रिया, आपने कहा कि हर हफ्ते मेल करिए तो कर दिया, जवाब मिला तो और करते रहेंगे।
1: बिल्कुल, आपका मेल प्रोग्राम में शामिल हो गया है और आपके इसी प्रकार के हफ्तेवार मेल का हमें इंतजार रहेगा। भरोसा रखिए कि हम हर श्रोता की हर कही हुई बात पर बहुत ही ध्यान से उस पर हम लोग गौर करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं।
0: ये अगला मैसेज हमारे पास है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी जी का। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। हम आकाशवाणी वाराणसी को बड़े ही प्यार से सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के प्रस्तुतकर्ता भाई बहनों का कर्णप्रिय आवाज कार्यक्रमों में चार चांद लगा देता है, जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आपके संदेश आपके गीत, लोक रंग उमंग आपके पत्र आपके गीत जैसे कार्यक्रमों को हमेशा सुनते रहते हैं। आपके केंद्र से प्रसारित कुछ और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दीजिए, प्रसारण समय के बारे में भी बताइए।
1: प्रसारण समय के बारे में ये कहें कि आप तो हमारे कार्यक्रमों के पुराने श्रोता हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों ही वक्त में कार्यक्रम विवरण होता है, वो आप सुनेंगे। खासतौर से दिन में अगर आप रेडियो सुनते हैं तो 1:05 पर हमारे यहाँ से कार्यक्रम विवरण होता है, जिसमें दिन भर के प्रोग्राम बताए जाते हैं। शाम के वक्त भी ऐसा ही कार्यक्रम विवरण है और सुबह में भी हम कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हैं। और अब तो न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और इस तरह का इंटरनेट का माध्यम है, तो आप कभी भी रेडियो खोलेंगे आकाशवाणी वाराणसी का तो आपको प्रसारण उसमें मिल जाते हैं। दिन में खासतौर से महिलाओं के लिए कार्यक्रम है और शाम को कृषि जगत युवाणी प्रोग्राम है, वो भी आप सुने। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा जिसमें आप बाकी कार्यक्रमों का जिक्र करेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
0: तो अरुण जी, अब समय हो गया है कि मेल को पढ़ना अभी यहीं हमें रोकना होगा, क्योंकि अब आगे हमें बताना है कि श्रोता हमें और ज्यादा से ज्यादा मेल कर सके, इसलिए अपनी ईमेल आईडी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे एड्रेस pkldaiarvaranasi@gmail.com पर।
1: यानी पूजा जी, प्रोग्राम में आपके मेल पढ़ने का सिलसिला रोक रही हैं, आपको लिखने का सिलसिला नहीं रोकना है, वो बनाए रखना है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए अरुण पांडे
0: और पूजा सिंह को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और पूजा सिंह की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म पारस से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। इंदीवर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम रस रंग अब समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज दिल से दिल।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई हुई गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 7वीं कड़ी।

0: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील कर

0: करते हैं और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है।

0: QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पर इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है।

0: इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस

0: फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन

0: का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया, और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से

0: स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे सरकार की 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 7वीं कड़ी।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

सेतु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज

कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के दो ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका

0: एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा।
2: पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग

0: economy. Southwest monsoon further advances into west central and an entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, सियांग, कलमपॉग और सिलीगुड़ी के हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और आवाम से आवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की तौसीख की। डॉक्टर जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और ये ज़रूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रुनमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल का जश्न मनाया था। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को अक़्वामे मुत्तहिदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एजाज़ मेजर बराक की मिसाली खिदमात और अक़्वामे मुत्तहिदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ़ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों, बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बराक फिलवक्त लेबनान में अक़्वामे मुत्तहिदा के क़याम अमन के मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क में मुनक़िदा एक तकरीब में अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस एज़ाज़ से नवाजा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मवाक़े, इख्तिराआत और खुदएतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात, तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नज़रिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत जिसकी कदर फिलवक्त तकरीब

तमाम सुनने वालों को आराधना का प्यार भरा आदाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और सुरीले कार्यक्रम अंजुमन में। अंजुमन यानी महफिल, और जब महफिल गजलों और चुनिंदा गैर फिल्मी गीतों की हो तो रंग खुद ब खुद गहरा हो जाता है। आज की इस महफिल में हम आपके लिए जज्बातों का एक ऐसा गुलदस्ता लेकर आए हैं जिसमें प्यार भी है, कशिश भी है और यादों की भीनी भीनी खुशबू भी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस हसीन महफिल का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत गैर फिल्मी गीत से, जिसे अपनी मखमली आवाज़ से सजाया है बाबुल सुप्रियो ने। सुनिए और महसूस कीजिए।

बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में ये गीत ज़िंदगी और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास को बयां कर रहा था। दोस्तों, अंजुमन की महफिल अब आगे बढ़ती है और जब बात गज़ल की हो तो भला शहंशाहे गज़ल को कैसे भुलाया जा सकता है। मोहब्बत में वादे, दावे और इकरार तो बहुत होते हैं, लेकिन उस प्यार को निभाना और उसे मुकम्मल करना ही असली बंदगी है। इसी जज्बात को अपनी मखमली और पुरकशिश आवाज़ में पिरोया है उस्ताद गुलाम अली साहब ने। आइए सुनते हैं उनकी ये बेहद मकबूल गज़ल।

गुलाम अली साहब की गायकी का तो कहना ही क्या, किया है प्यार, दिल को एक अजीब सा सुकून दे जाता है। चलिए अंजुमन की इस रूहानी महफिल को थोड़ा और क्लासिक रंग देते हैं। अब जिक्र उस आवाज़ का जिसे मल्लिकाए गज़ल कहा गया, जिनकी आवाज़ में एक अजीब सी कसक और दर्द की वो मिठास है जो बरसों बाद भी नई सी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेगम अख्तर की, मोमिन खान मोमिन साहब की लिखी हुई ये कालजयी गज़ल। जब बेगम अख्तर की आवाज़ में ढलती है तो वक्त जैसे ठहर जाता है। मुलाहिजा फरमाएं।

वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, सचमुच यादें ही तो हमें जिंदा रखती हैं। श्रोताओं, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल अपनी बात खुलकर कहना चाहता है। जज्बात जब लफ्जों का रूप लेते हैं तो गजल बन जाते हैं, और जब उस गजल को चित्रा सिंह जी जैसी पाकीज़ा और साफ आवाज मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। आइए इस महफिल को एक नया मोड़ देते हैं और सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में ये हसीन फनपारा।

दोस्तों, पंख लगाकर उड़ जाता है वक्त, और हमारी आज की इस महफिल यानी अंजुमन की आखिरी पेशकश का वक्त भी आ गया है। इस महफिल को मुकम्मल करने के लिए हम रुख कर रहे हैं भारतीय सुगम संगीत के उस दौर की तरफ जिसे किंग ऑफ गजल्स कहा गया, जिनकी आवाज़ में रेशम जैसी नरमी और गजब का सोज था। सिल्क वॉइस, तलत महमूद साहब, मिर्ज़ा गालिब की शायरी और तलत साहब की आवाज़, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन भला और क्या हो सकता है। आइए सुनते हैं आज की महफिल का ये आखिरी कलाम।

0: तलत महमूद साहब की सदाबहार गज़ल के साथ ही हमारी आज की महफिल यानी अंजुमन से विदा लेने का वक्त हो चला है। आज की महफिल बस यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी रोज़ इसी स्टेशन पर, फिर सजेगी ये महफिल कुछ और नए पुराने तरानों के साथ। तब तक दीजिए अपनी दोस्त को इजाज़त। शब खैर, शुभ रात्रि। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी है, नमस्कार। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है

0: विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
0: श्री एम वी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एन सी एच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's exposure to music began early. His mother, श्रीमती एम जलजाक्षी, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, श्री एम एस एन मूर्ति trained under the guidance of संगीत साहित्य कलानिधि श्री एन सी एच कृष्णमाचार्यलु. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M. S. N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M. S. N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M. S. N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M. S. N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाना राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री एम एस एन मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाना रागम खंड चापू तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिया राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति। ही इज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: क्या था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर

0: चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।